0: वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। श्री अन्न में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये मधुमेह, मोटापा और हृदय रोग सहित कई बीमारियों में लाभकारी है। जयपुर के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर पुनीत सक्सेना का कहना है कि श्री अन्न ग्लूटेन फ्री है और गेहूं और चावल की तुलना में अधिक पौष्टिक है।
1: मिलेट्स, जिसको कि हम मोटा अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, और इसमें हम मोटा मोटा बात करते हैं बाजरा की, ज्वार की, रागी की। रिफाइंड सीरियल्स के मुकाबले इनमें न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन की मात्रा, फाइबर की मात्रा, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है एवं ये ग्लूटेन फ्री होते हैं।
0: श्री अन्न कम पानी में उगने के कारण जल संरक्षण और जलवायु अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बाजरा और अन्य मोटे अनाजों की खेती पहले से ही बड़े पैमाने पर होती रही है। अब इनके उत्पादन के साथ साथ प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। किसानों को उन्नत किस्मों, बेहतर कृषि तकनीक और श्री अन्न आधारित उत्पादों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
3: जिस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया, अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। अब यह पहल भारत में इन वस्तुओं के निर्माण के लिए आवश्यक कौशल, प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन्स 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
5: भारत ग्लोबल बिजनेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विद इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देश भर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
6: प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब पनीर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके। प्राधिकरण ने यह प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम 2011 में संशोधन के अंतर्गत रखा है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का चौथा संस्करण आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में शुरू होगा। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिन तक चलने वाले इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष आयोजन का विषय है बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से।
7: 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के इस आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस संस्करण के साझेदार देशों में ऑस्ट्रिया, जापान, रूस, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम शामिल हैं। इसके अलावा व्यापार और उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हुए करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी आयोजन में भाग लेंगी। प्रदर्शनी

0: कृषि, ऑटोमोबाइल, रक्षा, आईटी, स्वास्थ्य, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस वर्ष का एक प्रमुख आकर्षण एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत है। इसे एक जिला एक उत्पाद योजना के साथ प्रदर्शित किया जाएगा। आयोजन में ज्ञान सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अंकित कुमार के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में इस सेवा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 वर्ष से बंद सार्वजनिक बस सेवा अब फिर से शुरू की जा रही है।
2: सेवा संकल्प सप्ताह के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार 21 साल बाद वापस लोक परिवहन की बस सर्विसेज की सेवा शुरू करने जा रही है। ये अपने आप में यूनिक मॉडल है। आधुनिकतम नई तकनीकी ई बस सेवा से लगा करके सभी प्रकार की सर्व सुविधाएं, सभी प्रकार की बसें चरणबद्ध रूप से लगभग हर नगर, हर जिला तक हम अपने नीचे तक नेटवर्क ले जाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल का अंत्योदय का दर्शन आज भी जनकल्याण और राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रेरणा देता है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना गहरा दबाव अब कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओडिशा के कई हिस्सों में तेज बारिश जारी है।
3: कमजोर पड़े डिप्रेशन के असर से दक्षिणी और पश्चिमी ओडिशा के कई हिस्सों में भारी बारिश जारी है। राज्य सरकार के अनुसार दर्जनों ब्लॉक और गांवों में

0: भारतीय जोड़ी ने क्वालिफाइंग राउंड में पहला स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हो गई है, जिसमें 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
1: और फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने कल समरकंद में अजरबैजान के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी मंत्रालयों से 5 वर्ष की आगामी रूपरेखा मांगने के निर्देश को अपनी सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, फाइलों से निकले मंत्री जमीन पर देखें योजनाओं का लाभ। वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री का बयान, सत्ता कितनी भी बड़ी हो हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा, लोक सत्ते में है। पत्र ने वैश्विक साइकिलिंग कार्यक्रम के पहली बार भारत में आयोजित होने को भी सुर्खी बनाया है। पत्र के शब्द हैं, भारत को मिली रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2032 की मेजबानी, यूसीआई पुणे में करेगा आयोजन। गन्ने से जल्द तैयार होगा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इससे जुड़े प्रोडक्ट को औपचारिक मंजूरी मिलने की खबर प्रकाशित की है। नवभारत टाइम्स ने राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जारी सैन्य अभ्यास पर सुर्खी दी है, युद्ध अभ्यास में दिखी भारत यूएस की जुगलबंदी। अमर उजाला के कारोबार पन्ने की खबर है, दूसरी छमाही में श्रम बल में 5.4% बढ़ोतरी का अनुमान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच कल अमेरिका में हुई बातचीत पर पंजाब केसरी लिखता है, ट्रंप का जिनफिंग से मिलकर काम करने का वादा।
1: धन्यवाद अलका। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन सेवा यात्रा के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। देश को विनिर्माण राष्ट्र के रूप में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई मेक इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर देश भर में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया। चौथा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो आज से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। और मौजूदा चैंपियन भारत ने समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 8वें दौर में अजरबैजान के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to interact with participants of Seva Yatra for second day today. Make in India initiative aimed at transforming the country into manufacturing nation completes 12 years today. FSSAI proposes nationwide ban on manufacture and sale of analog paneer. Fourth UP International Trade Show to begin today at India Expo Center and Mart in Greater Noida. Indian duo of Kamaljeet and Suruchi Singh storms into final of mixed team 10-meter air pistol event at Asian Games in Nagoya, Japan. And defending champions India hold Azerbaijan to draw in 8th round of FIDE Chess Olympiad in Samarkand. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will interact today with video conferencing with participants of Seva Yatra travelling from Varanasi in UP to Vadnagar in Gujarat under Seva Sankalp Abhiyan. More from our correspondent.
4: The interaction with the Prime Minister will give the Seva Yatris a chance to share their experience from the journey, which is intended to connect youth participation and community service across the locations covered by the teams. The Seva Yatra began on September 17 and is part of the wider Seva Sankalp Abhiyan to highlight PM Modi's 25 years of public life. The participants are travelling through towns, districts, talukas and villages, with the program focusing on taking community service and public engagement activities to

0: the grassroots. The journey is not limited to a motorcycle expedition, but is designed
1: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम
1: मिस कर दिया तो रीलोड
3: चाय चाय चाय
4: बिंदास मॉर्निंग
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
6: Koi mil gaya, koi mil gaya.
7: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM Muradabad 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM Muradabad 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
4: बिंदास मॉर्निंग।
8: बिंदास मॉर्निंग।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार कैसे हाल चाल हैं आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक एक और ताजी सुबह एक और फ्रेश मॉर्निंग में आपका स्वागत अभिनंदन है जी वेलकम बैक है यू आर लिसनिंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और जहां बातें होती हैं ढेर सारी और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आपने ट्यूनिंग कौन सी फ्रिक्वेंसी की है 89.6 इसी को ट्यून इन रखना है मेरे भाई हाँ जी देखिए मेरी एंट्री हो गई है यहाँ पर आज दिन की बात करें तो शुक्र है कि आज शुक्रवार का दिन है दिस इज फ्राइडे की सुबह तारीख की बात करें तो आज 25 सितंबर सन 2026 देखिए 25 तारीख होगी मात्र 5 दिन बचे जब हम अक्टूबर में चले जाएंगे ओ माय गॉड मतलब विंटर्स दस्तक देने वाले हैं यार आई एम सो एक्साइटेड सर्दियां यार मेरे को बहुत पसंद है और आजकल भी लिटरली आपको बता रहा हूँ अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना मॉर्निंग में अगर आप 6 o'clock उठ जाते हैं तो आप देखोगे सुबह की धूप आपको वैसी नजर आती है सुबह सुबह सर्दियों वाले सूरज चाचू दस्तक दे रहे हैं आपके दरवाजे पर चलो जी समय की बात करें तो 8:21 का समय हो रहा है हमारे स्टेशन क्लॉक में सूरज जो है पूरी लालिमा के साथ प्रकट हो चुके हैं आज की सुबह कैसा रहेगा आज का मौसम ये सब कुछ आपको बताएंगे और आज का विचार भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच हमारे साथ आप इतने वंडरफुल मैसेज शेयर करते हो एवरी मॉर्निंग मतलब मैं आता भी नहीं हूँ आपके मैसेज आ जाते हैं यार यही तो आपका सच्चा प्यार है जो आप इतना हमारे साथ शेयर करते हो अपना लगाव तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार मतलब थैंक यू सो मच और सच में मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी जॉब हर किसी की हो तो मजा आ जाए सुबह सुबह मतलब बात करने के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड यार चलिए दोस्तों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ अगर आपको बिरयानी जैसी वाइब चाहिए तो आपको खिचड़ी जैसे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा मतलब जो कहते हैं ना कभी कभी छोटे लोगों का साथ ना आपको छोटी चीज़ों में उलझा के रख देता है तो इसलिए आप अपने आसपास उन लोगों का ऑरा बनाइए जैसे आप एक्चुअली खुद को देखना चाहते हैं जैसे आप बनना चाहते हैं ना तो जैसे होंगे आपके आसपास लोग वैसे ही आपका ऑरा और आपका एनवायरमेंट बनेगा इसलिए अच्छे लोगों को चूज़ करो भाई अच्छे लोगों को आपको जो है अपने साथ रखना है कहते हैं ना संगत का असर बहुत बड़ा होता है हमारे बुजुर्गों ने ऐसे नहीं कहा है मेरे भाई है ना तो लाइफ में कुछ अगर स्ट्रॉन्ग करना है कुछ पावरफुल करना है तो आपके साथी भी वैसे होने चाहिए जिनके अंदर एक फायर हो कि हाँ यार मुझे भी अर्ली मॉर्निंग कुछ नया करना है आज से कुछ नई किक स्टार्ट करनी है जिनके अंदर वो जज्बा वो रुतवा वो यू नो अंदर से एक फायर होती है ना करने के लिए वो डेफिनेटली कर जाते हैं ना तो अपना अपने आसपास के लोगों को ज़रा चूज करना सिलेक्ट करना सीखिए और अच्छे लोगों का साथ जो है जब आपके साथ होगा तो यकीन मानिए आपकी लाइफ ठा करके जो है एकदम जबरदस्त वाली हो जाएगी मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल बातें ऐसी ढेर सारी चलेंगी बस इतना ही कहना चाहते हैं अगर आपको बिरयानी वाली तो खिचड़ी वाले लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा है ना जी कहते हैं ना छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है तो बस इसी बात के साथ चलिए करते हैं आज के सफर की शुरुआत लेडीज एंड जेंटलमैन आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद जहां हम कहते हैं रेडियो बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए चलो एक बेहतरीन गाने से होगी आज के इस बेहतरीन से सफर की शुरुआत इस दिन का जो है हम यहां पर शुभारंभ करने वाले गाने के साथ बाकी आप भी हमारे साथ जुड़ो यार 9837896896 पे हमें व्हाट्सएप करो अपने दिल के हालचाल बताओ यार बाकी हम आपके लिए कुछ अच्छे गाने लगा रहे हैं जिनको सुन के आपको सच में आज आनंद आ जाएगा आज की सुबह और ढेर सारे जो आपने मैसेज किए हैं ये मैं अभी डेफिनेटली लौट कर आता हूं तो इनको शामिल करने वाला हूं अपने स्टेशन पर बहुत ही खूबसूरत गाने से कर रहे हैं आज के सफर की शुरुआत अलका याग्निक एंड शानुदा की आवाज फ्रॉम द फिल्म रंग इस मूवी का गाना निकल गया है गुड मॉर्निंग

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

सच में यार, कुछ गाने गाने नहीं होते हैं, मतलब एकदम से ना इमोशनली हमें कनेक्ट कर देते हैं। एंड ये गाना इमोशनली तो नहीं था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाने के अंदर फुल ऑन स्वैग वाइब एंड मतलब सब कुछ था। अल्टीमेट सॉन्ग है ये, फिल्म का नाम था जानवर, 1999 में मूवी आई थी, बहुत ही कमाल की फिल्म थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतनी अच्छी अच्छी इसके अंदर जो है ना एक्टिंग है, एक्टर्स हैं, एक्टर हैं, मूवी बहुत बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल 8:34 हो रहे हैं, मुरादाबाद शहर में आज क्या स्पेशल होने वाला है ये आपको बताने वाला हूँ जरा सी देर में। एंड आज का दिन क्यों खास है इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके व्हाट्सएप पढ़ लेते हैं। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है आनंद जी? मैं पल्लवी बात कर रही हूँ लाइन पर रामलीला ग्राउंड से। आपके गाने सुन के बड़ा मजा आता है आज की सुबह, बस मैं भी एक विचार शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए जिंदगी में अगर कुछ अच्छा करना है तो अपने आसपास के लोगों का जो है आपको सिलेक्शन अच्छा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली मैंने भी यही कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा एंड फैंटास्टिक करना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जो ना अपना एनवायरमेंट चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच पल्लवी। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा जुल्फी भाई का, लिखते हैं आनंद जी गुड मॉर्निंग, कल करे सो आज करे सो, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूं यार, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल गोड। एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा है हनुमान मूर्ति से विशाल का, लिखते हैं आनंद जी कैसे हो, सुबह सुबह मजा आ रहा है, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और आपके गाने सुन रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे गाने आप प्ले कर रहे हैं, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मैसेज हमारे पास पहुंचा है, हेलो हाय नमस्ते आनंद भाई गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह इतनी फ्रेश आवाज, हाय हाय मजा आता है, क्या खाकर आते हो भाई? अभी तो सच बताऊं, लिटरली मत बताऊं, सीरियसली अभी तो कुछ नहीं खाया भाई, और मैं आपको जेन्युइनली बताऊं तो मैं सुबह सुबह बिना खाए पिए ही आता हूं, शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा दे पाता हूं, मे भी हो सकता है। हालांकि आप ऐसा मत करना प्लीज, अपना ब्रेकफास्ट डेफिनेटली करके जाइए। एंड आगे बढ़ते हैं, हाय गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूं यार, मैं बहुत ही बढ़िया हूं, लेकिन इन्होंने मेरे को अपना नाम नहीं लिखा यार। देखो अगर आप लोग मैसेज करो तो अपना नाम डेफिनेटली शामिल करो, क्योंकि हमें पता तो चले हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं वो कौन है, है ना, हमें पता लगना चाहिए ना। हम आपका मैसेज पढ़ रहे हैं और आप हमें अपना नाम नहीं भेज रहे, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे मुश्किल हो जाता है, मज़ा नहीं आता। एक और वंडरफुल ट्रैक आपके रेडियो पे निकल गया है, एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग सर, मुश्किलें कितने भी आ जाएं आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, क्या बात है, आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। थैंक यू वैशाली जी, थैंक यू सो मच। गायत्री नगर से मैसेज पहुंचा है मेरे पास, 84 घंटा मंदिर से एक मैसेज आ रहा है, हेलो आनंद जी नमस्कार, सुमन बात कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग सुमन जी। सर गर्मा गर्म चाय भेज रहे हैं आपके लिए, प्लीज इस चाय को ग्रहण कीजिए। अरे वाह, काश ही रियलिटी में हो जाता। चलिए जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोग भी जुड़ सकते हैं श्रोताओं, 9837896896 पे हमें मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपने दिल के हालचाल साझा कर सकते हैं आज की सुबह। आने वाला गाना, ओए होए सोनू निगम,

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हाय वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग। आप आनंद के साथ हैं, सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन। बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप जहां भी जा रहे हैं विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक यार। आज की सुबह मैं आपको दे रहा हूं ढेर सारी बधाइयां, और आज गणपति बप्पा मौर्य करते करते सारे लोग बप्पा को बधाई देने वाले हैं। अगर आज आपके घर पे भी बप्पा की बधाई है तो आंखों में नमी, बिल्कुल मैं समझ सकता हूं यार। इतने दिन हमने किस इंसान को अपने घर पे, मतलब भगवान को बुलाया और उनको इंसान के रूप में प्यार किया, उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हुए, तो जब बप्पा जाते हैं तो यार मैं समझ सकता हूं। फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, बात करते हैं आज के दिन के बारे में, क्यों खास है 25 सितंबर की तारीख, इस पे एक नजर डालेंगे। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, बस फटाफट से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप जो मैसेज कर रहे हैं वो डेफिनेटली मैं आपके मैसेज को भी शामिल करूंगा। एंड अभी ना मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है जो आपके साथ शेयर करेंगे अभी हम इसी रेडियो पर, क्योंकि आप मुरादाबाद रेडियो सुन रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको सारी जानकारी देते हैं। क्या कुछ खास चल रहा है वो सब कुछ हम आपको बताते हैं इसी रेडियो पर, तो बस आप ऐसे ही हमारे साथ सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ढेर सारी बातें करते रहिए। देखो श्रोताओं, 25 सितंबर की जो तारीख है वो बहुत ही सारी बातों को लेकर जो है काफ़ी कह सकते हैं चर्चे थे। सबसे पहले आपको बता दें, आज के दिन 1639 में अमेरिका में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की जो है वो शुरुआत हुई थी श्रोताओं आज के दिन। और आपको बता दें, इंग्लैंड और डेनमार्क ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे आज के दिन। और अमेरिका सेना ने मैक्सिको पर मोर्ट्री पर कब्जा किया था सन 1846 में। आज के दिन ब्रिटेन में पहली बार बस सेवा की शुरुआत हुई थी, ये 1897 में। और आज के दिन आपको बताते चलें एक और खास चीज हुई जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। 1999 में 8वें सेफ खेलों में काठमांडू में उद्घाटन हुआ इसका। और इसके अलावा एक और खास चीज आपको बताते चलें, सऊदी अरब ने तालिबान मलेशिया के साथ अपना संबंध तोड़ा था सन 2001 में। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो हमने आपको बताई। बात कर लेते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास लोगों की, जिनकी वजह से, जिनके कंट्रीब्यूशन की वजह से ये दिन और ये तारीख और भी ज्यादा खास हो जाती है। हाँ जी, तो उनमें से कुछ गिने चुने नाम आते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय जी, महान चिंतक और संगठन, इनका जन्म हुआ आज के दिन सन 1916 में। इसके अलावा सतीश धवन भारत के प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक है, सन 1920 में इनका भी जन्म हुआ था आज के दिन। दोस्तों ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ बेहतर और बेहतरीन करने का प्रयास किया, हर सिचुएशन में संघर्ष किया। आज के दिन जन्म हुआ था फिरोज खान का, प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्माता निर्देशक थे, 1939 में इनका जन्म हुआ था श्रोताओं आज के दिन। दिव्य दत्ता फिल्म अभिनेत्री है, 1977 में इनका भी जन्म हुआ आज के दिन। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, और ये थे कुछ आज से जुड़े वो नाम जिन्होंने कुछ कमाल कर दिया है। और आज की सुबह आप भी कमाल कर सकते हैं, बस उठाइए अपने कर्मों की किताब और लिखिए कुछ बेहतर से बेहतरीन। और इतिहास का पन्ना लिखने के लिए कलम की नहीं हौसलों की जरूरत होती है, तो बस अपने हौसलों को बुलंद कीजिए मेरे दोस्त। चलिए श्रोताओं, अभी लौट कर आएंगे तो आपसे और भी बातचीत करेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन। कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली डू शेयर विद मी कोई भी बात 9837896896 पे व्हाट्सएप कर सकते हो आज की मॉर्निंग। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप मुरादाबाद की दाल खाने जा रहे हो तो आपको बहुत मजा आ जाएगा आज की सुबह यार। उसकी बात ही अलग होती है, और जो अगला गाना लगा रहा हूँ इसकी बात भी अलग होगी, बिकॉज ये गाना आप लोगों ने बहुत सुना होगा स्कूल टाइम में, काफी नॉस्टैल्जिया ट्रैक है। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को प्ले कर रहा हूँ अपने रेडियो स्टेशन से एक्सक्लूसिवली आपके लिए आज की मॉर्निंग। ये म्यूजिक ही

सफिशियंट है यार, मतलब म्यूजिक, हाँ मतलब अभी मुझे लगता है ये काफी है, ये म्यूजिक, ये वाइब, ये नॉस्टैल्जिया फील आपको एकदम फ्लैशबैक में वो अंताक्षरी वाले टाइम पे ले जाएगी आज की सुबह। चलिए, आप किचन में हैं, आप घर में हैं, आप गाड़ी में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप जहां भी मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अभी बहुत सारी चीजें जो आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले ये गाना, उसके बाद वापस आ रहे हैं जी। गुड मॉर्निंग।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: हाँ मेरी कसम.
1: मिस कर दिया. तो रीलोड.
3: चाय चाय चाय.
4: बिंदास मॉर्निंग.
1: बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर.
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081.
7: स्किन एलर्जी मस्त से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर रिचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.

0: बसंती इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: हाँ जी, आपको नचाने के लिए तो आते हैं डेली मंडे टू सैटरडे। ये फ्राइडे मॉर्निंग है। वेलकम बैक यू वंस अगेन। यू आर लिसनिंग टू FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आप आनंद को सुन रहे हैं। ये है आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी कम्युनिटी को कनेक्ट करके रखना, यही तो खूबसूरत बात है। अपने लोकल रेडियो की लोकेलिटी पे बात करते हैं और आज मुरादाबाद शहर में क्या लोकल पे चल रहा है सारी जानकारियां आपको दूंगा। आप जहां भी जा रहे हैं, गुड लक यार, ऑल द वी बेस्ट। आपने सीट बेल्ट लगा रखी है ना, वेरी गुड यार। ये सबसे अच्छा काम करते हैं आप लोग, ये मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक्शन रिप्ले से आने वाला गाना, इस गाने से होगी इस घंटे की किक स्टार्ट। बाहर का मौसम एब्सोल्युटली ऑसम। मैं वेदर चेक कर लेता हूँ। बादल हो चुके हैं बाहर हल्के फुल्के। आप कहाँ पर हैं आई डोंट नो, बट आप जहाँ भी हैं वहाँ का वेदर कैसा है ये आप मुझे बताएंगे। 25 डिग्री सेल्सियस करंट राइट नाउ वेदर अपडेट। एंड अगर बात करें हवा की, तो 3 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से आज हवाएं रहने वाली। ह्यूमिडिटी 81% दिखा रहा है। एयर क्वालिटी 32%, मतलब ग्रीनरी, मतलब ठीक ठाक है वेदर। मौसम अच्छा होने वाला है। अगर हाईएस्ट की बात करूँ तो ये 30 डिग्री पहुंच सकता है। लोएस्ट की बात करूँ तो 23 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है। बाकी मौसम अच्छा है। देखिए हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, खूबसूरत माहौल है, अच्छे गाने हैं, अच्छी वाइब है, ठंडी हवाएं हैं, सुबह का मौसम है। आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, वेरी नाइस है। ऑल द बेस्ट। लौट कर आते हैं एक सवाल के साथ। डोंट गो एनीवेयर, ऐसी सुनते रहिए FM मुरादाबाद पे RJ आनंद को। क्या हाल चाल है जनता।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।

सपने वो नहीं होते हैं जो आपको सोने दें, सपने वो होते हैं जो आपकी नींदों को उड़ा दें, सपने वो नहीं होते जो आप रात में देखते हो, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो। अब भाई मैं इतनी सारी सपनों की बातें क्यों कर रहा हूँ, चलिए इस पे बात कर लेते हैं। हाय वेलकम बैक है, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक है। आज नेशनल ड्रीम डे सेलिब्रेट किया जाता है, सपनों का दिन है ना, कहते ना मेरा एक सपना है मैं देखूं तुझे अपनों में, ऐसे कुछ आपका सपना भी है तो उसके लिए थोड़ी सी जिद्दोजहद के साथ बात कर लो यार घर वालों से, शायद आपकी बात बन जाए जिसे आप अपनों में देखना चाह रहे हो। एक बार फिर से 9:11 हो गए स्टेशन क्लॉक में, और कल भी यही टाइम था, आज भी यही टाइम, यार डेली ये टाइम होता है, लेकिन चीजें थोड़ी अलग हो जाती है ना। आज 25 तारीख हो गई है, और बाकी जो लोग आज गणेश विसर्जन कर रहे हैं उनको ढेर सारी बधाइयां, और आज अनंत चतुर्दशी भी है, इसके पीछे 14 धागों का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व माना जाता है, उस पर बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज जैसे मैंने बताया नेशनल ड्रीम डे मनाया जाता है, तो आप मुझे कोई अपना सपना बताओ जो अभी तक आपने कुछ अच्छा सा देखा हो या जो आप देखना चाहते हो वो आप मुझे शेयर कर सकते हो 9837896896 में। कोई बड़ा खराब सा सपना देखो या कोई बहुत ही अच्छा सपना देखो और आपने आपको लग रहा हो यार आनंद काश ये सपना सच में सच हो जाए तो मजा आ जाएगा, यू नो आप कुछ भी बता सकते हो व्हाटएवर। एंड मैंने भी एक सपना देखा था कल रात को, मैं आपको क्या ही बताऊं यार, अभी लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा, बड़ा अजीब गरीब सपना था मेरा तो। एंड मुझे पता भी नहीं था कि आज नेशनल ड्रीम डे होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब बड़ा रैंडमली ये सीन बना है। एंड अगर आप कोई अच्छा सपना देखे हो तो यार मुझे जरा बताओ 9837896896 पे व्हाट्सएप करके आप कैसा सपना देखना चाहते

भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए भी नहीं है, लाइफ का फलसफा है। आई एग्री विद यू, बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर लगते हैं हमारे ये पुराने लिसनर, हमारे अच्छे रेडियो श्रोता हैं। कितना ओल्ड इज गोल्ड। आप मुझे बताओ, आज नेशनल ड्रीम डे के मौके पे आपने कोई बढ़िया सपना देखा हो या कोई ऐसा वाहियात सपना देखा हो जो आप शेयर करना चाहते हो मेरे साथ, तो प्लीज उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना वो प्यारा सा ड्रीम जो आप देखना चाहते हैं, आप देख चुके हैं, या आप चाहते हैं कि यार आनंद मैं ये सपना देखता हूँ यार, काश ये पूरा हो जाए। वो आपकी रियल लाइफ सपना हो सकता है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन सपना हो सकता है, कोई से भी ड्रीम हो सकता है जो आपको लगता है, शेयर कर सकते हो मेरे साथ। अभी लौट के आ रहा हूँ आपके मैसेज के साथ। वंस अगेन, कहीं ट्रैफिक में हो तो डू लेट मी नो, मुझे बताओ फटाफट से 9837896896 पे कॉल या मैसेज करके अपडेट कर सकते हो। आप कहाँ जा रहे हो बताओ यार, अपने दिल की अपडेट, दिन की अपडेट बोला मैंने, दिन की। हाँ सलाम आया जी, आज सुबह का फ्रेश सलाम मेरी तरफ से भी आपके लिए। श्रेया घोषाल की आवाज साथ में, रूप कुमार राठौर देंगे साथ, वीर फिल्म का गाना निकल गया है आपकी रेडियो सेट पर। वो वंडरफुल सॉन्ग, क्या ब्यूटीफुल गाना है ये।

0: You're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: बहुत ही अच्छा गाना भी आप सुन रहे थे, एक दीवाने की दीवानियत से वंडरफुल ट्रैक। एंड सच में यार कुछ गाने ना दिल को टच करके चले जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी जिंदगी में जो हमारे दिन को बनाकर चले जाते हैं। एक बार फिर से वेलकम बैक है वंस अगेन, आप सुन रहे हैं आनंद को, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, बातें दिल से दिल तक होती है। एक कॉल मुझे आया है आज की सुबह जिसने मेरा माइंड ब्लोइंग वाला डे, मतलब जो इतना अच्छा बनाते हैं, माइंड ब्लोइंग कॉल यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट आइए बात करते हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग जी, क्या नाम है आपका?
1: प्रताप
0: जी, कहाँ से हैं आप जरा ये बताओ यार।
1: संबल से बोल रहा हूँ सर, संबल, संबल।
0: अच्छा अच्छा, क्या करते हैं प्रताप जी?
1: मैं छोटा सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। हाँ, मैं
0: ये छोटे नहीं होते हैं सर, ये छोटे नहीं होते हैं, बहुत अच्छी काम, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं।
1: मैं तो आपको अपने आपके सामने छोड़ा है तो क्यों समझ रहा हूँ।
0: अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात प्लीज मत करिएगा। और बताइए प्रताप जी, आज आपने फोन क्यों किया, कैसे आपको मतलब कॉल करने की याद आई?
1: नहीं, कॉल करने की याद मेरे को इसलिए आई, मैं नंबर इधर उधर से लिया है आपका, आपके कोई मित्र होंगे उन्होंने मेरे को दिया है।
0: अच्छा,
1: हाँ तो मैं सोचा कॉल करो। अरे एक बार मैंने सुना था, मैं कहीं ड्राइव कर रहा था तो उसमें मैंने आपका आवाज सुनी थी, उस समय करेक्ट हो रहा था, लेकिन अब मैंने कॉल करी है, इधर सुना है, देखा है आपकी आवाज, वाह मजा आ गया।
0: अच्छा आपको मेरी आवाज अच्छी लगती है?
1: सर मैं बार बार एक बार नहीं 100 बार ही बोलूंगा कि चाय भी ठीक ही रह जाएगी।
0: अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप रे, मतलब आपको क्या क्या अच्छा लगता है प्रताप जी सुबह सुबह, मतलब आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं।
1: अरे मेरे जो अच्छा लगा मतलब एफएम सुनना,
0: बहुत बढ़िया। अच्छा हम जो म्यूजिक चलाते हैं, जो एंटरटेनमेंट हम आपको देते हैं, वो अच्छा लगता है आपको?
1: बहुत अच्छा लगता है,
0: बहुत बढ़िया
1: लगता है। आप जो मॉडिफाई करते हो, आपका तरीका बहुत बढ़िया मॉडिफाई करने का।
0: चलिए प्रताप जी, यही ये हर कोई नहीं समझता है, लेकिन कुछ ऐसे लिसनर्स होते हैं गिने चुने जो पकड़ लेते हैं कि किसका प्रेजेंटेशन कितना ज्यादा अमेजिंग है।
1: मैं बता रहा हूँ ना, मैं पहले 98.3 सुनता था।
0: हाँ हाँ,
1: और मेरे को बचपन से शौक है सुनने का, लेकिन अब जब मुरादाबाद से ये सुनने को मिला है तो मैंने यही कनेक्ट किया है।
0: वेरी नाइस है प्रताप जी, बहुत अच्छा लगा, लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया आपसे बात करके। कुछ कहना चाहते हैं तमाम लोग आपकी आवाज रेडियो पे लाइव सुन रहे हैं मुरादाबाद संभल और ना जाने कहाँ कहाँ?
1: ना ना, मैं तो यही कहना चाहूंगा आप आनंद को सुनिए, अगर चाय भी ना मिले तो आनंद को सुनिए।
0: अच्छा जी, तो आपने तो अपनी चाय नहीं छोड़ी ना?
1: ना मैं चाय नहीं छोड़ता, मेरे चाय से भी नेटवर्क आते हैं मेरे।
0: ओ भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कभी कभी होता है ना कि हमें आदत बन जाती है, और जैसे अगर सुबह सुबह चाय ना मिले तो दिन अधूरा सा लगता है ना?
1: अधूरा सा लगता है सर। ओके
0: चलिए, नमस्कार प्रताप भैया, थैंक यू। ओके सर, बाय बाय। ओके जी, प्रताप जी ने कॉल किया, ढेर सारे अपने फीडबैक शेयर किए, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। एंड वंडरफुल टॉकिंग टू यू वंस अगेन प्रताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत जल्दी बोलता हूँ, चलिए तालियां ये मैं अपने लिए भी और आपके लिए भी बजा देता हूँ। फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, आज है 25 सितंबर, आज के दिन नेशनल कुकिंग डे मनाया जाता है, इसके अलावा आज वर्ल्ड ड्रीम डे मनाया जाता है। मैं सपने के बारे में पूछ रहा था और मेरे पास बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, हाय आनंद गुड मॉर्निंग, मैं तो हमेशा सपने में खुद को पिज्जा खाते हुए देखती हूँ क्योंकि घर वाले खाने नहीं देते हैं, तो बस मुझे पिज्जा ही आता है मेरे सपने में। वाह, इतना अच्छा मैसेज आपने किया ना, थैंक यू सो मच सुकृति। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी, रामपुर से शमा हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। एक मैसेज हमारे पास आया है, हेलो जी मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप लिखा होगा आंसर इन्होंने, जल्दी से ना मिस्टेक हो गया, हो जाता है कई बारी। प्रदीप लिखते हैं, यार बस सपनों में ना अपनी शादी को मैनिफेस्ट करता हूं, आनंद की काश मेरी शादी जितनी अच्छी सपनों में हुई उतनी अच्छी रियलिटी में हो जाए, बेटा नंबर दो पापा का आज तुम। थैंक यू सो मच। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और आज जैसे मैंने आपको बताया नेशनल कुकिंग डे मनाया जाता है, एंड आई लव कुकिंग बिकॉज मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ अच्छा बनाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। बिकॉज यार जब आप कुछ अपना फेवरेट बनाते हो ना और अपने हाथों से बनाते हो, उसकी बात ही अलग होती है। और आजकल तो खैर खाना बनाना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा टिपिकल चैलेंज नहीं रह गया है, चाहे पुरुष हो या महिला, हर किसी को आना चाहिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। एंड खाना बनाना गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर आप कहीं बाहर हो, जैसे अभी मैं बाहर वर्क करता हूँ, तो अगर मुझे चीज़ें नहीं आती तो मेरे लिए कितना मुश्किल होता, सोचो आप। अगर आपको कोई चीज आती है ना तो वो आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज पॉइंट हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी अगर आपके बच्चे कुछ अच्छा कुकिंग कर रहे हैं तो उन्हें अप्रिशिएट करें, भले वो स्टार्टिंग में अच्छा ना करें, बट लेकिन आप जब उनको सपोर्ट करोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे, तो यकीन मानना एक ना एक दिन वो बहुत अच्छा भी करेंगे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है लड़की हो या लड़का, हर किसी को हर चीज आनी डेफिनेटली जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें जरूर आनी चाहिए, हमारी जिंदगी में बहुत मैटर करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी काम की बातें हो गई, अभी एक अच्छा गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और लौट कर आएंगे तो आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं शेयर करने वाला हूं आज की सुबह, जिसको सुनकर आपको मजा आ जाएगा। अभी लोकैलिटी भी बात करेंगे, यानी मुरादाबाद में क्या चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप ऐसे ही कनेक्टेड रहिए आनंद के साथ और सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। 928 हो गए स्टेशन क्लॉक में, 9:28 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 पे आरजे आनंद को, जो बातें वही होती हैं जो आपका दिल चाहता है। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग।
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
7: लेकिन सोनिया
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
7: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
8: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

साडी गली आजा भाई। अच्छा गाना मिलेगा यार यहाँ पर। जब आप हमारी गली पर आते हैं तो आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज मिलता है, अच्छे गाने और हैपनिंग वाइब आपको मिलती है। आप सुन रहे हैं आपकी फ्रेंड का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, वेलकम बैक है। 9:36 हो गए, ये फ्राइडे की सुबह है, गणपति बप्पा मोरिया, आज गणेश विसर्जन है, अनंत चतुर्दशी है और आज पूरे बप्पा को 12 दिन हो गए और आज फाइनली बप्पा अपने घर को जा रहे हैं। गणेश भगवान जिन लोगों ने स्थापित किए थे 11 दिन के लिए, जिन लोगों ने 12 दिन, इस बार 11 नहीं 12 दिन के लिए बप्पा धरती पर आए थे, तो आज फाइनली अनंत चतुर्दशी और कल से पितृपक्ष लगने वाला है। और आज के दिन जो है कहा जाता है जो लोग 14 कांटों का एक धागा बनाकर अगर उसको ग्रहण करते हैं अपने हाथ में, मतलब अगर वो बांधते हैं या अपने गले में उसको पहनते हैं, तो वो बहुत ही जो है पावरफुल होता है। वो आज के दिन पहनना बहुत ही मैजिकल माना जाता है उसे। एंड इनफैक्ट उसमें ये भी कहा जाता है कि अगर आप आज के दिन से वाइप यू नो अनंत चतुर्दशी पे जो है आपकी एक रक्षा कवच यू नो ये बन के आपका काम करता है आज के दिन। ऐसा मतलब मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर का मैंने देखा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये एक काफी लंबे समय से एक रिचुअल बेसिकली लोग फॉलो कर रहे हैं इस चीज को। एंड आज के दिन ये लोग पहनते भी हैं, मतलब कोई भी एक पीला या फिर रेड कलर का जो मोली होता है उसमें आप 14 गांठे लगा करके उसको उसकी पूजा करके अगर आप उसको पहनते हैं आज के दिन तो बहुत ही शुभ माना जाता है, एक मान्यता भी है ऐसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं भैया कि देखिए अभी सरकार बोली कि यूपीआई पर लगने वाले हैं शुल्क 4 हिस्सों में बटेंगे। जो अभी यूपीआई पे लगने वाला शुल्क है वो 4 कैटेगरीज में जो है डिवाइड होगा। बताया जा रहा है कि भैया देखिए 2000 रुपये से ज़्यादा की जो

यूपीआई पेमेंट पर लगने वाला 0.4% का शुल्क है, यानी एमडीआर ग्राहकों से नहीं लिया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक एमडीआर का एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं जाएगा और यह रकम सिर्फ यूपीआई सिस्टम से जुड़े बैंकों और दूसरी संस्थाओं में ही बांटी जाएगी। ये साफ उनका कहना है ना। और बाकी आजकल यूपीआई को लेकर बड़े सारे जो है ना पंगे शंगे भी हो रहे हैं। भाई आप कहीं भी चले जाओ, लोग यूपीआई लेने से साफ इनकार कर रहे हैं कि नहीं भाई हम यूपीआई नहीं कराएंगे, हम अपना क्यूआर कोड ही छिपा के रख देंगे। भैया पैसा दो पैसा, आजकल पैसा मांगने हर बंदा, मतलब सोचो यार वो पैसे वाला टाइम वापस आ गया कि जब हर किसी की जेब में ना पैसे नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आज आपको बताते चलें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो है आज मनाई जा रही है, जिसके बारे में बात करना तो डेफिनेटली बनता है। इनफैक्ट मैंने हर कोई बात कर रहा है इस विषय के बारे में। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ चलिए आपको बताता हूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़। और कभी कभी ना क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी हो जाता है। आज वंदे मातरम के 150 वर्ष के पावन अवसर पर आज 25 सितंबर को ये आयोजित हो रहा है नमामि भारतम। जी हाँ, नमामि भारतम जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये बेसिकली एक सामूहिक गायन के ऐतिहासिक दिन के जो है रूप में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और समस्त देशवासियों को इसकी अनंत शुभकामनाएँ भी दी जा रही है। तो आपको भी वंदे मातरम के 150 वर्ष होने की खुशी में ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एंड वर्ल्ड ड्रीम डे आज मनाया जाता है। कहते हैं सपना छोटा हो या बड़ा, उसे पूरे करने की ठानिए और हर बाधा अपने आप दूर हो जाएगी। अपनी पहचान बनाइए, बस अपने अंदर का जो जुनून है, जो डेडिकेशन है, जो पैशन है, उसको फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली सब अच्छा होगा। एंड अभी फिलहाल आपके मैसेज जो आ रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छा अच्छा फील करा रहे हैं। हाई गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू डूइंग, कैसे हो यार, बहुत ही अच्छी बातें करते हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। शिखा हमारे साथ जुड़ी है मानसरोवर कॉलोनी से, लिखती हैं आज वर्ल्ड ड्रीम डे की शुभकामनाएं और मैं तो हमेशा सपने देखती रहती हूँ। भाई क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। देखिए सपने देखते रहना चाहिए ज़िंदगी में, सपने देखना बहुत अच्छी बात है। और आज नेशनल कुकिंग डे मनाया जाता है तो उस पर भी हम बात कर रहे थे आपके साथ कि भैया देखो कुकिंग जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं अगर रेडियो जॉकी नहीं होता तो मैं पक्का एक अच्छा शेफ़ बन जाता भाई, बातें बनाने के साथ साथ खाना वैसे अच्छा बना लेता हूँ, नो डाउट। अभी बात करेंगे लोकल में क्या चल रहा है, मतलब मुरादाबाद में क्या चल रहा है, हमारे आसपास शहर में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, ये जानना भी तो ज़रूरी है ना। देखिए भाई छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी ना हम न्यूज़पेपर नहीं उठा पाते हैं, भाई टाइम नहीं मिलता है, तो रेडियो के थ्रू आपको वो सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अच्छे गाने और अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते ही हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड बाकी अब जो है हमारा मुरादाबाद काफ़ी बदल रहा है, आपको भी पता है काफ़ी चीज़ें जो है मुरादाबाद में चेंज हो रही हैं, बहुत ही नई नई चीज़ें जो है देखने को मिलती रहती हैं। और अभी नए नगर आयुक्त ने जो है अपना कारोबार जो है वो संभालना शुरू कर दिया अपना कारोबार, तो जिसको लेकर काफ़ी लोग बधाई दे रहे हैं। जी हाँ भाई साहब, बहुत अच्छे तरीके से जो है शहर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, किस चीज़ की ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। और आज 25 सितंबर है और आज से लेकर के 27 सितंबर तक समर वैली में एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट जो है हो रहा है, टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है भाई साहब, आज से इसकी शुरुआत हो गई है। टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2026 जो है हो रहा है, आज से इसकी शुरुआत हो गई है और अब जो है आप वहां जा सकते हैं, समर वैली कांट पे है ये, वहां जाकर के आप जो है पूरा आनंद ले सकते हो बॉस। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वहां पर आपको देखने को मिलेगी, वहां पर बहुत सारे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं अपने मुरादाबाद में। ये स्टार्ट हो गया है आज से टेबल टेनिस टूर्नामेंट 2026 और ये कहाँ होने वाला है मैंने आपको बता दिया है। चलो गाइज वापस आते हैं एक सवाल के साथ, वक्त हो गया है 9:41, गाने और बातें दोनों एक साथ आपको मिलती हैं इसी स्टेशन पे। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, बहुत सारे लोग अपनी शॉप में बैठ के सुन रहे हैं और भैया और को भी सुना रहे हैं कि देखो सुनो ये आनंद जी बात कर रहे हैं, क्या बढ़िया बोलते हैं जी, बहुत बढ़िया, हमें पता है आप तारीफ कर रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, जब अच्छा काम करते हैं ना यार तो तारीफ अपने आप हो जाती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। आने वाला अच्छा गाना एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन सखिया 2.0। बहुत ही अच्छा गाना है, मनिंदर बुट्टर की आवाज, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये शुक्रवार की सुबह है, शुक्र है कि आज शुक्रवार है।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। बिल्कुल जी, बिंदास मॉर्निंग आप सुन रहे हैं। ढेर सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं। अभी वक्त है एक छोटे से क्वेश्चन का, जिसका आंसर देकर आप बन सकते हैं आज की सुबह सुपरस्टार। लेकिन यार, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं ना, उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ। सच में आप लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेज पहुँचाए हैं, थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिल से थैंक यू करना चाहते हैं इतने अच्छे अच्छे मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह। लेकिन उससे पहले सर जी कुछ बोलो यार।
2: मॉर्निंग पाइनएप्पल,
1: हाँ जी,
2: looking very good, very nice, good morning pineapple,
1: aha,
2: looking very good, very nice।
1: चलो जी, आप भी हमें बता सकते हो फटाफट से, अभी गुड मॉर्निंग नहीं, अभी मेरे सवाल का जवाब देना है आपने। फटाफट से आप मेरे को व्हाट्सएप करके एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपने। बेसिकली मुझे आज वर्ल्ड ड्रीम डे मनाया जाता है, आपको पता है ना। तो एक बहुत ही यू नो खूबसूरत फिल्म आई थी आयुष्मान खुराना की, जिसमें उन्होंने पूजा का रोल किया था। एंड मतलब बहुत ही कमाल की फिल्म थी और डायलॉग भी बहुत अच्छा था उस फिल्म का। तो अगर आप समझ रहे हो कौन सी फिल्म है, तो आप मुझे बस नाम बताइएगा उस मूवी का। उठाइए अपना फ़ोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम। आयुष्मान खुराना की कौन सी फिल्म आई थी जिसमें वो ड्रीम गर्ल बने थे, मतलब उन्होंने ना लोगों का सपना पूरा कर दिया था, ऐसे पूजा बनके बात करते थे लोगों से। तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी फिल्म है, व्हाट्सएप कर सकते हो अपने नाम के साथ अपना जवाब 9837896896 पे डायलॉग।
3: हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ।
1: यस,
3: मुझे बताओ कितने बड़े प्लेयर, सॉरी खिलाड़ी हो।
1: मैसेज करो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये जो डायलॉग चल रहा है वो कौन सी फिल्म का है। दोबारा
3: सुनो। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, मुझे बताओ कितने बड़े प्लेयर, सॉरी खिलाड़ी हो तुम।
1: अगर आपको समझ में आ गया है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे। कौन से फिल्म का डायलॉग है, कौन से फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसमें आयुष्मान खुराना ने पूजा का रोल किया था। अगर आपको समझ में आया है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पे, मैसेज कर सकते हो अपने नाम के साथ अपना सही जवाब। चलो जी, अभी एक बढ़िया सा गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ आज की सुबह और वापस आ रहा हूँ। आज वर्ल्ड ड्रीम डे मनाया जाता है, उसी पर जुड़ा हुआ मैंने सवाल, कौन सी पिक्चर है बताओ जरा। लौट कर आ रहा हूँ।

क्या बात है, नच देने सारे लोग नचो भाई, इकट्ठे हो मेरे साथ। और देखो बहुत सारे लोगों ने मुझे बता दिया कि आनंद जी आपने जो सवाल पूछा था ना उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया, तो कोई बात नहीं जी, अब मैं चेंज कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अभी जो सवाल हुआ था ना, अब मैं उसको रिप्लेस कर रहा हूँ दूसरे वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आज वर्ल्ड ड्रीम डे के मौके पर, इतना आसान थोड़ी होने दूंगा मैं आपके लिए, चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा से सवाल पूछ लेते हैं, कड़क क्वेश्चन। हाँ जी, क्या करना है आपने? अभी एक म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ, अब इस गाने को पहचानो जरा। दिस इज मतलब क्वेश्चन, हाँ ये जो अभी सवाल पूछ रहा हूँ, अब ये इसी की मान्यता होगी, जो आपने जवाब दे दिया वो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, बिकॉज आप ही लोग कह रहे हैं, आप इन्हें आंसर कर दिया, तो अब बताओ जरा ये कौन सा गाना है। एवरग्रीन मूवी, वंडरफुल सॉन्ग, अमेजिंग स्टार कास्ट। बताओ आज वर्ल्ड ड्रीम डे के मौके पे सपनों की बातें हो रही हैं इस गाने में, बहुत ही अच्छा गाना है। अगर आपको समझ आया है तो आप उठाइए अपना फोन, टाइप कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब। अभी तो ठीक है ना बॉस, जरा व्हाट्सएप करो। Yes, ये कौन सा गाना है यही आपको मेरे को बताना है। आज वर्ल्ड ड्रीम डे के मौके पे आपसे पूछ रहा हूँ। वक्त हुआ है 9:57, फटाफट से आपको बताता हूँ। 2 अक्टूबर को देश में नहीं चलेगा UPI, क्या सच है ये बात? इसके बारे में बात करते हैं, बड़ी सारी भसड़े मची हुई है ना, तो अगेन इसके बारे में भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि देखिए रेडियो पे जो हम बातें बताते हैं वो बहुत ही इधर उधर से ना ऐसे चोरी की भी नहीं होती, इधर उधर की वो फेक बातें नहीं होती, वो जेन्युइन और अच्छी और सच्ची बातें होती है ना, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो इस पे अभी हम बात करने वाले हैं। रुको जरा, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा गुड मॉर्निंग कर दिया ना, हमारा मजा आ गया है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और अभी मैं लौट के आता हूँ तो उसके बाद इस पे बात करेंगे, और एक अच्छी सी हेल्थ अपडेट आपको दूंगा कड़क वाली। आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो RJ आनंद के साथ।

0: रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: देखो, देखो वहाँ क्या?
3: अरे आनंद इज बैक।

घाबरा, धोती कुर्ता पहन के घूमना दिल्ली हो या ओ पकड़ा गया भाई। कैसे हाल चाल है जी? बढ़िया से गाने अभी आपने सुन लिए और देखो ऐसे अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने को मिलते हैं आनंद के साथ। चलो जी करते हैं अभी काम की बात। सुबह के 10:04 हो गए लेडीज एंड जेंटलमैन, आनंद के साथ ही अभी आपके सफर का साथी हूँ। थोड़ी देर में लूंगा यहाँ से जाने की इजाजत। वीकेंड है, फ्राइडे है, ऑफकोर्स अच्छे गाने हैं, अच्छी वाइब आपको मिलती है मेरे साथ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहाँ बातें दिल से दिल तक होती हैं। तो भैया देखिए, यूपीआई चार्ज के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में जो है व्यापारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। और अब आपको बता दें, अभी जो है बताया ये जा रहा है कि भैया 2 अक्टूबर को व्यापारियों ने एक इनिशिएटिव लेने की बात की कि यूपीआई से जो है पेमेंट नहीं लेंगे और ये 2 अक्टूबर को जो है नो यूपीआई डे बनाने की घोषणा कर रहे हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो कह रहे हैं कि 2 अक्टूबर को हम नो यूपीआई डे बनाएंगे, उस दिन हम यूपीआई से बिल्कुल भी पेमेंट नहीं लेंगे, जो भी आएगा सिर्फ कैश या कार्ड पर ही जो है सामान लेकर के जा सकता है। और भाई साहब अभी ये कह रहे हैं कि इस फैसले को लेकर के जो है अब सरकार से इन्होंने कुछ नाराजगी जताई कि इन्होंने भाई साहब ऐसे वाला यूपीआई को लेकर फैसला क्यों लिया। अब देखिए 2 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या सच में नो यूपीआई डे सेलिब्रेट होगा या नहीं होगा, मतलब उसको मनाया जाएगा या नहीं मनाया जाएगा। और फिलहाल आम जनता से रिक्वेस्ट की जा रही है, जो व्यापारी वो कह रहे हैं कि भैया आप शॉपिंग करने आ रहे हैं तो प्लीज़ आप कैश लेकर के आइए। और देखिए मोस्टली लोगों के पास आजकल आपको भी पता है प्लास्टिक मनी हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आजकल सैलरी भी ऑनलाइन ही होती है भाई। आपको बता दें 23 सितंबर को जो है मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में करीब 125 व्यापारी संगठनों ने पहले नो यूपीआई डे मनाने की जो है इस राज्य भर में लगभग 25% कारोबारियों के साथ मिलकर के ये चीज़ इन्होंने जो है बोल दिया कि भैया हम ये चीज़ करने वाले हैं। एंड अभी बात में जो है अभी ये 2 अक्टूबर से पहले पहले पता लगेगा कि क्या मतलब ये होगा या नहीं होगा। वैसे मुझे लगता है कि यार देखो यूपीआई तो यार अभी लोगों की इतनी हैबिट हो चुका है कि आप कहीं भी जाओ तो हर व्यक्ति को लगता है कि फटाफट से यूपीआई कर दो। वो थोड़ा सा डिजिटल है, एडवांस है और कभी कभी मतलब ऐसा भी लगता है कि हाँ यार चलो ठीक है कन्वीनियंट है, बट अब इससे ये भी लग रहा है कि नहीं यार जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है भाई। वेल आप इस पे क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइएगा, आपको क्या लगता है क्या नो यूपीआई डे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाऊंगा, यस आप मुझे वहां जाके चेक आउट कर सकते हैं, रेडियो वाला आनंद के नाम से ऑफिशियल आईडी फॉलो कर सकते हैं। एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आपको मिलती है हमारी ऑफिशियल आईडी। फिलहाल आपको आज वर्ल्ड ड्रीम डे के मौके पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये गाना कौन सा आइडेंटिफाई करना है। दिस इज योर लास्ट मौका, लास्ट चांस, दिस इज योर लास्ट चांस। बहुत ही वंडरफुल सॉन्ग है। बहुत प्यारा गाना है, अगर आपको समझ में आ गया है तो बस आप मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दो, मैं जल्दी से वापस आता हूँ एक लकी कॉलर के साथ। अगर आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बॉस, तो बस अपने फ़ोन के ज़रा करीब रहो यार, क्योंकि ऐसा होता है हम आपको कॉल करते हैं फिर आपका कॉल नहीं उठता है, बड़ी दिक्कत हो जाती है। सुबह सुबह आपसे बातचीत कर लेते हैं तो थोड़ा सा दिन बन जाता है यार। अभी आपका दिन बनाएगा ये गाना, प्रियांजल दैया। मुरादाबाद में बहुत सारी डांडिया नाइट होने वाली है, वैसे भी आपको बता दूं अक्टूबर में आपको कहीं जाना है तो आप बस आनंद के साथ कनेक्टेड रहो, बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, आगे आगे आपको खिलाएंगे और ढेर सारी डांडिया नाइट में लेकर भी जाएंगे। फिलहाल ये गाना, लौट कर आते हैं।

0: इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: प्यारे दी। देखो यार, आई एम नॉट पंजाबी बॉय बिकॉज मुझे पूरी पंजाबी नहीं आती। कभी कभी कुछ लिरिक्स मेरे सर के पार चले जाते हैं, उनको पकड़ के ले आता हूँ। मतलब बड़ा मुश्किल होता है। म्यूजिक एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। आप सुन रहे हैं मुरादाबाद का लोकल रेडियो, लेडीज एंड जेंटलमैन, करण औजला के साथ। अच्छे गाने, ऑफ कोर्स, मतलब करण औजला के जितने भी गाने होते हैं, इनकी वाइब, इनके म्यूजिक, इनके गाने के लिरिक्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक होते हैं। मेरी आवाज भी फैंटास्टिक है, ये आप मुझे बता देते हो। फिलहाल थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था एक बहुत ही इमीडिएटली वाला, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। मतलब इमीडिएटली तो पूछता ही हूं मैं। मैंने आपसे पूछा था आज वर्ल्ड ड्रीम डे के मौके पे, ये गाना कौन सा है। यही बताने के लिए लकी कॉलर को हमने कॉल लगा लिया है आज की सुबह। आइए उनसे बात करते हैं, बड़ी प्यारी आवाज है। कौन कहां से जुड़ी है, बात करते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग।
1: हेलो
0: मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बड़ी प्यारी आवाज है यार। कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम निधि है।
0: जी निधि जी, कहाँ से हैं आप इस वक्त?
1: मैं मुरादाबाद से हूँ।
0: अच्छा, मुरादाबाद में मैम कहाँ रहते हैं आप निधि जी?
1: एक्चुअली मैं गॉर्जेशियस पे रहती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप रेडियो भी सुनती रहती हैं काम काज के साथ साथ?
1: यस,

0: डाल दिया करो, कुछ और चला लिया करो भाई।
1: मॉर्निंग मेरी रूटीन सिर्फ एसएम की होती है, उसके बाद मेरे भजन वगैरह सुबह, तो थोड़ा मॉर्निंग में भजन लगते हैं, थोड़ा शाम को भजन लगते हैं।
0: एक माहौल बन जाता है, यू नो, स्पिरिचुअलिटी वाला, राइट?
1: जी,
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा निधि मैम, मैंने जो म्यूजिक प्ले किया था वो कौन से गाने का था, ये आप मुझे जरा पहले बताओ फटाफट से, राइट आंसर क्या है?
1: ये गाना सूर्यवंशम फिल्म से, कोरे कोरे सपने मेरे रहे।
0: अरे वाह, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन, ताली बजाओ भाई, ताली। निधि जी आपके लिए ढेर सारी ताली। अरे गाना भी गाओ इनके लिए, ये देखिए गाना भी बज गया। कंग्रेचुलेशन मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, लवली टॉकिंग टू यू, और आई थिंक
1: लवली टॉकिंग टू यू आल्सो,
0: थैंक यू सो मच। कैसा लगता है वैसे रेडियो सुनने में, कुछ अच्छा लगता है या नहीं?
1: Yes.
0: क्या क्या चीजें इंटरेस्टिंग लगती है निधि मैम, ये थोड़ा सा आप बताओ फटाफट से, इन शॉर्ट।
1: मोस्टली मेरा जब भी मैं सॉन्ग गाती हूँ तो ये आपके बात का जो सीरियल होता है वो लगता है। आज मेरा जल्दी
0: वेरी नाइस, वेल अच्छा लग रहा है ना आपको, मतलब कुछ तो स्पेशल सा फील हो रहा होगा, पूरा शहर आपकी आवाज सुन रहा है, कैन यू इमेजिन कितने लोग आपको सुन रहे होंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात यह कि शायद आप भी बहुत एक्साइटेड हैं, इसलिए शायद समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहाँ से बोलना है। आई अंडरस्टैंड,
1: फर्स्ट टाइम एफएम में बात कर रही हूँ।
0: दैट्स वेरी नाइस, बड़ी एक अलग सी फीलिंग होती है जिसको हम सुन रहे हैं, उसमें फिर हमारी खुद की आवाज आए विद माय नेम, तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है निधि मैम, आज आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज प्रिपेयर हो जाइएगा। ओके, अभी के लिए लवली मी टॉकिंग टू यू वंस अगेन, बहुत अच्छा लगा बात करके। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत मुरादाबाद की जनता आपको सुन रही है, इनफैक्ट बाहर भी लोग सुनते हैं हमें।
1: बस
0: रहे, खुश रहे, और अच्छा खाएं, मुझे बोलना पड़ेगा यार
1: जी, आज आनंद को सुनते रहे, रियली में बहुत अच्छा लगता है आपका शो मुझे। मैंने थोड़े दिन पहले ही आपका शो शुरू से, स्टार्टिंग से सुनना शुरू किया है, और मैं डेली उतने टाइम का लगा लेती हूँ आपका शो।
0: थैंक यू सो मच,
1: मुझे अच्छा लगता है।

0: चलिए गाइस, इसी गाने के साथ मैं भी लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत। इमीडिएटली आपके नाम को फटाफट यहाँ पे शामिल कर लूंगा। हाय, गुड मॉर्निंग आनंद, कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये इरशाद हुसैन, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी मेरे साथ जुड़े थे मंसूरी कॉलोनी से। एंड एक और मैसेज मेरे पास पहुंचा था, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? गुड मॉर्निंग, हाय, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, लाइफ एकदम कलरफुल हो गई है। थैंक यू सो मच प्रताप सिंह जी, बहुत ही मजा जो है आ गया आपसे बात करके। एंड आई गेस मैं सही पकड़ रहा हूँ तो आप वही प्रताप जी हैं जिनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ऑन कॉल। थैंक यू सो मच, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ एकदम कलरफुल होनी चाहिए। ढेर सारी हमारी तरफ से बेस्ट विशेज आपके लिए एंड आप सभी लिसनर्स के लिए, बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली अमेजिंग पर्सन यार। हाय, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? हरिओम महेश्वरी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लिखते हैं बहुत ही शानदार फिल्म थी, हमेशा टीवी पे आती रहती है, बहुत ही अच्छी मूवी है। एंड इन्होंने भी मुझे राइट आंसर दिया है, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक मैसेज आ गया, हाय गुड मॉर्निंग माई सेल्फ प्रिंस, हाय प्रिंस गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सही जवाब देने के लिए। अफरोज फातिमा जी ने राइट आंसर दिया है। एंड साथ में हमारे पास मैसेज पहुंचा है, गुड मॉर्निंग जी कैसे हाल चाल है? तन्वी सिंह मुझे मैसेज कर रही है एकता कॉलोनी लाइन पार से, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आज नेशनल कुकिंग डे है तो स्पेशल कुकर करो यार, अपने हाथों से कुक करके कुछ बढ़िया करके बनाओ और हो सकता है तो मुझ तक भी पहुंचाओ।
1: कोरे कोरे सपने मेरे करसों से थे कितने अधूरे, ये सूर्यवंश
0: पीछे मेरी आवाज भी आ रही मैडम, आपने जो है मेरी आवाज भी मुझे सुना दी है। थैंक यू सो मच एकता कॉलोनी लाइन पार से, आप भी हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे जुड़ते हैं, डीके अरोड़ा मेरे साथ जुड़ रहे हैं चंदन नगर से, ये भी मुझे मैसेज पहुंचाते हैं। एंड इसके अलावा मेरे पास एक मैसेज और पहुंचा है, हाय गुड मॉर्निंग हाउ यू कैसे हाल चाल है? वैदिक मेरे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग जी। साथ में मेरे पास एक मैसेज पहुंचा है हरिओम जी का, गुड मॉर्निंग। गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन साहब जुड़ रहे थे, हेलो सर। रिहाना जुड़ी थी, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य, ये भी लदावली कानपुर से जुड़े, गुड मॉर्निंग हाउ यू आनंद कैसे हाल चाल है? वेरी गुड मॉर्निंग, नाम नहीं लिखा बट इन्होंने, वेरी गुड मॉर्निंग सर, रामपुर से क्षमा बात कर रही हूँ, गुड मॉर्निंग जी। एंड इसके अलावा पल्लवी, शिखा और तन्विका हमारे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग सर हाउ यू कैसे हो? आई एम एब्सोल्युटली गुड यार। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू वंस अगेन, आप लोगों से बात करके बहुत मजा आया। प्रताप जी थैंक यू सो मच एंड बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अब मैं लेता हूँ आपसे इजाजत, वेरी वेरी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद यू, जब भी आते हैं मजा आ जाता। टेक्स्ट मैसेज पहुंच गया है, इमीडिएटली शामिल कर लेता हूं। अमरोहा से नेहा मेरे साथ जुड़ी है, नमस्ते गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है? हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू? साथ में ये अंश का मैसेज आया, चलो गाइस हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल मॉर्निंग, कल मिलते हैं। एंड बस रहिए, झकास रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट। अभी आनंद की ओर से साइनिंग।

0: इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
1: लेकिन सोनिया
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं,
1: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: रावण यहाँ पर पहुंच गया, तुम प्रतीक को लेकर यहाँ से जाओ। जस्ट गो।
1: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

राधे राधे, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल माय ब्यूटीफुल लिसनर, वेलकम है आपका फ्राइडे मॉर्निंग की ब्यूटीफुल शुरुआत। ऊपर से आसमान में छाए हैं काले बादल और मौसम की प्यारी सी वाइब मूड को एकदम फ्रेश कर रही है। एवरीवन, फ्राइडे मॉर्निंग है, मैं आपके साथ आपकी खुशी। और आज का दिन बेहद स्पेशल है क्योंकि आज है अनंत चतुर्दशी, गणपति बापा की विदाई देने और भगवान के अनंत स्वरूपों को याद करने का दिन। और गणपति पापा से तो बस यही विश है कि हर घर में हैप्पीनेस, पीस और खुशियां बनी रहें और पापा अगले बरस फिर से ढेर सारे पॉजिटिविटी के साथ वापस आएं। और आज का फ्राइडे थॉट भी बहुत सिंपल है एवरीवन। लाइफ में ना मौसम चाहे जैसा भी हो, अपना एटीट्यूड ना हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि खूबसूरत दिन वही है जिसे हम खूबसूरत बना देते हैं। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। समय हुआ है 10:30 एंड तारीख है आज 25 सितंबर की। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है एवरीवन, सारी गुफ्तगु आपसे करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। और आज एक बड़ी प्यारी सी बात है जो आप तक मुझे पहुंचानी है, जो मुझे कहना है, कह दें आपसे, बिना कहे तो हम रह नहीं पाएंगे। तो चलिए हम कह देते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आज की सुबह हम आपसे।

बिल्कुल एवरीवन, हमें आप सबसे बहुत प्यार है तभी हम आपसे मुलाकात करने के लिए आते हैं ना। अब आप भी मेरे साथ जुड़ जाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हाँ, स्माइल करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। मैं आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के इस पर।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
1: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
0: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: Ahem.

बप्पा मौर्य मंगलमूर्ति मौर्य, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी डोन, शंकर महादेवन जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज, और खुशी आपके साथ है फ्राइडे मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, पापा को विदाई का ये पल थोड़ा इमोशनल है, लेकिन दिल में एक ही फीलिंग है, पापा आप जा नहीं रहे हैं, बस अगले साल फिर आने का प्रॉमिस देकर जा रहे हैं। आपकी पॉजिटिविटी और आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, और अगले बरस फिर से आपका वही जलवा, वही धूम और वही खुशियां देखने को मिले। गणपति बप्पा मौर्य, अगले बरस तो जल्दी या हमारे शहर में भी, मुरादाबाद शहर में भी काफी धूमधाम से गणपति बप्पा जी का विसर्जन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और एवरीवन, वक्त हुआ है 10:41। मैं आपके साथ आपकी खुशी लेकर आई हूँ, आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ और आपके खूबसूरत संदेशों की यहाँ पर तो बौछार हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज है 25 सितंबर को बहुत ही खूबसूरत सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज है 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ड्रीम डे, एक ऐसा दिन जो हमें रिमाइंड कराता है कि सपने सिर्फ सोते हुए देखी गई तस्वीर नहीं होती, कुछ सपने वो होते हैं जिन्हें हम जागती आंखों से देखते हैं और पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। तो आज अपने ड्रीम को थोड़ा टाइम जरूर दीजिए, उस पर बिलीव कीजिए और एक छोटा सा स्टेप उसकी तरफ बढ़ाइए, क्योंकि बिग ड्रीम्स भी छोटे छोटे स्टेप से ही रियलिटी में बनते हैं। तो एवरीवन, आज की सुबह मैं आपसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए, आपका वो एक ड्रीम क्या है जिसे आप सच में सच देखते हुए देखना चाहते हैं? जी हाँ एवरीवन, आपका वो एक ड्रीम क्या है जिसे आप

सच में सच होता हुआ देखना चाहते हैं? मैं आपके जवाबों का इंतजार कर रही हूँ। बताइएगा आपका वो एक ड्रीम क्या है जिसे आप सच में सच होते हुए देखना चाहते हैं? अपना जवाब हमें पहुंचाइएगा, मुझे इंतजार है। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, और अभी यहाँ पर जो संदेश आए हैं मैं उनको भी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ बिना किसी देरी के। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें संदेश पहुंचाया है, ये मैसेज हमें मिला है दादा बाबू रोड ग्रीडी झारखंड से, और ये मैसेज पहुंचाते हैं मोहम्मद यासीन अंजान जी। कहते हैं आरजे जी आपको हमारा प्यार भरा आदाब, कबूल कीजिएगा। बिल्कुल सर, हमने एक्सेप्ट किया आपका आदाब। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, रामपुर से शमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं आज की सुबह। मैं बहुत अच्छी हूँ शमा, आपका नाम है शमा, बहुत ही खूबसूरत नाम है यार, क्योंकि सबा मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम है और शबनम भी हमारे जो लिसनर हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो जुबान पे ना ऑटोमेटिक चढ़े रहते हैं ये मिले जुले नाम भी हैं। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का आज की सुबह, ये भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आया, गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह हरिओम महेश्वरी जी लाइन पार मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है यहाँ पर मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी का, और साथ में इनके फ्रेंड्स भी हैं सैयद शारिक अली जी, महराज अंसारी जी, बाबू अंसारी जी। गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर, आपको सुनकर सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहते हैं कि प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे अंदाज में आप प्रस्तुत करती हैं, अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और सर ने गाने की रिक्वेस्ट भेजी आज की सुबह, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे इसको प्ले करेंगे, हम आपको सुनवाएंगे। दोस्तों आज की सुबह मैंने आपसे बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, और देखिए हर किसी का सपना होता है ना कुछ लाइफ में ड्रीम होता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसकी लाइफ में कोई ड्रीम ही ना हो, हर कोई चाहता है, कोई सिंगिंग करना चाहता है, कोई कुकिंग करना चाहता है, कोई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहता है, एंड कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। अगर हम ड्रीम्स की लिस्ट तैयार करें ना तो कंप्लीट ही नहीं होगी है ना। एंड एवरीवन आप मुझे बताइए कि आपका वो एक कौन सा ऐसा सपना है जिसे आप सच में सच होते हुए देखना चाहते हैं, फटाफट से अपने जवाब हमें पहुंचाइए आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। अब बिना किसी देरी के ना अपना जवाब हमें पहुंचा दीजिएगा, ठीक है, हम इंतजार कर रहे हैं, और आपके फ्राइडे मॉर्निंग को बनाएंगे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत। तो मेरे साथ बने रहिए ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: पढ़ाई करते थे

0: हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस खुद पर विश्वास रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और मेहनत करते रहिए। आपका कोई भी ड्रीम ऐसा नहीं है जो पूरा नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट उसके लिए मेहनत और बिलीव इन योरसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और ये अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल साथ में पायल देव जी की आवाज में। और इस ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट हमारे पास अफरोज जी ने भेजी है एंड कुछ शायरी भी भेजी है, तो सुन लेते हैं आज की सुबह वो अपनी मधुर सी आवाज में क्या कहना चाहती हैं एंड किसके लिए कहना चाहती हैं, वो तो हम ऑन ईयर ही सुनते हैं। तो चलिए ऑन ईयर सुन उनकी वॉइस प्ले करते हैं और सुनते हैं उनकी बात।
1: गुड मॉर्निंग खुशी दी, तमी केम छो?
0: मजा मा।
1: आपकी दोस्त अफरोज स्वाति मा। आज मैं अपने और अपनी सिस्टर के लिए बहुत खूबसूरत लाइन लेकर आई हूँ। अफरोज की रोशनी से घर में हर सू नूर छाया है, अफरोज की रोशनी से घर में हर सू नूर छाया है, आशिया की सादगी ने हर दिल को भाया है, रुकैया की हंसी खिल उठती है हर महफिल में, रुकैया की हंसी खिल उठती है हर महफिल में, और सबसे छोटी गुलक्ष ने प्यार का चमन सजाया है।
0: क्या बात है भाई, आज तो आपकी बहनें खुश हो जाएंगी और लगता है कि वो इतनी तारीफ सुनकर कहीं डांस करने ना लगी हूँ। बड़ी बहन ने तारीफ जो की है छोटी बहनों की, अमेजिंग एंड लाइनी थी आपकी, थैंक यू अफरोज। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, प्रिय प्रसारक जी को हमारा नमस्कार। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं धनोरी तेरी वाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये मैसेज हमें पहुंचाती है राशिद हुसैन अंसारी जी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी जी कुरावली से। एंड उसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास कश्मीर से आया है महराजुद्दीन जी का, और इनको हमारा बीजीएम पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर अभी आया है एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं जय श्री राम, गुड मॉर्निंग खुशी मैम, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। धर्मेंद्र कश्यप जी हमें मैसेज पहुंचाते हैं लाइन पार कुंदनपुर से। तो चलिए एवरीवन, मैंने आज की सुबह आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आज वर्ल्ड ड्रीम डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और मैंने कहा था कि हर किसी का सपना होता है। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नीलाक्षी शर्मा जी का न्यू मुरादाबाद से, गुड मॉर्निंग हमें पहुंचाती है आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग नीलाक्षी। कहती है मेरा ड्रीम है मैम कि मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरी कंट्री की ट्रैवलिंग करूं एंड नई जगह देखूं, नए कल्चर को एक्सपीरियंस करूं और ढेर सारी खूबसूरत मेमोरीज बनाऊं। अरे वाह नीलाक्षी, ये तो बहुत अच्छा ड्रीम है आपका। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है विकास नगर से नेहा जी का, और ये भी गुड मॉर्निंग पहुँचाती है। कहती है मैम आज वर्ल्ड ड्रीम डे है तो मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं अपने पेरेंट्स को एक ऐसा घर गिफ्ट करूँ जहाँ वो बिना किसी टेंशन के सुकून से रहें और मेरे लिए उनके स्माइल से बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। कमाल कर दिया नेहा जी आपने तो। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं आज की सुबह आकाश एंड काशीराम से ये मैसेज पहुंचाते हैं। कहते हैं मी मैम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आकाश है और मेरा सपना है कि मैं अपने पसंदीदा, अच्छा ओके, ये कहना चाहते हैं कि मैं अपने पसंद की फील्ड में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। थोड़ा रिस्क है लेकिन ड्रीम बड़ा है इसीलिए एफर्ट भी पूरा रहेगा। बिल्कुल सर, जब आप शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं ना तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। थैंक यू सो मच आकाश जी, आपने अपना मैसेज पहुंचाया आज की सुबह। और एवरीवन, मैंने आपसे पूछा है कि आप मुझे बताइए आपका एक वो कौन सा ऐसा ड्रीम है जिसे आप सच में रियल में पूरा करना चाहते हैं, जो सच में सच होता हुआ देखना चाहते हैं, वो कौन सा आपका सपना है, बताइए बताइए। हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है फ्रूज का, उन्हें कहती है मैम मेरा सपना क्या है, मैं एक बार हज करने जाऊं और मेरी जिंदगी में एक अच्छा हमसफर आ जाए, बस यही दुआ है, यही मेरा सपना है। ओ वाओ, अच्छा सपना है आपका, हम दुआ करते हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले और आप हज पर भी जाएं। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं अभी कुछ अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई को बिल्कुल भी मत घुमाइए और अपने मैसेज हम तक पहुँचाइएगा। नंबर मैं आपको बता देती हूँ 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और शानदार सा ट्रैक एंजॉय कीजिएगा। ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर फ्रॉम द मूवी जरा हटके जरा बचके, बहुत ही प्यारा गाना है, इसको सुनते हैं उसके बाद लौट कर आते हैं।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस।

0: सब ज्वेलर्स आभूषण एक खुशियाँ अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

चतुर्दशी के पावन अवसर पर मुरादाबाद में गणपति बप्पा की विदाई का माहौल श्रद्धा भक्ति और उल्लास से सराबोर है। गणेश उत्सव के समापन पर शहर के अलग अलग इलाकों की गणपति जी की विसर्जन यात्रा निकाली जा रही है। लाजपत नगर, आदर्श नगर, कटघर समेत कई इलाकों में श्रद्धा ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर झूमते हुए गणपति बापा को विदा कर रहे हैं। चारों ओर गणपति बापा मौर्या अगले बरस तो जल्दी आके जयकारे गूंज रहे हैं। विसर्जन से पहले घरों और पंडालों में विशेष पूजा अर्चना, हवन और आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए हैं और वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी सतर्क है। विसर्जन स्थलों पर सुरक्षित साफ सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए इंतजाम किए गए हैं। एवरीवन, अब बात कर लेते हैं मुरादाबाद की मौसम की। आज शहर में मौसम आकांक्षिक रूप से बादल छाए रहने वाले हैं। अधिकतम तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर से शाम के बीच एक दो बार हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। तो अगर आप गणपति विसर्जन यात्रा में शामिल होने के लिए घर से निकल रहे हैं तो मौसम को देखते हुए थोड़ी सावधानी जरूर रखें और जरूरत हो तो छाता या रेनकोट भी अपने साथ रखें। मुरादाबाद से एफएम मुरादाबाद 89.6 पर ऐसे ही जुड़े रहिए और अपडेट पॉजिटिविटी के साथ। मैं हूँ आपके साथ, आपकी खुशी। एक बार फिर से बोलेंगे गणपति बप्पा मौर्य, मंगल मूर्ति मौर्य। और आपके यहाँ पर जो संदेश आ रहे हैं मैं उनको भी शामिल कर लेती हूँ। उनको कैसे हम मिस कर सकते हैं हाँ? एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, साथ में लक्ष्मी जी भी हैं और ये कहती हैं हेलो हेलो वाली प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। मीरा का मोहन से एक ट्रैक सुनना चाहते हैं, रब जैसा रूप तुम्हारा, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे आपको मैम। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये हमें राम राम सीताराम पहुंचाते हैं। अजीत कसाना जी, साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं एंड आदित्य कसाना जी हैं लदावली जिला मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर प्रियांशु का आया है और प्रियांशु जी भी हमें गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं आज की सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। तो एवरीवन, कुछ म्यूजिकल ब्रेक के बाद लौट कर मैं आती हूँ। आप कहीं मत जाइए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप तक पहुँचानी है, बस आप सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, और अभी समय हुआ है 11:24 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में। एंड अब आपसे हम एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल भी मालूम करने वाले हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल सा है। दोस्तों, आज का मेरा जो सवाल है ना, वो बड़ा सा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही खूबसूरत सा है, ट्विस्ट आने वाला है इस सवाल में। और मेरा क्वेश्चन आज की सुबह ये है, खुद की आवाज नहीं लेकिन सच बोलने से कभी नहीं डरता, खुद की आवाज नहीं लेकिन सच बोलने से कभी नहीं डरता, चेहरा देखते ही बता देता है कि मामला क्या है। बताइए बताइए क्या है ये, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है इसका सही आंसर क्या है। समझ में आया एवरीवन? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताती हूँ, कोई बात नहीं, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। आज की सुबह एक मजेदार पहेली हम आपसे पूछने वाले हैं। वो क्या चीज है जो खुद कुछ नहीं बोलती लेकिन सबके पोल खोल देती है? बताइए अपना सही जवाब अपने नाम के साथ। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। जी हाँ, वो क्या चीज है जो खुद कुछ नहीं बोलती लेकिन सबके पोल खोल देती है? जल्दी से अपना सही जवाब हमें पहुंचाएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जब तक आप अपना सही जवाब पहुंचाते हैं ना, तब तक हम आपको एक शानदार से गाना सुनवाते हैं। लौट कर आती हूँ मैं कुछ ब्यूटीफुल म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाएं, यूं ही बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। और आज की जो मेरी पहेली है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, बहुत सिंपल है, और उसके बिना तो सुबह की शुरुआत भी नहीं होती है। अब तो आप समझ गए होंगे ना।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

ऑफ कोर्स एवरीवन, सब लोग जानते ही हैं नेहा कक्कड़ के गाने अलग ही होते हैं यार। अमेजिंग ट्रैक अभी आपने सुना नेहा कक्कड़ और साथ में रोहन प्रीत जी की आवाज। अगर आप ऑन द वे कार में हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, सो सीट बेल्ट जरूर बांध लीजिएगा। मुझे पता है आपने बांधी हुई है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप कार में बैठते हैं तो पहले सीट बेल्ट ही बांधते हैं। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी जर्नी एवरीवन। जहां भी आप जा रहे हो आपका सफर खूबसूरती से गुजरे और अच्छे से आप जाएं। और आज की सुबह मैंने एक पहेली पूछी थी आपसे, बहुत सिंपल सी, और उसके बहुत सारे हमारे पास सही जवाब आए हैं। दोस्तों अब एक जरूरी बैंकिंग अपडेट, 28 से 30 सितंबर तक देश भर में 3 दिन की बैंक हड़ताल प्रभावित है। ऐसे में अपना जरूरी बैंकिंग काम पहले ही कंप्लीट कर लें। डिजिटल बैंकिंग और UPI जैसी ऑनलाइन सर्विसेज जारी रहने की उम्मीद है। बाकी ब्रांच से जुड़े काम प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए जो भी अगर आपके काम हैं जो अनकम्प्लीट हैं, इनकम्प्लीट हैं, उनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और दोस्तों आज का दिन देशभक्ति के जज्बे से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि ये इस साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल। वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं बल्कि हमारी मिट्टी, हमारी मातृभूमि और देश के लिए प्यार की खूबसूरत फीलिंग है। आज अलग अलग जगहों पर लोग एक साथ जुड़कर वंदे मातरम का सामूहिक गायन कर रहे हैं, यानी कई आवाजें लेकिन एक ही सुर, एक ही इमोशन। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। और एवरीवन, जो मैंने सवाल पूछा था ना उसका जवाब आप सबने यहाँ पर दिया है, अभी मैं शामिल करूंगी आपकी जो संदेश आए हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज भी आए हैं उनको भी मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ। हमारे पास यहाँ पर अमरोहा से मैसेज आया है नेहा जी का, क्या हाल है खुशी जी? मैं तो ठीक हूँ। और इन्होंने हमें आई लव यू पहुंचाया है आज की सुबह, आई लव यू टू नेहा जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे शोज एवरी डे सुनती हैं मैम, आप पार्टिसिपेट करते हैं और अपने प्यारे प्यारे से संदेश भी हमें पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है और ये संदेश हमें पहुंचाया है कहाँ से, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा है।

है, लेकिन हाँ गुड मॉर्निंग हमें विश किया है. वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. या आई एम गुड एंड यू? आप बताइएगा कैसे हाल चाल है आपकी. और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि दोस्तों जब भी आप मैसेज पहुँचाएं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम पहले लिखा कीजिए, फिर अपने सिटी का नाम, एंड उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं, अपने दिल की बातें पहुंचा सकते हैं मेरे पास. एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है अमरोहा से. एंड ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अर्श खान. कैसे हैं खुशी जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ. आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आता है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका. नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबलू सैनी जी का, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं. पहली का राइट आंसर क्या है वो तो आपको पता ही है ना. हाँ चलिए मैं अभी बस लौट कर आती हूँ कुछ म्यूजिकल ब्रेक के उस पार. आप कहीं मचाइए, यूं ही बने रहिए खुशी के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद. और लौट कर आऊँगी ना तो एक और सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ. एंड ये जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी ना, ये बॉलीवुड से रिलेटेड है और आप सब जानते ही होंगे कि जो मैं क्वेश्चन पूछने वाली हूँ ना, वो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, उनके बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाली हूँ. तो बस आप बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6.

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और अभी आपने सुना अमेजिंग ट्रैक। मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों मैं ना एक डायलॉग आपसे मालूम करने वाली हूँ एंड बहुत ही पॉपुलर एंड जाने माने एक्टर हैं, अभिनेता हैं एंड मैं आपसे बस यही जानना चाहती हूँ। आज की सुबह आवाज में स्टाइल अंदाज है, आवाज में स्टाइल, अंदाज में स्वैग और डायलॉग में दम है, लेकिन सवाल ये है मेरा कि डायलॉग किस लेजेंडरी एक्टर का है? जरा गौर से सुनिए और मुझे बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम और बताइएगा एवरीवन कि ये डायलॉग किस लेजेंड एक्टर का है एंड फिल्म का नाम आपको बताना है और इन एक्टर का नाम बताना है। तो डायलॉग सुनिएगा ध्यान से।
1: बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने बहुत छोटी लगती है। राजीव, बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई के सामने बहुत छोटी लगती है।
0: हाँ जी, मैंने यही आपसे पूछा एवरीवन आज की सुबह कि आवाज में स्टाइल, अंदाज में स्वैग और डायलॉग में दम, लेकिन सवाल मेरा ये है कि डायलॉग किस लेजेंडरी एक्टर का है? जरा आपने गौर दिया है तो हमें अपने नाम के साथ सही जवाब हमें पहुंचाएगा आज की सुबह। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। सही जवाब अपना पहुंचाइए और देखते हैं आज के कौन बनते हैं लकी सुपरस्टार। जब तक आप अपने सही जवाब पहुंचाते हैं ना, तब तक मैं आपको ना एक बहुत ही शानदार सा गाना सुनवाती हूँ और ये ट्रैक उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा।

हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज की सुबह मैंने आपसे पूछा था एक बहुत ही खूबसूरत सा बॉलीवुड से रिलेटेड एक डायलॉग मैंने यहाँ पर प्ले किया था, और अपनी दमदार आवाज में उस डायलॉग को डिलीवर किया था। उन्हीं एक्टर का नाम मैंने आपसे मालूम किया था आज की सुबह। और हमारे पास सबसे पहले सही जवाब हमें पहुंचाया है आज की सुबह पहले उनके लिए हम जोरदार क्लैपिंग कर देते हैं। और आज के वो ही बनते हैं हमारे शो के लकी सुपरस्टार।

0: बिल्कुल एवरीबॉडी सेलिब्रेशन तो बनता है, क्योंकि देखिए मैंने आज की सुबह बहुत सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा था, आवाज में स्टाइल, अंदाज में स्वैग और डायलॉग में दम। लेकिन सवाल ये है मेरा, ये था कि ये डायलॉग किस लेजेंडरी एक्टर का है। आपने गौर से भी सुना और सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचाया है आज की सुबह हमारी डियर लिस्टनर, रेगुलर लिस्टनर। उनका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनका नाम शुरू हो रहा है सुगंधा स्वीट लाजपत, लाजपत नगर से, एंड शायद लाजपत नगर होगा। मैम एंड सर, जो भी आप हैं, मुझे आपका नाम मालूम नहीं है, लेकिन आज आप हमारे शो के बनते हैं लकी विनर। वंस अगेन आपके लिए जोरदार तालियां।
1: Congratulations and celebrations.
0: और एवरीवन, सही जवाब है फिरोज खान फ्रॉम द मूवी वेलकम। और ये क्वेश्चन मैंने आज क्यों आपसे पूछा है बताती हूँ एवरीवन, क्योंकि आज उनकी जयंती है और मैंने कहा कि आज उनकी जयंती भी है और लीजेंड एक्टर हैं, तो क्यों ना उनके बारे में ही आज पूछा जाए। दोस्तों आज याद कर रहे हैं हम बॉलीवुड के स्टाइलिश आइकॉनिक फिरोज खान साहब जी को, जिनका जन्म 25 सितंबर 1939 में हुआ था। एंड 1960 में उनकी फिल्म आई थी दीदी से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। अभिनय के साथ साथ उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी अपनी खास पहचान बनाई और आज हम उनको दिल से याद करते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और दोस्तों मैंने आपसे ना एक और सवाल पूछा था, एक पहली पूछी थी, याद है आपको, इसका भी हमारे पास सही जवाब आया है। हमारे पास यहाँ पर सही जवाब हमें पहुंचाया था सबसे पहले बबलू सैनी जी ने मुंबई महाराष्ट्र से, और पहले का राइट आंसर था मिनो यानी आईना। एग्जैक्टली राइट यार, वो खुद कुछ नहीं बोलता लेकिन वो सब कुछ बता देता है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, ये मैसेज हमें आज की सुबह यहाँ पर पहुंचाती है दीप्ति शर्मा जी। और नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है कोमल शर्मा जी का, और इन्होंने जवाब दिया है जो मैंने बॉलीवुड से रिलेटेड पूछा था, तो मैम आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आपको फिर से मौका मिलेगा। और आज की पहली मैंने आपसे पूछी थी कि खुद की आवाज नहीं लेकिन सच बोलने से कभी नहीं डरता, चेहरा देखते ही बता देता है कि मामला क्या है, और इस पहली का सही जवाब हमें पहुंचाया है हमारे तमाम श्रोताओं ने। एक हमारे पास वॉइस नोट भी आया है, तो मैं इसको क्विकली प्ले करती हूँ कि आज की सुबह हमें सर ने क्या पहुंचाया है, उन्हीं की आवाज में सुन लेते हैं उन्हीं की बातें और आज की सुबह सर क्या पहुंचाते हैं।
2: खुशी जी गुड मॉर्निंग। खुशी जी मैं मुकेश गौरचंद्र नगर से बोल रहा हूँ। खुशी जी आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर है बोल है नाना पाटेकर के, और फिल्म का नाम है वेलकम।
0: सर आपने जो यहाँ पर आंसर दिया है ना, वो फिल्म का नाम तो सही है लेकिन डायलॉग प्रेजेंट किया था फिरोज खान जी ने, यहाँ पर आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट आपने पूरी अच्छी से कोशिश की है उसके लिए आपका शुक्रिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ऑन द वे कार में हैं, तो प्लीज केयरफुली ड्राइविंग कीजिएगा सर, एंड थैंक यू सो मच आपने अपना वॉइस नोट पहुंचाया आज की सुबह। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वैसे गुड आफ्टरनून का टाइम हो गया है, 12:03 हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी में। और हमारे पास अगला मैसेज आया है विकी सागर जी का, मुरादाबाद से जुड़े हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, विकास जी का हमारे पास सही जवाब आया था। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत बधाइयां। आज आप बनते हैं हमारे शो की लकी सुपरस्टार, क्योंकि आपने दिया है सबसे पहले सही जवाब। तो चलिए दोस्तों, आज के सुबह पार्टिसिपेट करके आपको भी मजा आया होगा। आई होप आपने शो को एंजॉय किया होगा एवरीवन। और अब मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं आपसे मिलूंगी सी यू सून 3 से 5। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, अपनों के साथ रहिए और ढेर सारी खुशियां बांटते रहिए, क्योंकि जो हम देते हैं रिटर्न में वही हमें मिलता है। बाय बाय।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: हम बहुत आभार दिव्या जी, और जो भी हमारे श्रोता सुन रहे उनको नमस्कार।
1: आज शामिल है कार्यक्रम में, और आज के कार्यक्रम का जो खास विषय है वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम कार्यक्रम में जो खास बातें करने जा रहे हैं वो है खरीफ का समापन व रबी का आरंभ। स्कूल में बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो हम दो तरह के क्रॉप प्लांटेशन के बारे में पढ़ते हैं, एक रबी क्रॉप और एक खरीफ क्रॉप।
0: जी
1: बच्चों को पढ़ाते समय तो हमने भी कई बार रट्टा लगाया कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, किस तरह के फसलों को हम
0: जी
1: लगाते हैं, और ये हमसे ज्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो बेहतर जानते होंगे। और आने वाले समय में ऐसे जितने भी हमारे सहयोगी हैं जो अब खेती किसानी की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे या खेती किसानी बेहतर करना चाहेंगे, उनके लिए भी कुछ अहम जानकारी हो सकती है।
0: जी
1: तो हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे हमारे कार्यक्रम के से पहले कुछ अहम जानकारी के साथ। सर से बातचीत जब हो रही थी तो फिर सर ने हमें PMKSK योजना के बारे में बताया था, जो केंद्र सरकार और उर्वरक मंत्रालय की ओर से ये पॉलिसी चलाई जा रही है किसान भाई और किसान बहनों के बेहतर खेती किसानी प्रक्रिया के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस योजना के द्वारा किसानों को क्या लाभ मिलने वाला है, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे पीएम केएस के तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे। वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेती बाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाए। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं तो अगर हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करते हैं, किसी अड़ोस पड़ोस के किसान से पूछ लेंगे, अगर उन्होंने भी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया है तो वो आपको भी उतनी अच्छे से जानकारी नहीं दे पाएंगे। लेकिन हर एक उत्पाद का जो उपयोग है उसका समय, उसकी मात्रा फसल के अनुसार अलग अलग होती है और उसको जब वैज्ञानिकों की ओर से पूरा अनुसंधान हो जाता है उसके बाद फिर उसकी रिकमेंडेशन आती है, सलाह आती है। ये सपोज मान के चले कि धान की फसल है, धान की

0: फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला, और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्य वर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: शामिल करना चाहेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक खास मैसेज को, जो उन्होंने उर्वरक उपयोग सलाह के बारे में कुछ बातें उन्होंने हमारे साथ साझा की है। चलिए उसे सुनते हैं और फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे हमारी आज के विषय पर चर्चा के साथ।
0: असल में जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो वो नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है देखी देखा हमके, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है 1 एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी, और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है, इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेती किसानी, और आज के कार्यक्रम का खास विषय है खरीफ का समापन और रबी का आरंभ। तो सर, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों के स्कूल बुक्स के बारे में चर्चा की थी हमने, कि किस तरीके से बच्चों को पहले रट्टा लगाया जाता था, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप प्लांटेशन के बारे में, खरीफ रबी फसलों के बारे में। तो ये खरीफ फसल के समापन से हम क्या कहना चाह रहे हैं, और समापन होता क्या
0: है? जैसे अभी जो सीजन चल रहा है हमारा, वो खरीफ का चल रहा है
1: जी।
0: खरीफ मतलब ये है कि जो फसलें हमने जून जुलाई में लगाई थी वो हमारे पकाव की तरफ आ रही है धीरे धीरे, और वो सितंबर का आखिर हम मान लें, या अक्टूबर में मान लें, या ज्यादा ज्यादा नवंबर के पहले सप्ताह तक उनकी कटाई होती है। कटाई का मतलब ये है कि जो उनकी उपज है वो तैयार हो जाती है, अनाज पक जाता है, फिर हम उसकी कटाई करते हैं और फिर उसको अपने घर लाते हैं, फिर आगे उसके विक्रय का प्रबंध करते हैं या जो उपयोग के लिए उसको हम रखते हैं। अब उससे तात्पर्य ये है कि हमने सारे चार महीने बहुत मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन इस वक्त पर जब हमें उपज लेके आनी है, उस समय अगर हमारी सावधानी नहीं रही, उसका समापन अगर हमने अच्छे से नहीं किया, तो जो हमारा अहम उद्देश्य था वो हमारा, उससे हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। तो समापन का अर्थ से मेरा यही है कि हम सारी क्रियाओं को सोच समझ कर और एक अच्छी प्लानिंग के साथ करें। प्लानिंग से अर्थ मेरा ये है कि हम ये देखें कि भाई इस समय पर हमारी फसल तैयार होगी तो इसको काटने के लिए मुझे क्या क्या संसाधन चाहिए
1: जी।
0: क्या क्या संसाधन से अर्थ ये है कि कटाई की व्यवस्था करनी है, लेबर चाहिए या कंबाइन से कराना है, ये भी कुछ है। फिर जब वो कटाई होगी तो वो आगे का अरेंजमेंट है, वो सारी चीज, तो मतलब ये है कि फिर उसके विक्रय से संबंधित है कि अगर उसको बेचना है तो कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है। तो ये सारी तैयारियां अगर हम एडवांस में करते हैं, जैसे कि हमें होता है ना कि हमारा बच्चे ने अब आठवीं कर ली, अब इसकी हाई स्कूल में एडमिशन होना है, इसका नाइन्थ में एडमिशन होना है, गांव में स्कूल हमारा आठवीं तक है, तो हम तैयारी करते हैं कौन से स्कूल में इसको भेजना है, कौन सा पास है, अगर दूर है तो वो यहाँ से रोज जाएगा, जाएगा तो कैसे जाएगा, या साइकिल लेनी पड़ेगी, या यहाँ से थोड़ी दूर पैदल जाएगा, वहां से उसको कोई सवारी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, तो ये सारी व्यवस्था हम करते हैं। अगर वो साइकिल से जाता है तो साइकिल हमारे पास है या खरीदनी है, या अगर वो किसी और साधन से जाता है तो उसका किराया लगेगा, उसका कितना खर्चा होगा महीने का, सुबह जाएगा शाम तक रहेगा, क्या वो खाना लेके जाएगा, सुबह उसके लिए भोजन बना दिया जाएगा, इतने बजे लौट के आएगा, तो ये सारी व्यवस्था है। उस स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, उसकी व्यवस्था करनी है, तो ये सब तैयारियां हम एडवांस में सोच के रखते हैं। और अगर वो हमें चीजें चाहिए तो कहाँ कहाँ से मिलेंगी, क्या रेट होगा उसका, है ना, ये जो जो, जो तैयारियां है वो हर जीवन के हर जो मतलब पहलू के साथ है। तो एक जो समापन की तैयारी, समापन में ये है कि भाई अब जैसे ये आठवां कर लिया है तो अब ये आठवां इसका होने वाला है, कितने नंबर इसको चाहिए, कैसा क्या चाहिए
1: जी,
0: आगे के लिए इसने क्या सोचा है, तो ये समापन की होगी, फिर उसके बाद हम आगे आ
1: गए। जिस तरीके से हम रबी क्रॉप्स और खरीफ ये जो फसल है, इन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें एक तो जिस तरीके के फसल उगाते हैं उसमें फर्क देखने को मिलता है, उसके हिसाब से आप जिन तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं उन तैयारियों में भी फर्क होगा। तो क्या उस हिसाब से हम मिट्टी को तैयार करते हैं, या फिर फसल हिसाब से बीज लेकर आते हैं, या फिर मौसम का उसमें कोई असर देखने को मिलता है?
0: जैसे कि अभी जैसे खरीफ, तो खरीफ का तो समापन है
1: जी,
0: समापन से अर्थ ये है कि हमें उपज अपने घर लानी, तो इसमें तो कोई आगे के लिए हमें व्यवस्था नहीं करनी है, लेकिन जो अब तक हमने व्यवस्था करी थी उसका जो मतलब परिणाम है वो हमें लाना है। अब उसमें मेन चीज क्या है कि जैसे हमें कटाई करनी है तो कटाई के साधन हमारे पास है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कटाई शुरू करी बीच तक हमारे साधन रहे उसके बाद फिर लेबर नहीं मिली या कंबाइन की व्यवस्था नहीं हो पाई, मतलब एक साथ हमारे काम होते चले जाए और एक बार में वो चीजें फ्लोलेसली जो मतलब जो निबट जाए, उसके लिए आपको लेबर को आगे से बोलना है, उसके लिए इक्विपमेंट आपको चाहिए या कंबाइन को कहना है तो कंबाइन वाले को तय करने के लिए, क्योंकि उसके पास सभी लोग आ रहे होंगे तो उसको तय करने के लिए कुछ एडवांस देना है, कितना देना है, क्या रेट जो करना है, आपने अपनी तरफ से बोली डेट, वो कुछ और डेट आपको चाहता है देना, वो समायोजन करना पड़ेगा। फिर आप कटाई करके उपज लेके आ रहे हैं तो एक तरीका ये होता है कि वहां से आपने काटा और सीधा मंडी ले गए, तो साधारण है, आपने काटा ट्रॉली में डाला मंडी ले गए, मंडी में आपने उसको बेच दिया। मंडी में बेचना है तो उस समय पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर मौसम सही है, खुला है, कोई दिक्कत नहीं, आप बेच के आ सकते हैं, एक दिन रुक भी सकते हैं, लेकिन अगर मौसम में उतार चढ़ाव है तो जो आप ट्रॉलियों से उससे लेके जा रहे हैं उसको त्रिपाल से ढक के ले जाना है,
1: कवर करके लेके जाना।
0: आप जब मंडी में लेके जा रहे हैं तो वहाँ कौन सी दुकान से आपका कॉन्टेक्ट है, आपको रेट का पता करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या रेट चल रहे हैं, कैसे है, तो ये सारी तैयारियां। और फिर पूछते रहिए कि जैसे अभी कुछ फसलें होती है वो थोड़ी एडवांस में आ जाती है, उसका इस रेट में बिका, उसका इस रेट में किया, अभी रेट क्या चल रहे हैं, मंडी भाव क्या है, तो ये सारी चीजें समापन से पहले आपकी अगर तैयार होंगी तो आप बेहतर ढंग से चीजों को संभाल पाएंगे और ज्यादा फायदा ले पाएंगे। दूसरा, अगर आप घर लेके आ रहे हैं तो वहां आपकी भंडारण की व्यवस्था है, क्योंकि जो इस समय अनाज लेके आ रहे हैं उसमें नमी ज्यादा होती है, तो पहले तो उसको सुखाना है, सुखा के फिर भंडारण करना है। अगर नमी वाला ही आपने ज्यादा स्टोर कर दिया कहीं पे तो उसमें फफूंद लग सकती है, वो खराब हो सकता है अनाज, तो सुखाना फिर भंडारण करना। भंडारण की भी जो जो जो स्थान है वो साफ सुथरा हो, उसमें नमी नहीं हो, जिससे कि अगर हम कुछ लंबे समय के उसके लिए स्टोर भी करें तो वहां पे कीड़े न लगे, इंसेक्ट न लगे जो कि आपकी उपज को खराब कर सके। तो ये सारी तैयारियां जो है ये समापन की तैयारियां है। अब समापन में आपने सपोज आपने जो मतलब जो विक्रय कर रहे हो, विक्रय के बाद कितना आपके पास पैसा आने वाला है उसकी भी आपको अरेंजमेंट करनी है कि भाई ये मेरे पास इतना आया, इसमें से इतना मैं अगली फसल के लिए रख रहा हूँ, इतना मेरे और कुछ खर्चे हैं उसके लिए रख रहा हूँ, बाकी है मैं बैंक में रख सकता हूँ जिसका मुझे कुछ ब्याज मिल सकता है, कुछ आप और कुछ कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, कुछ आपने हो सकता है कि कुछ उधार लिया हो उसका आपको आपको पेमेंट करना है। तो ये समापन से अर्थ है कि जो अब तक हमने प्रयास किए, मेहनत की, उसका जो परिणाम आने वाला है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा, जब आपकी फसल की कटाई होती है तो फसल अवशेषों का सही प्रबंधन आपको करना है, हल से आपको खेत को तैयार कर देना है, तो ये सारी चीजें समापन से रिलेटेड है।
1: तो खरीफ फसल के समापन के समय आपने इतने जो तैयारियां हैं इसके बारे में बताया, तो ऐसे कौन से फसल हैं खरीफ सीजन में जो हम लगाते हैं और समापन के समय हमें अलग से उनके लिए स्पेसिफिकली कोई तैयारी करनी होगी?
0: अब जैसे कि अगर खरीफ में हम देखें तो धान है, मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, उड़द है, मूंग है, ये सारी फसलें हमारे करीब करीब क्षेत्र में होती है। हर एक की अलग अलग तैयारी होती है, जैसे कि अगर आपको धान काटना है उसका अलग तरह का उसका तरीका, उसका अलग तरह का बाजार है। मूंग काटनी है, उड़द काटनी है, उसका एक अलग तरीका है, उसको काटना है, उसका थ्रेसिंग करनी है तो हाथ से करी जाती है या उससे या बैल से करी जाती है, या कुछ ऐसे थ्रेसर आते हैं जो कि उसको दाना टूटता नहीं है। तो सबका, अब जैसे मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करनी है आपको, तो खोदना है, फिर उसको काटना है और फिर उसको सुखाना है। उसका जो आपने कितनी मात्रा में लगाई है, बेचने के लिए लगाई है या खाने की लगाई है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ी लगाई है तो हो सकता है कोई कोई आसपास का ही थोड़ा थोड़ा करके ले जाए तो वो आप व्यवस्था कर सकते हैं। मक्का है, मक्का का भुट्टा होता है, भुट्टा काट के आपको अलग करना है, उसकी एक अलग तरह से तैयारी, उसके जो फसल अवशेष है वो चारे के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते होते हैं और उसको उनको इकट्ठा भी किया जाता है, ठंड में चारे के रूप में काम आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन जो खेती करते हैं जो समझते हैं इसका इसका कैसे प्रबंधन करना है। लेकिन यही है कि मुख्य चीज जो है कि उससे जो आपको लाभ या आमदनी होनी चाहिए थी वो पूरी हो, उसका पूरा से
1: खरीफ फसलों के बारे में आपने बहुत सी बातें हमें बताई, ये जानना चाहूंगी कि किस तरीके से खरीफ क्रॉप्स और जो हमारे खरीफ फसल है और रबी फसल जो है उनमें किस तरह के मुख्य आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि फिर इनकी तैयारी में भी आपको।
0: जी, खरीफ फसल है वो आमतौर पर जून से लेकर, या जुलाई का महीना ले लें उससे लेकर सितंबर या अक्टूबर के आखिर तक तैयार। रबी की जो फसलें हैं उनकी जो तैयारी है वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से लेकर और फिर जो नवंबर तक उसकी बिजाई बिजाई के सारे काम हो जाते हैं। तो खरीफ हम ये कह दें कि जब जो समय होता है उस समय पर हम खरीफ कहते हैं, और जब धीरे धीरे ठंड की ओर हम जा रहे होते हैं तो उसको हम रबी। शुरुआत में ठंड शुरू होती है, बीच में काफी होती है, फिर आखिर पकाव की।
1: सभी फसलों की शुरुआत करते आरंभ होता है तो उसका महत्व क्या, क्या इम्पोर्टेंस है उसका?
0: हाँ, रबी फसलों जब आरंभ हम कर रहे हैं क्या महत्व है उसका या उसका क्या अर्थ है, रबी फसलों की तैयारी क्यों करें?
1: जी,
0: तैयारी नहीं होगी तो कुछ काम नहीं होगा, काम नहीं होगा तो उसका व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, सारी चीजें समायोजित नहीं होंगी तो प्रॉपरली आपका आउटपुट नहीं दे पाएगी।
1: तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जब हम खरीफ फसल लगा रहे हैं तो उसमें जिस तरीके की मिट्टी का हम उपयोग कर रहे हैं उसमें, और उसी खेत में जब हम रबी की फसलें लगा रहे हैं तो उस मिट्टी में कुछ फर्क हमको देखने को मिलता है।
0: हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जो खरीफ फसल है जो खरीफ फसल थी उसमें से पोषण ले लिया है, रबी की फसल अगर आप उसमें लगा रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब हमें क्या पोषण देना चाहिए।
1: जी, खरीफ फसलों के आरंभ की जब हम बातें करते हैं तो हम और किन किन तैयारियां या किन तरह के कार्यों पर हम?
0: हाँ, रबी की तैयारियों के बारे में अगर हम कहें तो सबसे पहली चीज आ जाती है बीज।
1: जी,
0: बीज में दो साधन है हमारे पास, एक तो हमारा अपना बीज जो हम ये कहें कि हम अपना बीज से ही फसल उगाएंगे, तो अगर वो बीज है तो बीज आपने संभाल के रखा होगा ऐसा लगता है, उसे आप लें और उसे धूप में सुखाए अगर नमी वगैरह है, और उसका बीज उपचार जरूर करें तब लगाए, उससे बहुत सारे जो होने वाले रोग है उनको आप रोक सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, अगर बीज दिए या उनके अलावा कोई नया आप बीज जो कि अधिक उपज दे सकता है या ज्यादा अच्छा आया है तो उनके बारे में बाजार से जानकारी बता आप प्राप्त करें, और ऐसा नहीं है किसी एक ने कहा कि आप ये डाल लो ये बढ़िया नहीं, एक दो जगह से और चेक करें। आजकल तो प्रचार प्रसार है, मोबाइल फोन पे भी सुविधाएं होती हैं, बहुत सी कंपनियां भी अपना प्रचार करती हैं, सब अपनी अपनी बात कहते हैं, तो आप उनकी बात भी सुनिए, और अगर वह बीज एकदम नया आया है तो ज्यादा प्रयोग न करें, और अगर पहले से वो चल रहा है और उसके अच्छे परिणाम मिले तो कोई ना कोई आसपास में आपके उस बीज का प्रयोग किया होगा पिछले साल में, उसके अनुभव से आप जो जान सकते हो कि वो कैसा रहा उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, दुकान पर पूछ सकते हैं, आपको रेट भी देखने पड़ेंगे, तो सारी चीजों का तालमेल करके आप बीज को खरीदने की व्यवस्था आप करें, चाहे वो गेहूं का बीज हो चाहे वो सरसों का बीज हो या जौ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी जो रबी की फसल आप देने जा सकते हैं, चना है, चना भी एक अच्छी फसल है रबी की, उसके बारे में तो बीज सही लें, रोग रहित बीज लें, वो करें। दूसरा, जो उर्वरकों की मांग है उसमें पूरी फसल के लिए उर्वरकों की मांग है उसके लिए प्रयास न करें, जो शुरुआत में हमें चाहिए वो उर्वरकों का प्रबंध के लिए आप जो प्रयास करें, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, पीएमकेएस के सब जगह उर्वरक मिलते हैं, तो उसमें आप देख लें कि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसमें क्या पोषण की हमें आवश्यकता है, उस पोषण के हिसाब से आप उर्वरक चुने। आप ऐसा ना सोचेंगे मैं पहले ये डालता था तो ये मैंने चुन लिया, ऐसा नहीं है।
1: तो सही उर्वरक के लिए हम किसी सलाहकार से मिल सकते?
0: सलाहकार से भी ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो कि आपको गेहूं में आपको एक एकड़ में 20 किलो फास्फोरस डालना है, है नहीं, तो करीबन जो आपको जो मतलब पोटास इस्तेमाल इतना ही करना है 20 किलो, और नाइट्रोजन आपको 20 किलो डालनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक तो क्या है कि आप जैसे सिंगल सुपर फास्फेट ले सकते हैं, यूरिया ले सकते हैं और पोटास मिला सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है डीएपी ले सकते हैं और उसमें पोटास मिला सकते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि एक ही खाद में तीनों पोषक तत्व मिल जाएंगे।
1: अच्छा।
0: जैसे कि उसमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगी, फॉस्फोरस भी मिल जाएगी और पोटास भी मिल जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तीनों मिल रहे हैं वो ज्यादा अच्छा चीज है, क्योंकि उसके हर दाने में जो मतलब पोषक तत्व की समान मात्रा है, अलग अलग अगर खाद से आप उर्वरक से जो अगर जो उसको देते हैं तो कोई उर्वरक कहीं पड़ा कोई कहीं पड़ा तो एक जगह उसको पूरा नहीं मिलता है पौधे को, लेकिन अगर ये जो है एनपीके है इनमें पूरा एक जगह मिल जाता है तो ये अच्छा पौधा है। आप इस तरह से चुनाव कर सकते हैं। फिर जो फसल लगाने जा रहे हैं वहाँ सिंचाई की क्या व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि रबी फसलों में बारिश कम होती है, सिंचाई पर आधारित होना है। अगर पानी कम है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें, पानी अगर पर्याप्त है तो उस हिसाब से फसल का चुनाव करें। तो ये कुछ रबी की तैयारियां हैं ये आपको करनी है, और अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आप अच्छे से कर पाएंगे, और आपको कोई ये नहीं रहेगा कि यार ये मेरे से ठीक नहीं हुआ, मैं ऐसा कर सकता था, तो ये सब चीजें नहीं होंगी। दूसरा एक चीज और देखिए कि मार्केट रेट देखिए कि पिछले साल इन ये जो फसलें मैं लेने जा रहा हूँ इनका रेट क्या था, उससे आपको ये फायदा मिलेगा कि कौन सी फसल कितनी मात्रा में लगानी है। एक जैसी जब आप एक ही फसल लगा दिया उसके रेट गिर गए या उसमें सारी में कोई परेशानी आ गई तो सारा खत्म, तो आप थोड़ा थोड़ा लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाते तो किसी में कम किसी में ज्यादा ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपका एक जो एवरेज आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों का चुनाव करें। और दूसरा एक चीज और ध्यान रखें कि फसल चक्र जरूर अपना है, खेतों में अदल बदल के आप जो प्रयास करें उससे खेत की जो ताकत है वो पुष्ट होती है और फसलों में रोग बीमारियां कम आती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जो है अपनी ओर से कुछ बात रख रहा हूँ कि भाई रबी की जो फसल आप लगाना जा रहे हैं उसमें ये जरूर आप ध्यान रखें, और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक सार्थक उपज आपको मिलेगी, सार्थक खेती आपके यहाँ हो सकेगी। तो ये कुछ बातें थी।
1: खरीफ फसलों और रबी फसलों के समापन और आरंभ के से जुड़े आपने बहुत सी जानकारी दी सर। इसी के साथ में कार्यक्रम के समापन से पहले कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कई बार हम जितनी जानकारी विशेषज्ञों से लेते हैं या फिर सलाहकारों से लेते हैं उसे इम्प्लीमेंटेशन तक का जो प्रोसीजर होता है उसके बीच में बहुत सी रुकावट आ जाती है, जिस कारण से हम जो सलाह हम लेते हैं हमें जितनी जानकारी होती है उसे हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते और उसका हमें सही लाभ नहीं मिल पाता। तो अगर हम ऐसी तैयारी नहीं करते तो खेतों में और हमारी फसलों में किस तरीके का दुष्प्रभाव देखने को मिलता है?
0: हाँ, अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपके लिए ये है कि जैसे अगर आप बीज देने जा रहे हैं और कोई बीज चाहिए था वो आपको नहीं मिला
1: जी,
0: है ना, या कोई दूसरा बीज लेके आने पड़ा तो जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। खरीफ फसल का जो समापन है उसमें आप चाह रहे थे कि मैं बेच के आऊँ मंडी में, लेकिन रेट अच्छे नहीं चले और आपने अगर स्टोरेज की कोई व्यवस्था नहीं करी तो ना आप जो मंडी ले पाए ना सही ढंग से उसका भंडारण कर पाए तो नुकसान हो सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनको आप अगर करते रहेंगे और इनमें थोड़े थोड़े प्रयोग करते रहेंगे तो आपको जो नुकसान होने की संभावना है या आपको लगे कि भाई मेरे को ये ठीक नहीं हुआ वो थोड़ी कम हो जाएंगे, और धीरे धीरे अगर आप इनको अपनाते रहेंगे तो आपके पास एक अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे अगर सपोज भंडारण है, भंडारण का अगर आपने यहाँ पे कुछ व्यवस्था इस साल की है तो वो हमेशा के लिए होगी, वो ऐसा तो है नहीं इस साल खत्म हो जाएगा। सपोज कोई ज्यादा वैसा नहीं है, आपका आंगन है वहाँ उसको ऊंचा कर सकते हैं, टीन शेड लगा के जिससे कि बारिश बारिश उसमें ना आए वहाँ स्टोर कर सकते हैं, उसकी पुताई कर सकते हैं अच्छे से जगह की, जिससे कि चूल्हे से पुताई करते हैं ना तो उससे क्या है कि बहुत सारे कीड़े वो आपस में अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा करके हम अपने संसाधनों को जो ठीक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।
1: इसी के साथ हम आज की कड़ी को यहीं समाप्त करना चाहेंगे सर। आपके साथ जुड़कर आपसे खेती किसानी से जुड़े हुए इतनी बातें करना बहुत ही ज्ञानवर्धक था, और मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो किसान भाई हैं वो भी इससे बहुत से फायदे उठा पाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, और किसान भाई इसका लाभ ले ऐसी हम आशा करते हैं, और ये जो वार्ताएं हैं हम इसीलिए करते हैं कि कोई न कोई सार्थक परिणाम इसके हमारी खेती बाड़ी में आए।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती किसानी, आपकी बात हो रही थी दिव्या और चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर ए के सिंह सर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी।
1: दिव्या को इजाजत।

0: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजरीना। साथियों, पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी की इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है, सरकार मुफ्त दवाइयां देती है और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सच कहे तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने से नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने से होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू कर लेते हैं लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलो अप जांच नहीं करवाते, कई बार काम पर चले जाते हैं या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में ना रोकने की, दवाओं को संभावित रिएक्शन की, अगर दवा से परेशानी हो क्या करना चाहिए, निक्षय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितनी जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी। स्वागत है टीकन भाभी आपका।
4: धन्यवाद आरजरीना, और सभी श्रोताओं को भी मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। आरजरीना जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कई लोगों के फोन आए, अधिकांश लोगों ने तो एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है लेकिन इतने महीनों तक दवा लगातार लेना आसान नहीं होता, और सच कहूँ तो यही वह जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बताओ और अच्छी तरह समझाइए।
4: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूंगी जो कुछ वर्ष पहले हुई थी। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक छोटा सा बच्चा था, रवि। रवि को लगातार बुखार रहता था, वजन कम हो रहा था और खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई और पता चला कि उसे टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है, इलाज शुरू हो गया है। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी और घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन लगभग 1.5 महीने बाद रवि को एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकत्ते निकलने लगे, उसे मतली महसूस होने लगी, कभी कभी उल्टी भी होने लगी। तब पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा ही नुकसान कर रही है। लेकिन सहयोग से उसी समय उसके पिता ने हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का एक पुराना एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा बंद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने वही किया, अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए, डॉक्टर ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यकता बदलाव किए और कुछ अतिरिक्त उपचार दिए। कुछ ही दिनों में स्थिति नियंत्रण हो गई। आज रवि पूरी तरह स्वस्थ है। सोचिए अगर उसके माता पिता डरकर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर हो सकती थी। यानी समस्या दवा से नहीं बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होती है।
5: वाह, यह कहानी सचमुच बहुत सीख देती है। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करें। लेकिन भाभी सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटली ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है।
4: देखिए अर्जरीना, टीवी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्ते में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम हो जाता है और शरीर बेहतर महसूस करने लगता है। यही पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वैसे सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए हैं, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षणों का कम होना और बीमारी का पूरी तरह खत्म होना दो अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीवी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है कि डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेना जरूरी है। याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण नहीं।
5: बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन व्यवहार में लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं क्यों?
4: कारण कई होते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं। कुछ लोग रोज दवा लेने से उब जाते हैं। कुछ लोगों को काम पर जाना होता है और वे फॉलोअप नहीं कर पाते। कुछ लोग दूर शहर या राज्य में काम करने चले जाते हैं। कुछ लोग दवा के हल्के दुष्प्रभावों से डर जाते हैं और कुछ लोग समाज की डर या शर्म की वजह से इलाज छिपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार ने इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं बनाई हैं ताकि मरीज का इलाज बीच में ना टूटे।
5: यही तो मैं पूछना चाहती थी, अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाए तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये बात खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में जाते हैं। सरकार ने ट्रांसफर अकाउंट की व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीवी टीम को जानकारी देते हैं तो उसका रिकॉर्ड निश्चय प्रणाली में अपडेट किया जा सकता है और नए स्थान पर भी इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़िए और इलाज जाके।
5: आपने निक्षय नाम का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे।
4: निक्षय वास्तव में टीवी मरीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलोअप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए स्वास्थ्य कर्मी ये देख सकते हैं कि मरीज इलाज पर बना हुआ है या नहीं। अगर किसी मरीज की फॉलोअप जांच बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं और चला गया है तो उसका इलाज एक नए स्थान से जोड़ा जा सकता है और इसी व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की जा सकती है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
5: अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट या रिएक्शन, क्योंकि यही वह विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
4: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आर्जरीना, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीवी की दवाई कई महीनों तक चलेगी तो उसके मन में एक चिंता भी रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी हुई तो। इसलिए सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि अधिकांश टीवी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक करवा लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। उदाहरण के लिए किसी को शुरुआत में मितली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों की भूख थोड़ी कम हो जाती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोर, थकान या चक्कर आने की बात भी बताते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे आँखों या त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं कि इलाज असफल हो रहा है, और न ही इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है, कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार या अधूरी जानकारी आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि सही कदम ये है कि तुरंत अपने स्वास्थ्य कर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी दें। याद रखें, अधिकांश दुष्प्रभावों का प्रबंध किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवाएं बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो सकती है और इलाज और भी कठिन हो सकता है। इसीलिए हमारा संदेश बहुत सरल है, दुष्प्रभाव छुपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल भी मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफलता इलाज की कुंजी है।
6: यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना।
4: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती, कुछ दुष्प्रभाव अस्थायी होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन ये निर्णय केवल परीक्षित स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को लेना चाहिए, मरीज को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
6: वाह, फॉलो अप जांचों की भी बात होती है। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं।
4: यही एक और बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है, इलाज में नियमित निगरानी भी शामिल है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी जब फॉलो अप जांच के लिए बुलवाएं तो अवश्य जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगा जाए, अगर कोई जांच लिखी जाए तो करवाएं। इन जांचों से पता चलता है कि दवा सही काम कर रही है या नहीं, कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है, और यदि कोई समस्या है तो उसे समय रहते पकड़ा जा सकता है।
6: भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का भी जिक्र किया था, इसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है?
4: रीना, MDR TV यानी दवा प्रतिरोधी टीबी में तो यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामलों में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो सकता है, दवाएं अधिक हो सकती है, निगरानी ज्यादा करनी पड़ सकती है और फॉलो अप भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव होना नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और नए उपचार पद्धतियों के कारण मरीजों के ठीक होने की संभावना पहले से कहीं अधिक है। बस शर्त एक ही है, इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
6: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है।
4: परिवार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है आज रीना। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई सदस्य दवा याद दिला सकता है, फॉलो अप में साथ जा सकता है, लक्षणों में नजर रख सकता है, मानसिक सहारा दे सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, मरीज को ये महसूस करा सकता है कि वह अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाले शब्द का होता है।
6: और पोषण, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है।
4: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है, इसलिए सरकार निक्षेप पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से पोषण सहायता भी उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन, पर्याप्त आराम और पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दालें, दूध, अंडे, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ शरीर की रिकवरी में मदद करते हैं।
3: तो अगर आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटा हो तो आप क्या कहेंगे?
4: श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगी। पहले, टीवी की दवा कभी अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होना इलाज पूरे होने का संकेत नहीं। तीसरा, दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी को बताएं। चौथा, फॉलो अप जांचें इलाज का जरूरी हिस्सा है। पांचवी बात, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज

0: जारी रखें। छठी बात, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं बात, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं बात, MDR TV भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रमों से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर। और मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी, अगर रवि के माता पिता उस दिन डर का दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीवी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
0: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
1: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
0: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
1: संतुलित आहार व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
0: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
1: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ कई।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका अपना पसंदीदा शो सोच बदलो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी आदत की जो जाने अनजाने में हम सब में कहीं ना कहीं होती ही है। किसी की पूरी कहानी जाने बिना उसके बारे में राय बना लेना। हम किसी को देखकर कह देते हैं कि इंसान कितना घमंडी है, ये बहुत लापरवाह है, इसे किसी की परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि शायद उस इंसान की कहानी कुछ और ही हो? तो आज हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी और मेरे साथ में यहाँ पर रीना जी हैं। हम दोनों लेकर आए हैं आपके लिए ये बेहतरीन कार्यक्रम, और आगे भी बात करते हैं रीना से भी। हाय रीना, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो?
2: मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और आज का मौसम भाई, ये क्या था, कभी धूप कभी बारिश?
3: ये तो मुझे भी समझ नहीं आया एक मिनट के लिए कि धूप के साथ साथ बारिश, मतलब एक अलग ही, मतलब मौसम भी कंफ्यूज है भैया कि बारिश खुद ही कंफ्यूज है।
2: हाँ, तो हम कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर। आपको कैसा लगा ये टॉपिक?
3: नहीं, अच्छी बात है, हमें हर अलग अलग टॉपिक लेकर आना चाहिए अपने श्रोताओं के लिए, ताकि उनको भी अच्छा लगे, अपनी जिंदगी में भी बदलाव करें, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है अपने लाइफ में। चाहे आप छोटा काम करें, चाहे बड़ा काम करें, कोई भी काम करें, हमें अपने आप को बदलना बहुत जरूरी है। मुस्कान के पीछे की एक कहानी है भैया, बहुत ही शानदार, जो हम आपको बताते हैं। और ये मतलब सही है कि मुस्कान के पीछे की आखिर का रीजन क्या होता है। कभी कभी जो इंसान सबसे ज्यादा मुस्कुराता है, जरूरी नहीं कि उसके जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो। हो सकता है वो अपनी परेशानियों के बावजूद मुस्कुरा रहा हो। इसीलिए किसी की स्माइल देकर उसकी जिंदगी का अंदाजा मत लगाइए। हर इंसान अपनी एक अलग कहानी लेकर चलता है, और क्या पता उसके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हो। तो जो इंसान मुस्कुराता है ना, तो ये मत सोचिए कि वो भैया बल्ले बल्ले है, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। क्या पता वो किसी को दिखाना नहीं चाहता हो, और दिखाना इसलिए नहीं चाहता हो, देखिए दुनिया के आगे दिखाकर तमाशा करवाना कोई नहीं चाहता है।
2: और आज के टाइम में ना रीना, बहुत कम लोग हैं जो इंसान एक दूसरे की तकलीफ को समझ पाए। मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, सपोर्ट करने की जगह उसकी मजाक बनाते हैं। तो ये चीजें, इसीलिए शायद इंसान अपने दुख में भी फेक स्माइल रखता है। अभी हम बात करते हैं चुप रहने वाला इंसान। और बहुत लोग होते हैं जो शांत रहते हैं, कुछ लोग कम बोलते हैं। हम उन्हें सोचते हैं कितना एटीट्यूड वाला इंसान है ये, इतना शांत, बातें भी नहीं कर रहा है। लेकिन शायद वो नेचुरल क्वालिटी हो, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहा हो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। कम बोलना हमेशा घमंडी नहीं होता है, कभी कभी खामोशी भी एक कहानी कहती है एवरीवन। कभी किसी की लाइफ में होता है ना कि इंसान बहुत सारी सिचुएशन से गुजर रहा होता है, और हम सोचते हैं कि पता नहीं ये क्यों नहीं बात कर रहे, क्यों नहीं बात कर रहा है। शायद हो सकता है उसके पीछे का भी कोई रीजन हो, कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी रीना होता है ना कि हम बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, बहुत कुछ लाइफ में चलता है, तो हमारा मन करता है कि हम कुछ ना बोलें, बस शांत रहें।
3: हाँ ये तो है
2: ना। तो ऐसी सिचुएशन में ना किसी को जज मत कीजिए आप कि बहुत एटीट्यूड है, आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, शायद ये घमंडी है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हर इंसान शांत हो तो वो एटीट्यूड में हो, वो घमंडी हो, नहीं। उसके पीछे का रीजन भी जानना जरूरी होता है। मतलब बिना कोई रीजन जाने आप किसी को जज मत कीजिए,
3: करना भी नहीं चाहिए,
2: करना भी नहीं चाहिए। एग्जैक्टली।
3: और साथ ही साथ कपड़ों की राय, कपड़ों से राय, दोस्तों किसी के कपड़े, मोबाइल, गाड़ी या लाइफस्टाइल देखकर उसकी पूरी पर्सनालिटी तय कर लेना कितना सही है या नहीं है। किसी को चीजें उसकी पूरी पहचान नहीं होती। इंसान की असली पहचान उसके व्यवहार और उसके दिल से होती है। चाहे आपके पास लग्जरी गाड़ी क्यों ना हो और आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आप सच बताओ किसी काम के नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है। इसीलिए इंसान तो वो होता है जिसके अंदर इंसानियत हो, दो दूसरे के बारे में थोड़ा सा सोचता हो और दूसरों को परेशानी दुख देकर खुद का दुख समझता हो, तो रियल इंसान वो कहलाता है।
2: रीना ये तो आपने सही कहा कि देखो किसी को ना अच्छे, अगर किसी ने अच्छा सूट वूट पहना है, अच्छा ड्रेसिंग सेंस है उसका या अच्छा लाइफ स्टाइल है, तो उसको देखकर ना हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए कि ये इंसान बहुत अच्छा है, अरे यार क्या बात है, वो कितनी ब्यूटीफुल लड़की जा रही है देखना, शायद वो रिच फैमिली से होगी, या फिर बहुत सारे मन में थॉट आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर वो उसने अच्छा ड्रेस पहना है, ब्यूटीफुल लग रहा है, तो वो इंसान नेचर का भी अच्छा हो। क्योंकि बहुत इंसान ऐसे भी होते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन उनका व्यवहार उतना अच्छा नहीं होता है,
3: घमंडी टाइप का होता है।
2: लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो बहुत सादगी में रहते हैं लेकिन वो सबके दिलों को जीत लेते हैं, है ना। अभी आप मुझे बता रहे थे कि एक आपको मैम मिली थी, वो बहुत सिंपल सिटी में थी और उनका नेचर, उन्होंने हेल्प की थी, याद है आपको, जब हम मंदिर से बाहर आ रहे थे तो एक महिला बैठी थी वहां पर, बुजुर्ग महिला, तो उन्होंने उनको रात में, मतलब बारिश हो रही थी, तो उन्होंने तुरंत उनको छाता दिया, उनकी हेल्प की और उनको खाना भी दिया। तो सच्ची इंसानियत वही होती है रीना, रियलिटी वही है जो इंसान किसी के दुख में काम आए, किसी की पानी को समझे।
3: ये तो है।
2: मान लीजिए ऑफिस में कोई कलीग आपसे ठीक से बात नहीं कर पाया और आपने तुरंत सोच लिया कि बहुत एटीट्यूड है, लेकिन क्या पता उस समय उसके घर में कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए एक मोमेंट के बिहेवियर को पूरी पर्सनैलिटी मत समझिए। अगर कोई इंसान आपको लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर वो आपने उसको कुछ काम वो कंप्लीट ना कर पाए, तो आप ये सोचें कभी कि यार ये इंसान कैसा है, मैंने इसको एक काम दिया उसने काम नहीं किया। हो सकता है कि उसकी कुछ चीजें पहले से स्ट्रेस में हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान को ना, एक इंसान को समझना बहुत जरूरी है। हम बिना सोचे समझे किसी पर भी कुछ भी रिएक्ट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अगर सामने वाला इंसान परेशान है और हम उसको चार बातें सुनाते हैं तो वहाँ पे इंसान को तकलीफ होती है। तो पहले इंसान को समझो, सामने वाला कैसा है, क्या है, उसके बाद ही रिएक्ट करो। बिना किसी को कुछ बोले जाने आप किसी को जज ना करें, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। बाकी हम बात करते हैं अभी स्कूल और कॉलेज की लाइफ की।
3: देखो स्कूल और कॉलेज की बात ये है कि हम जब स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं तो हम एकदम ये उम्मीद लगाने लग जाते कि भैया ये तो मेरी अच्छी दोस्त बननी चाहिए, या फिर कोई तुमसे दूसरा कोई उम्मीद लगाता है कि ये मेरी अच्छी दोस्त बन जानी चाहिए। और जब हम अच्छे दोस्त नहीं बना पाते हैं या फिर नहीं बन पाते हैं तो जज करने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि जब तक आपको वो नहीं समझेगा, आपको नहीं जानेगा अच्छे से, तो दोस्ती कैसे कर सकता है। क्या पता आपके साथ वो कम्फर्ट जोन में हो ही ना। जब तक आपके साथ वो कम्फर्ट जोन में नहीं आएगा तब तक आपको वो दोस्त नहीं बन पाएगा। इसीलिए हमें इस चीजों का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप नए दोस्त बनाते हैं या फिर कुछ भी हो, पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तभी धीरे धीरे दोस्ती होती है और फिर वो दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है ना कि कभी खत्म नहीं होती। लेकिन वही आप बिना सोचे समझे किसी को फोर्स करने लग जाओ, तू मेरा दोस्त है, तू मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी, ये वो, तो ये वाली दोस्ती ना काफी टाइम तक नहीं चलती है। वो लगता है कि यार मैं इसका दोस्त बनना चाहता नहीं हूँ, ये बिना मतलब में मुझे अपना दोस्त बनाना चाहता है, वही फॉर्मेलिटी वाला फिर दोस्ती हो जाती है। तो इसीलिए दोस्ती वहां करे जहां आपको कंफर्ट जोन मिले, वो आपको समझे और आप उसका साथ दे सके। अदरवाइज दोस्ती हर किसी से की भी नहीं जाती है और हर कोई आपका दोस्त हो भी नहीं सकता। तो देखिए श्रोताओं, ढेर सारी बातें करते रहेंगे आप सभी के साथ, लेकिन यहाँ पर लेते एक म्यूजिकल ब्रेक और गाना एंजॉय करने वाले हैं।

हेलो एवरीवन, आपने सुना ये अमेजिंग सा ट्रैक कॉलेज की नटखट लड़कियों। वैसे हम भी नटखट हैं पर ज्यादा नहीं, थोड़े से हैं। और अब बात करते हैं हम सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया ने तो राय बनाना और भी आसान कर दिया है। किसी की एक फोटो देखी और हमने उसकी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी इमेजिन कर ली। लेकिन दोस्तों, एक पिक्चर पूरी कहानी नहीं होती।

0: सोशल मीडिया पर जो दिखता है ना वो जिंदगी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, किसी की आप ब्यूटीफुल प्रोफाइल देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट मत होइए, है ना। आप थोड़ा सा सोशल मीडिया को यूज कीजिए लेकिन संभल कर, क्योंकि जो इंसान दिखता है असल में वैसा होता नहीं है। तो सेफ रहिए, अपनी सोच बदलिए। और यहाँ पर बस मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया यूज करना अच्छी बात है लेकिन सावधानी के साथ।
1: और हम कभी कभी ना ये भी सोचते हैं कि कोई भी काम करते हैं ना उसका रिजल्ट हमें बहुत जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। आप कभी हारेंगे, कभी जीतेंगे, कभी गिरेंगे, कभी उठेंगे, लेकिन असली सिकंदर वही होता है जो गिर कर फिर से उठना जानता हो और खुद को संभालना जानता हो। क्योंकि देखिए, मेहनत कभी आपकी खराब नहीं होती है, चाहे उसको भले ही परिणाम मिलने में 1-2 साल लगे, लेकिन मिलती ऐसी है कि आप फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। इसीलिए मेहनत हमेशा करना ना छोड़े, आगे बढ़ते रहे। कुछ नहीं पता कल आपके साथ क्या हो जाए, क्या आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा, वो चीज आपको मिल सकती है। इसीलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो हमने काम किया और कल ही हमें परिणाम मिल जाए। मानकर सोच लीजिए आप खुद ही कि आपको फीवर है और आपने आप मेडिसिन लिया और कल आपको फीवर ठीक हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। कोर्स पूरा करना पड़ता है तभी आप अच्छे से ठीक हो पाते हो। इसीलिए परिणाम चाहिए किसी भी चीज में तो मेहनत बिल्कुल ना छोड़िए, आगे बढ़ते रहिए और अपने हौसलों को बुलंद रखिए।
0: पता है रीना, एक आदत है जो रिश्तों में ना नुकसान पहुंचाती है, और वो आदत है कभी कभी ऐसा होता है कि किसी रिलेशन वाले का कॉल आया और कॉल नहीं उठाया, या आपके फैमिली मेंबर में भी होता है, ये रिलेशनशिप में भी होता है, लाइफ पार्टनर में भी चीजें होती हैं कि अगर हमने कॉल किया और कॉल का रिप्लाई नहीं आया तो हमें लोग सोचने लगते हैं कि शायद उसको हमारी परवाह ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने कॉल नहीं रिसीव किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना यहाँ पर ज्यादा ओवर थिंक नहीं करनी चाहिए। शायद हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उन्होंने फोन ना उठाया हो या बिजी भी हो, तो यहाँ पर आपको ना नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चले, आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म चले और अच्छा चले, तो उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। हो सकता है वो शायद काम में बिजी हो, राइट ना। तो उस पर्सन को आपको क्या करना है, जज नहीं करना है यहाँ पर, आपको उनको समझना है। और जब समझते हैं रिश्तों में, रिश्ते दोनों तरफ से बनते हैं ना, एक तरफ से नहीं, आप दोनों तरफ से समझिए एक दूसरे को। और अगर मैम ने कॉल नहीं उठाया या सर ने कॉल नहीं उठाया तो ज्यादा ओवर थिंक ना करें, अब बाद में भी बात कर सकते हैं।
1: इसी के साथ साथ देखिए, आज हम सोच बदलो शो में बहुत से टॉपिक पर बात कर रहे हैं, और टॉपिक पर बात करना भी बहुत जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ हम बात करेंगे ट्रैफिक वाला। सुबह के टाइम ऑफिस जाते हैं आप या शाम के टाइम ऑफिस से घर आते, तो एक जल्दबाजी रहती है कि भैया कुछ भी हो जाए हम अपने घर जल्दी पहुंच जाए, और इस चक्कर में हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं जिसको हमें भी पता नहीं रहता है, और बाद में पता चलता है जब आपके अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक कट जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि ओ ये तो मेरा चालान कटा है क्योंकि मैंने हेलमेट और सीट बेल्ट तो पहनी ही नहीं थी। और इतनी जल्दबाजी होती है कि हम कुछ चीजें ऑफिस में भी भूल जाते हैं, और साथ ही साथ जल्दबाजी के चक्कर में देखिए लंबी लाइन कतार में भीड़ लगी हुई होती है, और हम हॉर्न पर हॉर्न बजाते रहते हैं। अब खुद आप सोच कर देखिए कि आप बाहर खुद खड़े होकर उसी हॉर्न की आवाज आप खुद सहन नहीं कर पाएंगे, तो दूसरा इंसान आपकी जो आप गाड़ी का हॉर्न है बार बार बजाए जा रहे, वो कैसा कोई सहन कर सकता है। इसीलिए जब भी आप ट्रैफिक में हो, या तो आप पहले निकलने से पहले सर्च कर ले कि इस ट्रैफिक से या इस रूट से मैं जा रहा हूँ उस पर आप हमें ट्रैफिक मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर आपको ट्रैफिक मिलती है तो आप वहां से कट ऑफ कर दे, यानी कि दूसरा रूट मतलब जारी रखे, ताकि आप अपने घर आसानी से पहुंच सके। अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है तो आप उसी रूट से जाइए, और हॉर्न कम बजाइए, और हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनिए, क्योंकि ट्रैफिक नियम फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है, और जिससे हम सेफ रह सकते, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़े हो। और गाड़ी चलाते समय, स्कूटी चलाते समय या साइकिल भी चलाते समय ना हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा भी है, आजकल के बच्चे भैया बड़े ही स्मार्ट है, वो कहते हैं कि हम हर काम कर सकते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, गाड़ी चलाते चलाते फोन चला लेते हैं, स्कूटी चलाते चलाते फोन चलाते हैं, साइकिल चलाते चलाते भी फोन अटेंड करते हैं, और एक हाथ से ही चलाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है। तो सोचिए, छोटी सी लापरवाही बड़ी लापरवाही में वो परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कुछ चीजें हमें खुद से भी सोचना होता है, और जो ट्रैफिक नियम है वो फॉलो करिए। देखिए, फोन से इतना ही प्यार है तो घर आके उसको प्यार करिए, ट्रैफिक में नहीं।
0: और रीना कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो इन चीजों का ख्याल रखिए। बाकी एक आपकी कहते हैं ना कि नजर हटी दुर्घटना घटी, तो तो ये छोटी सी आपकी प्रॉब्लम, छोटी सी इश्यू अगर आपका हो गया, आपने कॉल उठाने का मतलब अगर डिसाइड किया कि चलो कॉल उठा लेता हूँ, कॉल आ रहा है, अर्जेंट है, बट ऐसा करने से कभी कभी बड़े हादसे भी हो जाते हैं. तो अगर आपको लगता है कि बात करना जरूरी है तो साइड में गाड़ी को रोकिए, उसके बाद आप बात कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना. तो हम गाड़ी की बात भी कर रहे हैं, है ना, ट्रैफिक की बातें की हमने, अभी हम जो ऑन द वे हमें कार में सुन रहे थे ना, क्यों ना उनके मूड को फ्रेश किया जाए, कुछ ऐसा सुनवा देते हैं ताकि वो भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए.
1: हाँ ये तो है, गाना तो बनता ही है.
0: एक आप भी अपने, अगर आप कार में हमें सुन रहे हैं या फिर आप हमें ऑटो रिक्शा में सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने कार में थोड़ा सा म्यूजिक का वॉल्यूम हाई कीजिए कि ये गाना हम प्ले करने वाले हैं सिर्फ आप सभी के लिए. तो एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए.
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी.

0: तो दोस्तों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक, और एक खूबसूरत बात याद रखिएगा, हर इंसान की कहानी का एक हिस्सा, एक ऐसा चैप्टर होता है जिसे दुनिया नहीं जानती। इसलिए किसी के एक चैप्टर को देखकर उसकी पूरी किताब का फैसला मत कीजिए। आप सामने वाले इंसान की एक छोटी सी बात पर उसे जज ना कीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा आप देख रहे हैं वैसा ही हो। तो हर इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। एंड रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं दोस्तों, जब हम एक दूसरे को समझते हैं बिना किसी जजमेंट के। किसी को जज ना करें, रिश्तों को खूबसूरत बनाइए। और सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6। अपने व्यवहार पर भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये बदलाव सिर्फ दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी है। जब हम हर किसी को जज करना कम करते हैं तो हमारा अपना माइंड भी ज्यादा पीसफुल रहता है। हर चीज पर ऑप्शन देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस समझना ही काफी होता है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि आप भी हैप्पी रहिए, औरों को भी हैप्पी रखिए। जिंदगी बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एवरीवन। और एक चैलेंज आपके लिए भी है। आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ, उसकी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका नजरिया थोड़ा बदल जाए, और हमें जरूर बताइएगा 9837896896। तो दोस्तों, आज की पूरी बात को
1: तो दोस्तों हम जाते जाते आप सभी से एक ही बात कहना चाहेंगे। आज अगर मुझे एक लाइन में या फिर आपको एक लाइन में सोच बदलो के लिए कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। खुशी ने नंबर भी बता दिया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, किसी इंसान को उसकी एक पल से नहीं उसकी पूरी कहानी समझ कर देखिए। हर किसी की जिंदगी में कुछ एक पन्ने होते हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए थोड़ी किडनेस रखिए, इसलिए थोड़ी समझदारी रखिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए अपनी सोच में, तभी आप किसी की जिंदगी के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे और उसके बारे में समझ पाएंगे। लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी हो सकती है, हर खामोशी के पीछे एक वजह हो सकती है, इंसान के पीछे एक पूरा सफर है। अपनी सोच को थोड़ा और खूबसूरत बनाइए और जुड़े रहिए अपने पसंदीदा शो के साथ, यानी कि हमारे सामुदायिक रेडियो के साथ। एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आपको हम फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
4: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
3: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आज का महिला मंच बहुत खास है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपनी मेहनत से सिर्फ खेल की दुनिया में ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों बेटियों के दिलों में अपनी जगह, अपनी खास जगह बनाई है। एक ऐसी लड़की जिसने छोटी सी उम्र में बैडमिंटन का रैकेट थामा और पर उस रैकेट को अपनी पहचान बना लिया। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पीवी सिंधु जी की। लेकिन आज हम सिर्फ उनके मेडल नहीं गिनवाएंगे, हम जानेंगे उनकी शुरुआत, उनका स्ट्रगल, उनकी ट्रेनिंग, उनके परिवार का साथ, उनकी जीत और उनकी हार, और वो सफर जिसने उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ब्यूटीफुल कार्यक्रम, और मेरे साथ में यहाँ पर रीना जी भी हैं। हेलो रीना, कैसे हैं आप बताइए इस चिलचिलाती धूप में।
5: मत पूछो।
0: क्यों ना पूछे,
5: गर्मी बहुत है।
0: हाँ यार, गर्मी बहुत ज्यादा है, तभी ये पानी की बोतल अपने साथ लेकर घूम रही हो तुम। हाँ,
5: अरे पता है क्या, मैंने ये चीज भी नोटिस की है
1: कि जब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है ना तो सर में दर्द होता है,
0: वीकनेस फील होती है।
1: तो वही हालत हो रही है मेरी अभी फिलहाल तो।
0: अच्छा, और ये पानी में आपने क्या क्या डाला है? लेमन है, इसमें पुदीना भी शो कर रहा है।
1: पुदीना नहीं है।
0: और फिर क्या है ये?
1: ये मेरा सीक्रेट है कुछ।
0: क्या सीक्रेट है भैया? क्या क्या है ये? कौन सा राज छुपा के रखा है इस बॉटल में आपने?
1: अरे इसमें मैंने पुदीने के साथ धनिया की पत्ती डाली हुई है।
0: ओ, पुदीना, धनिया,
1: वेट कम होता है वो।
0: एंड लेमन इस लड़की ने वाटर में डाला हुआ है और ये ड्रिंक ये लेती है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि इसका फेस इतना ग्लो क्यों कर रहा है।
1: हाय,
0: अब समझ में आया मुझे रीजन।
1: पीवी सिंधु का जन्म यानी कि 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद में हुआ। उनके माता पिता भी खेल की दुनिया से जुड़े रहे। उनके पिता पीवी रमना जी और माँ पीवी विजया दोनों वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे, तो कह सकते हैं कि सिंधु के घर में खेल का माहौल पहले से ही मौजूद था। लेकिन दोस्तों, परिवार का खेल से जुड़ा होना एक अलग बात है और खुद अपने लिए कोई खेल चुनकर उसमें पहचान बनाना बिल्कुल अलग है। सिंधु जी ने वॉलीबॉल नहीं बल्कि बैडमिंटन को चुना और शायद यही से उनकी कहानी हमें पहली सीख देती है। परिवार आपको हौसला दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन अपनी मंजिल की तरफ कदम आपको खुद बढ़ाना पड़ता है।
0: एग्जैक्टली रीना, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और आज क्या बात है, मैंने सुबह आपको देखा था अपने घर की छत से, आप सुबह सुबह ग्राउंड में बैडमिंटन खेल रही थी।
1: मैं सुबह सुबह तुम्हें दिख कैसे गई बताओ जरा?
0: अरे मत पूछिए, मेरी नजरें ना सिर्फ तुम पर ही रहती हैं। और वो साथ में कौन लड़की थी जो तुम्हारे साथ खेल रही थी? बड़ा अच्छा खेल रहे थे यार तुम दोनों।
1: नहीं, बैडमिंटन मेरे को बहुत पसंद है।
0: पसंद तो है, लेकिन मैंने पूछा है कि साथ में वो लड़की कौन थी, तुमने मुझे नहीं बुलाया और दूसरी लड़की को बुलाया। हाँ बताओ कौन थी वो?
1: मैं इसको बोलती हूँ आने के लिए, लेकिन ये पता क्या बोलती है? हाँ मैं आ जाऊंगी, फिर कहती है नींद बहुत प्यारी है। फिर ये आई नहीं, मैंने कहा चलो किसी और को पकड़ लेते, गली मोहल्ले में लड़कियां थी, मैंने कहा चलो खेल लेते इन्हीं के साथ।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, सुबह सुबह खेलने से हेल्थ भी अच्छी होती है हमारी भी वन। अब जरा सोचिए दोस्तों, 8 साल की उम्र में बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं, मस्ती करते हैं, स्कूल जाते हैं और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहते हैं। लेकिन सिंधु जी ने लगभग 8 साल की उम्र में बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने शुरुआत महबूब अली के मार्गदर्शन में की। शुरुआत छोटी थी लेकिन इरादा बहुत बड़ा था। और दोस्तों, जिंदगी में भी यही बात बहुत मायने रखती है। आज आप कहाँ खड़े हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आप किस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा फैसला अचानक नहीं मिलता, उसकी शुरुआत अक्सर बहुत छोटी होती है। एक छोटी सी इच्छा, एक छोटा सा फैसला और फिर रोज की मेहनत। सिंधु जी की कहानी भी ऐसी ही एक छोटी शुरुआत से आगे बढ़ी।
1: दोस्तों, सिंधु की कहानी का वो हिस्सा जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। बैडमिंटन की ट्रेनिंग के लिए वह रोज लगभग 56 किलोमीटर का सफर तय करती थी। अब सोचिए इतना लंबा सफर, फिर भी ट्रेनिंग, फिर पढ़ाई और उसके बाद घर वापस आना, कितनी थकान होती होगी। लेकिन जब किसी इंसान को अपने सपने पर भरोसा होता है ना, तो रास्ते की मुश्किलें उसे रोकने के बजाय मजबूत बनाती हैं। आज हम छोटी सी परेशानी देखकर कई बार अपना प्लान बदल देते हैं, या यूं कहूं कि हॉपलेस हो जाते हैं और खुद मन में एक मनगढ़ंत बातें अपना लेते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दूसरा काम अपनाता हूं। लेकिन सिंधु जी ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर सपना दिल से जुड़ा है तो रास्ते की दूरी आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि मंजिल बड़ी हो तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। और काम कोई भी हो, बस आप डट कर काम करिए। कहते हैं अगर आपने धूप में चलना सीख लिया तो छांव आपका हमेशा इंतजार कर।
0: 55-56 किलोमीटर का रोज का सफर, जैसे रीना जी ने बताया दोस्तों, सिर्फ एक दूरी नहीं थी दोस्तों, ये सिंधु जी के डिसिप्लिन, उनकी लगन और उनकी मेहनत का हिस्सा था। आज हम कितनी बार कहते हैं समय नहीं मिल रहा, बहुत थक गई हूँ, कल से शुरू करूंगी, लेकिन सिंधु जी की कहानी हमें एक बात समझाती है, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते, उनके लिए अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ती है। और शायद यही होता है असली डिसिप्लिन। मन हो या ना हो, थकान हो या ना हो, लेकिन अपने लक्ष्य के लिए रोज एक कदम आगे बढ़ना। अगर आज आपकी जिंदगी में भी कोई बड़ा सपना है

0: खुद से पूछिए, क्योंकि मैं उसके लिए रोज थोड़ा सा भी समय निकाल रही हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी सपना देखते हैं ना, और उसे जब हम पूरा करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारे कोई बहाना नहीं चलता है। उस टाइम पे बस हमारे मन में लगन होती है कुछ कर दिखाने की। तो हम एवरी डे नया स्टेप लेते हैं, धीरे धीरे आगे मेहनत करते हैं, और मुझे लगता है कि असली सफलता तभी मिलती है जब इंसान स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहता है।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि कोई भी काम करो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, आपको कामयाबी जरूर मिलती है। और फिर सिंधु की बैडमिंटन जर्नी आगे बढ़ी और वह पुलेला गोपी चंद्र बैडमिंटन एकेडमी से जुड़ी। यहाँ उनकी ट्रेनिंग और ज्यादा प्रोफेशनल हुई। और फिर खेलना नहीं था, अब मुकाबले की तैयारी करनी थी। फिटनेस, प्रैक्टिस, टेक्निक और लगातार खुद को बेहतर बनाना। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता है। टैलेंट के साथ ट्रेनिंग, सही मार्गदर्शन और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। और सिंधु ने इसी मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया और छोटी उम्र से शुरू हुआ सफर अब धीरे धीरे बड़े मुकाबले की तरफ बढ़ रहा था।
0: अब हम भी बढ़ लेते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने,
0: क्योंकि देखिए मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा लाइफ में ना म्यूजिकल ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है, तभी जीवन में आनंद आता है। तो चलिए सुनते हैं एक शानदार सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: बहुत ही शानदार गाना अभी आपने सुना। एवरीवन, आप सभी का वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला मंच और आज हम बात कर रहे हैं पीवी सिंधु जी की, डिसिप्लिन की ताकत। दोस्तों, सिंधु जी की कहानी में अगर एक शब्द बार बार दिखाई देता है ना, तो वो है डिसिप्लिन। क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता, कभी मन करता है मेहनत करने का, कभी बिल्कुल नहीं करता, लेकिन डिसिप्लिन आपको तब भी काम करने के लिए तैयार करता है जब आपका मन ना कर रहा हो। यही बात सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, हम सबके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या अपना बिजनेस कर रहे हैं, या घर संभाल रही हैं, तो रोज की छोटी छोटी कोशिश ही आगे जाकर बड़ा परिणाम देती है। सिंधु जी की कहानी हमें बताती है एवरीवन, एक दिन की मेहनत आपको आगे बढ़ा सकती है, लेकिन लगातार मेहनत आपकी पहचान बन सकती है।
1: और साथ ही साथ इसकी शुरुआत भी होती है फैमिली का साथ।
0: एग्जैक्टली,
1: किसी भी लड़की के सपने में परिवार का साथ बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। सिंधु के माता पिता ने भी उनकी बैडमिंटन जर्नी में उनका साथ दिया। सोचिए, अब उनकी बेटी छोटी हो और वो कहे कि मुझे खेल में आगे बढ़ना है, तो उनके लिए सिर्फ रैकेट खरीदना ही काफी नहीं होता, उनके साथ समय देना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, उसकी हार में उसे संभालना पड़ता है और जीत में जमीन से जुड़े रहना सिखाना पड़ता है। अगर आपकी बेटी कोई सपना देखती है, तो क्या आप उसके सपने को सुनने और समझने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कभी कभी एक परिवार का भरोसा ही किसी लड़की की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: बिल्कुल रीना, देखिए, जब परिवार साथ होता है ना, तो लड़की को एक अलग ही हौसला मिल जाता है। और वो आजकल आपको, आप तो पता ही है, आपको भी पता है, और बेटियां हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। जमाना साथ दे या ना दे, लेकिन परिवार साथ होता है ना, तो लड़की हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकती है। और अब बात करते हैं बेटियों के सपनों की। दोस्तों, आज महिला मंच में एक बात दिल से कहना चाहूंगी, हर बेटी का सपना जरूरी नहीं कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सरकारी नौकरी ही हो। किसी का सपना खिलाड़ी बनना हो सकता है, किसी का सिंगर, किसी का आर्ट्स, और किसी का बिजनेस करना, और किसी का अपना छोटा सा काम शुरू करना। सफलता का रास्ता हर लड़की के लिए अलग हो सकता है, जरूरत सिर्फ इतनी है कि उसे अपने सपनों को समझने और उसके लिए मेहनत करने का मौका मिले। सिंधु जी ने भी वही किया, उन्होंने अपना रास्ता चुना, उस रास्ते पर मेहनत की और धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई। इसीलिए बेटियों को सिर्फ सपने देखने की नहीं, सपनों के लिए मेहनत करने की भी हिम्मत दीजिए।
1: कि मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, धीरे धीरे रंग दिखता है उसका। आप ये सोचेंगे कि आज मैं ये काम कर रही हूँ, कर रहा हूँ, तो मुझे परिणाम उसका कल ही मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पीछे आपकी मेहनत, आपकी लगन बताती है कि आप कितने डिसिप्लिन के साथ उस काम को फोकस होकर करते हैं। और फिर सिंधु जी की मेहनत का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। कम उम्र में ही उन्होंने अलग अलग जूनियर प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। यहाँ से उनकी पहचान सिर्फ एक उभरती हुई खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में बनने लगी जिसमें आगे जाकर देश के लिए कुछ बड़ा करने की क्षमता थी। लेकिन दोस्तों, शुरुआती सफर के बाद भी उनका सफर आसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आपका रास्ता ऊपर जाता है, वैसे वैसे मुकाबला भी कठिन हो जाता है। और यही जिंदगी का नियम है, पहली सफलता के बाद असली चुनौती आपका इंतजार कर रही होती है। इसीलिए सिंधु की कहानी सिर्फ जीत की नहीं, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाने की कहानी है। और फिर वो दौर आया 2016 रियो ओलंपिक। पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स बैडमिंटन में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता। सोचिए, एक भारतीय महिला खिलाड़ी दुनिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक पर खड़ी है और उसके साथ देश के लिए जीता हुआ मेडल है। ये सिर्फ सिंधु की जीत नहीं थी, ये उन तमाम लड़कियों के लिए भी एक खूबसूरत संदेश था जो खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, उस मेडल के पीछे सिर्फ एक शानदार मैच नहीं था, उसके पीछे थी सालों की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, त्याग और मेहनत। तभी तो आपको परिणाम भी आपके आगे होता है।
0: जब हम किसी खिलाड़ी को मेडल के साथ देखते हैं, तो हमें सिर्फ जीत दिखाई देती है है ना। लेकिन हमें वो सुबह दिखाई नहीं देती जब उसे जल्दी उठकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो थकान दिखाई नहीं देती, वो हार दिखाई नहीं देती, वो दिन दिखाई नहीं देता जब शायद मन भी टूटा होगा, लेकिन फिर भी खिलाड़ी अगली सुबह कोर्ट पर वापस आते हैं। यही फर्क होता है दोस्तों, सक्सेस सिर्फ जीतने का नाम नहीं बल्कि बार बार कोशिश करते रहने का नाम भी है। सिंधु जी के मेडल को अगर हम सिर्फ एक मेडल समझेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, उस मेडल के पीछे एक पूरी जिंदगी की मेहनत है, हार का सामना। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, हार। जी हाँ दोस्तों, कई बार खिलाड़ी हर मैच नहीं जीतता, हर टूर्नामेंट में मेडल नहीं मिलता, हर कोशिश का रिजल्ट हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता, लेकिन हार का मतलब ये नहीं कि कहानी खत्म हो गई। हार कई बार हमें बताती है कि हमें कहाँ और मेहनत करनी है। सिंधु जी की जर्नी भी जीत और हार दोनों से होकर गुजरी है और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी सबके दिलों को छूती है, क्योंकि असली जर्नी में सिर्फ जीत ही नहीं होती, गिरना भी होता है और फिर उठना भी होता है।
1: और फिर उनकी सफर शुरू होती है 2018। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंगल्स का सिल्वर मेडल जीता और टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रही। एशियन गेम्स में भी उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया, यानी रियो ओलंपिक के बाद भी उन्होंने अपनी मेहनत को रुकने नहीं दिया और यही बात बहुत खास है। कई बार पहली बड़ी सफलता मिलने के बाद इंसान सोचता है अब तो मैंने कर लिया, लेकिन असली चैलेंज होता है उस सफलता के बाद भी खुद को उसी मेहनत और फोकस के साथ आगे बढ़ जाना। सिंधु जी ने यही किया। अक्सर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी, आपको एक जीत के बाद अपनी मेहनत को वहीं नहीं रोक देना चाहिए, बल्कि आप चाहते हैं कि परिणाम और भी अच्छा रहे तो आपको उसके लिए मेहनत तो डेली ही करनी पड़ेगी। फिर वो आया साल 2019, वर्ल्ड चैंपियन। पीवी सिंधु ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। ये उनके करियर का एक बहुत बड़ा पड़ाव था, क्योंकि वह अब सिर्फ ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं थी बल्कि दुनिया की चैंपियन भी बन चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक बात ध्यान देने वाली है, रियो का सिल्वर उन्होंने एक दिन में ही नहीं लिया था और 2019 का गोल्ड भी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं था। हर जीत के पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है, इसीलिए अपने छोटे छोटे प्रयासों को भी कम मत समझिए, कोशिश करिए कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। एक महिला जब अपने करियर में आगे बढ़ती है तो कई बार उससे जुड़े सवाल भी बढ़ जाते हैं, करियर कब तक, परिवार कब, शादी कब, इतनी मेहनत क्यों, ये सब सवाल उठने लग जाते हैं। लेकिन क्या एक महिला के सपनों को भी अपनी कोई टाइमलाइन नहीं हो सकती? हर महिला के जिंदगी का रास्ता अलग है। किसी के लिए करियर सबसे जरूरी हो सकता है, किसी के लिए परिवार, किसी के लिए दोनों के बीच की संतुलन और किसी के लिए कोई बिल्कुल अलग सपना। महत्वपूर्ण ये है कि महिला को अपने जीवन के फैसलों में अपनी आवाज सुनाई दे। सिंधु की कहानी भी हमें यही याद दिलाती है कि महिला को अपने पहचान बनाने का पूरा हक है। और हक के साथ हम कहेंगे कि म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और मिलते हैं आप सभी को एक बहुत ही शानदार गाने के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारा FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: एवरीवन नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक की। अब आते हैं साल 2021 पर, जब टोक्यो ओलंपिक का आयोजन हुआ। पीवी सिंधु जी ने महिला सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में चीन की है टिंग जियाओ को हराया और इस जीत के साथ सिंधु दो अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। रियो में सिल्वर, टोक्यो में ब्रॉन्ज, दो ओलंपिक मेडल और भारत की खेल इतिहास में एक खास जगह। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, ये उस लगातार मेहनत की कहानी है जिसने उन्हें एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक तक मजबूत बनाए रखा। दोस्तों, एक ओलंपिक मेडल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन दो अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीतना, ये लगातार अच्छे प्रदर्शन, तैयारी और मानसिक मजबूती की कहानी भी है। रियो में सिल्वर जीतने के बाद सिंधु जी के ऊपर उम्मीदों का दबाव भी था। लोग उनसे फिर मेडल की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसके बाद के बीच टोक्यो में फिर पोडियम तक पहुंचकर दिखाया कि सफलता सिर्फ एक दिन की बात नहीं होती, कभी कभी असली चुनौती होती है। एक बार सफल होने के बाद खुद को फिर से साबित करना, और सिंधु जी ने ये कर दिखाया।
1: वो तभी कर दिखाया जब उनका मेहनत उनके साथ और वो मेहनत करती रही। अब हम बात करते हैं सक्सेस की आदत। दोस्तों, सिंधु जी की जर्नी को देखकर एक बात समझ आती है, सक्सेस कोई जादू नहीं है, सक्सेस कोई छोटी आदत का नतीजा नहीं होता। समय पर उठना, ट्रेनिंग करना, अपनी फिटनेस का ध्यान रखना, हार से सीखना और अपने लक्ष्य से जुड़े रहना। हम अक्सर बड़ी सफलता देखकर कहते हैं, वाह कितना टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के पीछे जो रोज का डिसिप्लिन है उसे भूल जाते हैं। इसीलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो सिर्फ मोटिवेशन मत खोजिए, अपनी अच्छी आदतों को मजबूत रखिए। क्योंकि सिंधु की कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए, हम सबका सपना ओलंपिक मेडल जीतना नहीं होता। किसी महिला का सपना हो सकता है अपनी पूरी पढ़ाई करना, किसी का सपना अपना छोटा बिजनेस शुरू करना, किसी का सपना नौकरी में आगे बढ़ना, किसी का सपना फिर से गाना सीखना, किसी का सपना अपने लिए थोड़ा समय निकालना। सपना छोटा या बड़ा नहीं होता, वो अपने लिए कितना मायने रखता है ये जरूरी है। और अगर कोई सपना अभी भी आपके दिल में है तो शायद उसे एक बार फिर से मौका देने का उसको वक्त दीजिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सपना है तो सिर्फ इसलिए उसे छोड़ मत दीजिए कि रास्ता मुश्किल है। मुश्किल रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता, कभी कभी वही रास्ता हमें मजबूत बनाता है। पीवी सिंधु ने भी छोटी उम्र में शुरुआत की, रोज सफर किया, ट्रेनिंग की, हार का सामना किया, फिर जीत हासिल की और धीरे धीरे इतिहास का हिस्सा बन गई। इसीलिए बेटियों से सिर्फ ये मत कहिए कि तुम क्या बनोगी, कभी उनसे ये भी पूछिए तुम क्या करना चाहती हो, उनको बहुत अच्छा लगेगा।
0: कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये कैंचियां तुम्हें नहीं काट सकती क्योंकि तुम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ती हो। आज की महिला मंच में हमने पीवी सिंधु जी की कहानी की जरिए एक पूरी जर्नी को महसूस किया। एक छोटी बच्ची से शुरुआत, बैडमिंटन से प्यार, 56 किलोमीटर का सफर, कड़ी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, हार और जीत, रियो का सिल्वर, 2019 का वर्ल्ड चैंपियन खिताब और टोक्यो का ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन सिंधु की सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ उनके मेडल नहीं है, उनकी कहानी उन तमाम लड़कियों के लिए एक संदेश है। सपना देखना मत छोड़िए, मेहनत करना मत छोड़िए और मुश्किलों की वजह से खुद पर भरोसा करना मत छोड़िए। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं महिला मंच एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आज का ये खास सफर समर्पित है उस महिला और हर उस छोटी बेटी को जिसके दिल में कोई सपना है। बस एक बात याद रखिए, मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, पहला कदम आज भी उठाया जा सकता है। कि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, पहला कदम आज भी उठाया जा सकता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं लेती हूँ आपसे जाने की अनुमति। अपना ख्याल रखिए और आप अपने सपनों की ओर भी बढ़ते रहिए। नमस्कार।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
4: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
3: UPI TSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं विशेष रेडियो कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
6: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: आज की हमारी यात्रा हमें लेकर आई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस जिले में जहाँ इतिहास भी है, संस्कृति भी है और बदलते समय के साथ विकास की एक नई तस्वीर भी है।
1: जी हाँ, आज बात हो रही है बिजनौर की, एक ऐसा जिला जिसकी पहचान उसके ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ गाँव, खेतों, मेहनतकश परिवारों और अपने जीवन सामाजिक सांस्कृतिक विरासत से भी है।
0: बिजनौर उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। लगभग 4049 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले में 2500 से अधिक गांव हैं। यहां की ग्रामीण आबादी की जिंदगी खेती, छोटे व्यवसाय और स्थानीय अर्थव्यवस्था से गहराई से जुड़ी हुई है।
1: और बिजनौर की बात हो तो इतिहास का जिक्र कैसे ना हो। विदुर कुटी, नजीबुद्दौला का किला और यहां के दूसरे ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल इस जिले की पहचान को और भी खास बनाते हैं।
0: लेकिन आज की हमारी कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं,
1: आज की कहानी है उस बदलाव की जो सरकारी योजना के माध्यम से आम परिवारों के जीवन तक पहुंच रहा है।
0: और इस बदलाव की एक महत्वपूर्ण कहानी है निरक्षित महिला पेंशन योजना की।
1: क्योंकि जब परिवार की जिम्मेदारी अकेले किसी महिला के कंधे पर आ जाती है तब छोटी सी आर्थिक सहायता भी उसके लिए बड़ा सहारा बन सकती है।
0: यही वजह है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं
1: बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति को यह भरोसा देना भी है कि मुश्किल समय में व्यवस्था उसके साथ खड़ी है।
0: बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं के संचालन और उनके लाभ को पात्र लोगों तक पहुंचाने पर लगातार काम किया गया है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है जिनका उद्देश्य पात्र नागरिकों तक सरकारी सहायता और सुविधा पहुंचाना है।
0: लेकिन किसी योजना की सफलता केवल योजना बनाने से नहीं होती, उसके लिए जरूरी है सही योजना, सही प्रक्रिया और उसका जमीन पर प्रभावी क्रियान्वयन।
1: और यही जिम्मेदारी प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी तक ही होती है।
0: बिजनौर में भी समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन से जुड़े तंत्रों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी और प्रक्रिया को लाभार्थी तक पहुंचाने का काम किया जाता है।
1: यानी लखनऊ में बिना योजना जब बिजनौर के किसी गांव या मोहल्ले में रहने वाली महिला तक पहुंचती है तब वह योजना कागज से निकलकर उसके जीवन का हिस्सा बनती है।
0: और यही बदलाव की असली तस्वीर है जहां सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक प्रयास और लाभार्थी की जरूरत एक दूसरे से जुड़ते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल के माध्यम में महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित विभिन्न सामाजिक पेंशन योजना की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
0: और बिजनौर में निरक्षित महिलाओं के लिए पेंशन वितरण योजना भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल है।
1: सबसे अहम बात, पात्र लाभार्थी को योजना का लाभ लेने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति को पैसे देने की जरूरत नहीं है।
0: सही जानकारी, सही प्रक्रिया और पात्रता के आधार पर मिलने वाली सहायता किसी महिला के जीवन में आत्मविश्वास का आधार बन सकती है।
1: आइए सुनते हैं एक ऐसे ही लाभार्थी की आवाज़।
2: रेडियो VKIT 90.4 FM आवाज़ बिजनौर की। आज हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका हार्दिक स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से जो इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं इस योजना के बारे में उनके विचार व उन्हें मिलने वाले लाभ। नमस्ते मैम, आपका स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। आप सबसे पहले हमारी श्रोताओं को बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली हैं?
3: मेरा नाम संजय रानी है, मंडावर बिजनौर से आवाज करके रहने वाली।
2: मैम, क्या आप निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ ले पा रही हैं?
3: जी मैडम।
2: मैम, आप मुझे बताइए कि इस योजना के बारे में आपको कब और कैसे पता चला?
3: जी मैडम, ये हमारे समाज कल्याण विभाग है, इसमें हमें पता चला तो हमने अपना फॉर्म आवेदन किया है सर, तो हमें यहाँ से लाभ मिला समाज कल्याण से।
2: क्या आपको इस योजना का लाभ समय से समय तक मिल रहा है?
3: जी मैडम, हाँ हमें समय पे मिलता है। तीन महीने में 3000 रुपये, एक महीना 1000 रुपये आ जाते हैं।
2: मैम, आपसे कोई शुल्क लिया जाता है इस राशि के मिलने से या आवेदन प्रक्रिया में कभी किसी ने कोई शुल्क मांगा हो?
3: नहीं मैडम, हमसे कोई शुल्क नहीं लिया।
2: क्या मैम आप संतुष्ट हैं जो लाभ सरकार दे रही है आपको, उससे हो रहा है आपका उपयोग हो रहा है ये लाभ?
3: जी हाँ मैडम, हम संतुष्ट हैं इस लाभ से। हम जो हमें पेंशन आती है तो हम क्या अपने बच्चों को मतलब पैसे निकाल के अपना खर्चा कर लेते हैं। सरकार हमारे लिए यही कर रही है, यही बहुत है। हम तो चाहते हैं कि और अच्छा हमें मतलब मान देनी है पेंशन।
2: जी मैम, अगर आपसे कोई और औरत है जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है, वो आपसे इस बारे में पूछे, तो आप इसको कैसे और क्या बताएंगे?
3: जी मैडम, मुझसे पूछती है, कई महिलाओं ने पूछा भी है मेरे से, ये आपकी पेंशन कहाँ से आती है। मैंने काफी महिलाओं को बताया कि ये वहाँ समाज कल्याण में जाओ, जन सेवा केंद्र से आवेदन कराओ, आवेदन करा के 3-4 महीने में आपकी पेंशन आनी स्टार्ट हो जाएगी।
2: मैम, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे, इसके आवेदन प्रक्रिया से लेकर इसके लाभ के पैसे मिलने तक क्या आपको कोई परेशानी हुई है?
3: नहीं मैडम, हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
2: ठीक है, धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी बात बताई हमें कि योजना का लाभ मिल रहा है और सरकार आपके लिए ये लाभ वाली चीजें कर रही है। धन्यवाद। देखिए आप सभी कैसे निराश्रित महिला पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा संचालित की गई है हमारे उत्तर प्रदेश में, उसका लाभ इन सभी महिलाओं को मिल रहा है जो इनके घर में उपयोग हो रहा है। धन्यवाद करना चाहेंगे हम सरकार का। और
3: मैम, धन्यवाद,
2: थैंक यू सो मच। रेडियो VKIT 90.4 FM आवाज बिजनौर की आज के हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, विकास की कहानी लाभार्थियों की जुबानी में आपका स्वागत है। इसी के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थी से, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद है। स्वागत है मैम आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना नाम व आप कहाँ से आई हैं यह बताएं।
4: जी मेरा नाम बाला देवी, पिताजी बिजनौर से आए हैं।
2: आप बिजनौर की ही रहने वाली हैं। मैम, जो योजना है निराश्रित महिला पेंशन योजना, क्या आपको इसका लाभ मिल रहा है?
4: जी इसका लाभ मिल रहा है।
2: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी कि आपको इस योजना के बारे में कब और कैसे पता चला?
4: जी हमें खुद ही पता चला था समाज कल्याण विभाग से।
2: मैम, आपने इसका आवेदन कैसे किया?
4: जी ऐसे किया था, समाज कल्याण विभाग से,
2: विभाग से जो ये विभाग बता रहे हैं किसी से आपने आवेदन किया। क्या उस दौरान किसी भी व्यक्ति ने कोई परेशानी की इस बारे में कि ना हो आवेदन प्रक्रिया ना हो पूरी या कोई शुल्क लिया हो आपसे?
4: नहीं नहीं, हमसे कोई शुल्क लिया पता नहीं था, ना यहाँ का पता चला था।
2: अच्छा, आपको जो ये लाभ मिल रहा है इसका आप उपयोग कैसे करती हैं अपने घर में?
4: मुझे घर से भी काम आ रहा है।
2: आप क्या करती हैं
4: मैम?
2: कोई और औरत अगर आपसे जानना चाहे इसके बारे में तो आप उसको क्या बताएंगे?
4: यही बताएंगे कि समाज कल्याण विभाग से पता था, हमारी सारा पता चलेगा।
2: क्या आप इससे मिलने वाले सरकार से लाभ, जो सरकार से लाभ मिल रहा है आपको, क्या आप इससे संतुष्ट हैं?
4: जी बहुत।
2: धन्यवाद मैम, आपने जो हमें जानकारी दी। तो देखिए सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उससे लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है, उनके घर तक पहुँच रहा है और वो संतुष्ट भी है। धन्यवाद।
1: आपने सुना, एक महिला के लिए पेंशन की राशि सिर्फ एक रकम नहीं होती।
0: कभी उससे घर की छोटी जरूरत पूरी होती है,
1: कभी दवा का खर्च निकलता है,
0: और कभी अपने पैरों पर खड़े रहने का आत्मविश्वास मिलता है।
1: यही तो सामाजिक सुरक्षा का असली अर्थ है, सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर।
0: और जब सरकारी विभाग लाभार्थी तक योजना की जानकारी और प्रक्रिया पहुँचाते हैं तो सरकारी योजना और आम नागरिक के बीच की दूरी कम हो जाती है।
1: यही वजह है कि किसी भी जन कल्याणकारी योजना की सफलता में केवल नीति और बजट ही नहीं
0: बल्कि उसे जमीन पर लागू करने वाले अधिकारी कर्मचारी और स्थानीय प्रशासन की मेहनत भी महत्वपूर्ण होती है।
1: जब योजना की जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचे, आवेदन की प्रक्रिया समझाई जाए और पात्र लाभार्थी को उसका लाभ मिले,
0: तब विकास का असर सरकारी कागजों से निकलकर सीधे परिवार की जिंदगी में दिखाई देता है।
1: बिजनौर की इस विकास धारा में उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना भी अपनी भूमिका निभा रही है।
0: एक तरफ प्रदेश स्तर पर योजनाओं का संचालन,
1: दूसरी तरफ जिला स्तर पर उनका क्रियान्वयन,
0: और तीसरी तरफ लाभार्थी तक पहुंचती सहायता।
1: यही तीनों मिलकर किसी योजना को वास्तविक बदलाव में बदलते हैं।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी पहलों का वास्तविक मूल्यांकन भी इसी बात से होता है कि उनका लाभ पात्र परिवारों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच रहा है।
1: और बिजनौर की ऐसी कहानी हमें बताती है कि जब प्रशासनिक व्यवस्था और लाभार्थी की जरूरत आपस में जुड़ती है तो बदलाव महसूस किया जा सकता है।
0: लेकिन बिजनौर की तस्वीर सिर्फ पेंशन तक सीमित नहीं है।
1: यहाँ गाँव की सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा विकास के अलग अलग पहलुओं को जोड़ते हैं।
0: एक तरफ खेतों में मेहनत करता किसान,
1: दूसरी तरफ

0: அருணா. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है. उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की. सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी. संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की. आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई. ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा, अगले 12 घंटों में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना. और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है. श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े. उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं.
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है. चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं. इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है. इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी.
0: श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश में शहरों और गांवों के बीच का अंतर काफी कम हुआ है. गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है और देश की महिलाओं में आत्मनिर्भरता भी बढ़ी है. प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया.
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है. ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद. आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है.
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2.0 के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जुड़े कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है. प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एक रिपोर्ट.
2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह-संस्थापक थे. उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और आरएसएस के प्रचारक बन गए. प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था. पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी. उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. समाचार कक्ष से चाहत सिंह.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि तेजी से परस्पर जुड़ती दुनिया में उभरती चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान अलग थलग रहकर नहीं किया जा सकता. श्री राधा कृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक सहभागिता कार्यक्रम के 4th संस्करण के प्रतिभागियों से संवाद में ये बात कही. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत

0: 7.8% की विकास दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। आज ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने ये बात कही। श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना है।
1: उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन आया है, इसी के कारण आज उत्तर प्रदेश लक्ष्य तय कर सकता है कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। इस प्रदर्शनी में कई व्यापारिक समझौते भी होने वाले हैं। दुनिया भर से आए हुए खरीदार यहाँ मौजूद है और इससे निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट, उत्पादन और बिक्री तीनों क्षेत्र में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होने वाली।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य देश में विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: 2:00 में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वेरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों मंत्रियों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में भाग लिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान एस्टोनिया, घाना, मालदीव, बारबाडोस और इराक के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। नई दिल्ली में आज आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किए। रेलवे ने गुजरात के भुज और बिहार के बरौनी के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी 2532 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी।
3: ये रेलगाड़ी समाखियाली, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, हाथरस, बरेली, इज्जतनगर और पीलीभीत सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने बताया कि भुज से बरौनी के लिए सेवा सोमवार, बुधवार और शनिवार को, जबकि बरौनी से भुज तक सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को उपलब्ध होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये नई सेवा देश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों के बीच रेल यात्रा का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करेगी। इससे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। रेलवे ने वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी आगरा कैंट एक्सप्रेस सेवा को मथुरा स्टेशन तक विस्तारित करने की भी मंजूरी दे दी है। शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निर्वाचन आयोग पर लगाए आरोपों को गलत बताया है। अमृतसर में श्री मेघवाल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग सही काम नहीं कर रहा है तो केरलम में कांग्रेस चुनाव कैसे जीत गई। श्री मेघवाल नशा मुक्त पंजाब यात्रा में शामिल होने के लिए अमृतसर में हैं। मेक इन इंडिया पहल के आज 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2014 में आज ही के दिन इस पहल की शुरुआत भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से की गई थी।
4: जिस पहल का विस्तार मेक इन इंडिया 2.0 के तहत किया गया। अब ये पहल 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है जिनमें 15 विनिर्माण और 12 सेवा क्षेत्र शामिल हैं। इसके अंतर्गत भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2025-26 में 13 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इसी अवधि में मोबाइल फोन का उत्पादन लगभग 33 गुना बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से 6,27,000 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय रेलवे ने भी 2014 से 2024 के बीच करीब 55,000 कोचों का निर्माण किया। देश में स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया है। प्रिया मंडल के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा कि इस पहल से देश के कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
5: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
6: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
5: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त कराना है। आकाशवाणी से बात करते हुए उज्ज्वला योजना की ऐसी एक महिला लाभार्थी ने बताया,
7: मेरा नाम संगीता गुप्ता है, मैं नागपुर जिला की रहवासी हूँ। उज्ज्वला योजना का मुझे गैस सिगड़ी का लाभ मिला है, जिससे मुझे अब खाना बनाने में समय की बचत होने लगी है। पहले मैं चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिससे पर्यावरण तथा मेरे आंखों को धुएं से तकलीफ होती थी। अब इस योजना के माध्यम से मुझे राहत मिली है। मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ।
5: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है। प्रवासी लाभार्थियों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। वे परिवार और पते से संबंधित स्वघोषणा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना से घरेलू वायु प्रदूषण में कमी आई है और महिलाओं को ईंधन के लिए लकड़ी एकत्रित करने में लगने वाले समय की भी बचत हुई है। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
0: उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने जापान के नागोया में 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने उन्हें बधाई दी है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। भारत की पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकसित भारत सभी के योगदान से ही साकार हो सकता है। उन्होंने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत सेवा यात्रियों से बातचीत की। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत अगले महीने से 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर आईबीएसए संवाद मंच की बैठक में दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में बने दबाव के क्षेत्र के कारण मूसलाधार वर्षा अगले 12 घंटे में इसके कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदलने की संभावना। और जापान में एशियाई खेलों में भारतीय जोड़ी कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्ते। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 2:30:16 और आप जानते हैं ये वक्त होता है आपके पसंदीदा प्रोग्राम, हम सबके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है एक ही कलाकार। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले सुनते हैं एक संदेश।
8: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
9: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
8: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
9: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
8: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
9: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों, जब भी हिंदी सिनेमा की सबसे
10: करते बुजुर्ग
11: यही मिलकर बनते हैं बिजनौर की विकास गाथा,
10: और इस गाथा में सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं उन लोगों तक सहारा पहुंचाने का काम करती है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।
11: निराश्रित महिला पेंशन योजना की कहानी हमें यही बताती है कि विकास तभी सतर्क है
10: जब उसका लाभ समाज के जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे,
11: जब सहायता लेने के लिए किसी आर्थिक खर्च का बोझ ना हो,
10: और जब लाभार्थी को सही जानकारी और सही मार्गदर्शन मिले।
11: बिजनौर की धरती पर बह रही विकास की धारा,
10: इतिहास की विरासत को साथ लेकर वर्तमान की जरूरत को समझते हुए
11: और बेहतर भविष्य की उम्मीदों को आगे बढ़ा रही है,
10: यही है विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
11: और यही थी बिजनौर में बहती विकास धारा की कहानी,
10: एक ऐसी कहानी जिसमें योजनाएं हैं,
11: लाभार्थी है
10: और सबसे बढ़कर बेहतर जीवन की उम्मीद है।
11: आप सुन रहे हैं विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश,
12: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी नई।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफरातबाद 89.6 पर और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। हम लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच और मेरे साथ में है प्राची। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
3: क्या सपनों पर भी कोई उम्र लिखी होती है? क्या कोई सपना 20 साल की उम्र में खूबसूरत होता है और 60 साल की उम्र में बेकार? जी नहीं बिल्कुल खुशी जी, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। सपने तो बस सपने होते हैं, उन्हें देखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए दिल में हिम्मत चाहिए।
2: और एक बड़ी खूबसूरत सी शायरी भी है, उम्र की गिनती से कहां सपने मरा करते हैं, कुछ ख्वाब तो आखिरी सांस तक जिया करते हैं। लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, लोग कहते हैं अब तुम्हारी उम्र नहीं रही, हम कहते हैं सपने उम्र से नहीं हौसलों से चलते हैं।
3: क्या बात कही खुशी जी आपने। तो दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक कहानी, एक ऐसी महिला की कहानी जो बस आपकी दिल को छू जाएगी।
2: एक ऐसी महिला की जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों के सपने पूरे करते हुए गुजार दिया।
3: दोस्तों उनका नाम था सावित्री देवी और सावित्री देवी की उम्र लगभग 62 साल थी।
2: उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में उनका घर था, पति सरकारी नौकरी में थे, 2 बच्चे थे, जिंदगी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस दौर की बहुत सी महिला की होती थी।
3: जी हाँ दोस्तों, सुबह सुबह सबसे पहले उठना, घर संभालना, बच्चों को स्कूल भेजना, पति के लिए खाना बनाना, बुजुर्ग सास ससुर की सेवा कर और दिन खत्म होते होते अपने लिए कुछ भी नहीं बचता था।
2: लेकिन दोस्तों सावित्री देवी के अंदर एक सपना था, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन में वह स्कूल जाना चाहती थी, किताबें पढ़ना चाहती थी, उनके नाम के आगे एक डिग्री लगाना चाहती थी।
3: लेकिन दोस्तों उनकी घर की परिस्थितियां ऐसी थीं कि 8वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई। उस समय लोग कहा करते थे कि लड़कियों का इतना पढ़कर क्या होगा और सावित्री जी चुप हो जाया करती थी। लेकिन उनका सपना चुप नहीं हुआ,
2: वो सपना उनके अंदर कहीं रह गया। फिर शादी हो गई, बच्चे हुए, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और धीरे धीरे उन्होंने भी मान लिया कि शायद अब पढ़ाई उनके लिए नहीं है।
3: एक दिन उनकी पोती जब स्कूल से घर आई, उसके हाथ में एक किताब थी। वह अपनी दादी से बोली, दादी ये कहानी आप पढ़कर सुनाओ ना।
2: सावित्री ने किताब हाथ में ली, उस सेकंड तक किताब को देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बेटा दादी को पढ़ना नहीं आता।
3: और दोस्तों आपको पता है पोती ने मासूमियत से क्या पूछा?
2: लेकिन दादी आपने स्कूल में पढ़ाई नहीं की थी क्या?
3: इस पर सावित्री देवी ने कहा कि तो थी बेटा लेकिन बहुत थोड़ी।
2: पोती ने तुरंत कहा, तो आप कर लो।
3: बस यही 2 शब्द सावित्री देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गए थे। उसी रात सावित्री देवी काफी देर तक सो नहीं पाई। उन्होंने दोस्तों खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी पोती 10 साल की उम्र में पढ़ सकती है तो मैं 60 साल की उम्र में मैं क्यों नहीं पढ़ सकती?
2: अगली सुबह उन्होंने अपने बेटे से कहा, मुझे पढ़ना है। बेटा हंस पड़ा, उसे मजाक लगा, उसे लगा माँ मजाक कर रही है।
3: और दोस्तों उसने कहा, माँ अब इस उम्र में पढ़कर क्या करूँगी? सावित्री देवी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और कहा, शायद वही करूँगी जो मैं बचपन में करना चाहती थी।
2: और फिर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, पहले हिंदी की किताब, फिर अखबार, फिर अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द। उम्र 60 पार थी लेकिन उनके अंदर की छात्रा शायद अभी भी 15 साल की थी।
3: दोस्तों सच में शुरुआत में सपने आसान होते हैं। कभी वो अक्षर भूल जाया करती थी, कभी शब्द समझ में नहीं आते थे, कभी घर में कोई कह देता था अब इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है माँ, कभी पड़ोस की महिलाएं मजाक बनाया करती थी, अरे बहन जी आप परीक्षा देकर कलेक्टर बनोगी क्या?
2: सावित्री देवी हंस देती थी लेकिन अंदर से वह और मजबूत हो जाती। उन्होंने एक कॉपी बनाई, उसके पहले पन्ने पर लिखा मेरा सपना और उसके नीचे देर हुई लेकिन खत्म नहीं।
3: जी हाँ दोस्तों उन्होंने क्या क्या बात लिखी कि देर तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुआ। दिन गुजरते गए और सावित्री देवी ने आखिरकार पढ़ना सीख ही लिया, फिर लिखना सीखा और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी पहली परीक्षा दी
2: और जब परीक्षा का परिणाम आया वह पास हो गई बहुत अच्छे नंबरों से। बहुत अच्छे नंबरों से नहीं लेकिन उनके लिए वो नंबर दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि थी,
3: क्योंकि दोस्तों वो सिर्फ पास नहीं हुई थी, उन्होंने उस सोच को भी हरा दिया था जो कहती थी कि सपने सिर्फ जवान लोग देखते हैं।
2: उस दिन उनकी पोती ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी मुझे आप पर गर्व है। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पोती से कहा, बेटा जिंदगी में कभी ये मत सोचना कि अब देर हो गई है।
3: जी हाँ दोस्तों, सावित्री देवी के ये शब्द बिल्कुल दिल को छू जाने वाले थे कि कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जिंदगी में देर हो गई है। दोस्तों सपनों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, तो शायद यही बात हम सबको समझने की जरूरत है।
2: कितनी बार हम खुद से कहते हैं ना, अब मेरी उम्र नहीं रही, अब कौन नई शुरुआत करेगा, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब तो नौकरी की उम्र निकल गई, अब कौन मुझे मौका देगा। लेकिन जिंदगी हर बार हमसे यही कहती है। किसी ने कहा कि शुरुआत की कोई भी उम्र नहीं होती। आप इस पर राजी क्या कहना चाहेंगी?
3: खुशी, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि चाहे आप 20 के हैं, 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के हैं या 70 के हैं, दोस्तों अगर दिल में कोई सपना अभी भी जिंदा है तो उसे एक मौका जरूर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी आवाज देते हैं, कुछ रास्ते उम्र के बाद भी बुलाते हैं। जो दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, दोस्तों जो आपकी दिल से निकल जाए मैं कर सकता हूँ, वो सपने उम्र नहीं बस हौसला मांगते हैं।
2: तो आज अगर आपके दिल में कोई सपना है जिसे आपने सालों से दबा कर रखा है, तो उसे आज फिर से बाहर निकालिए। शायद वो सपना अभी भी आपका इंतजार कर रहा हो।
3: दोस्तों शायद वो सपना कह रहा हो, चलो अब बहुत इंतजार हो गया, अब मुझे जियो, अब मुझे भी तो अपनी जिंदगी में का हिस्सा बनाओ,
2: मुझे भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। और सपनों को उम्र नहीं चाहिए, सिर्फ हिम्मत चाहिए, क्यों प्राची?
3: बिल्कुल खुशी जी, उम्र चाहे कितनी भी हो जाए, अगर आंखों में आपके सपने बाकी हैं तो जिंदगी में आप अभी भी जवान हैं।
2: बहुत खूब। तो दोस्तों बिल्कुल सही कहा है कि सपनों की ना कोई उम्र नहीं होती है। और हमारी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो हमें सुन रही हैं प्राची इस समय राइट नाउ, उनका भी कहीं ना कहीं सपना है कि मुझे भी टीचर बनना है, लॉयर बनना है, एंड उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग का भी आजकल यू नो ट्रेंड में है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। और महिलाएं हैं भी इस फील्ड में, लेडीज हैं, वो आगे अच्छा भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं,
3: बिल्कुल खुशी जी,
2: पार्लर भी संभाल रही हैं,
3: बिल्कुल खुशी जी। हमारी आजकल खासकर मैं बात करना चाहूंगी न्यूली मैरिड वुमेन जो है हमारी, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करनी है। टैलेंट तो उनके अंदर बहुत है, डेडिकेशन भी बहुत है, पर वो शुरुआत में घर की नई नई जिम्मेदारियों से घिर गई हैं, अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हैं। पर हमारी प्यारी प्यारी श्रोताओं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे आइए, अपने लिए समय निकालिए, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है उसको भी कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है वो आपके परिवार और समाज का नाम रोशन करेगा।
2: और बहुत प्यारी सी एक लाइन भी है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा।
3: अरे वाह खुशी जी, क्या बात कही है आपने। और हमारा ये संदेश सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी है कि अगर कोई भी सपना जो आपको लगा है कि मैं अभी नहीं कर पाया था और आपको लगता है कि मैं जिंदगी की एक रेस में बहुत आगे आ गया हूँ और अब मैं अपने सपनों के जीने की उम्र को छोड़ आया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों सपनों की कोई उम्र नहीं होती।
2: अब वो सब चीज कर सकते हैं जो आप चाहते हैं।
3: और बिल्कुल खुशी जी, और आपको पता है जब हम अपने सपनों को जीते हैं तो हमारी जो जिंदा दिली होती है जिंदगी को जीने की वो
2: और ज्यादा बढ़ जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और सच में जिंदगी को जीने का मजा तभी है जब सपने बाकी हो। जब हम उस सपनों के पीछे भागते रहते हैं तो सच में जिंदगी को जीने का मजा आता है।
2: और जिंदगी इसी का नाम है।
3: और हाँ जिंदगी इसी का नाम है। तो खुशी जी, कोई आपका ऐसा सपना है जो आप चाहती हैं अभी भी पूरा करना, क्योंकि आप हम सबके बीच में एक बहुत अच्छी आरजे हैं, तो और क्या क्या सपने हैं आपके जो आप पूरा करना चाहती हैं?
2: ड्रीम्स तो मेरे बहुत सारे हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्राची कभी ड्रीम्स ना खत्म ही नहीं होते हैं, अगर एक कंप्लीट होता है तो फिर हम दूसरा सपना देखते हैं।
3: खुशी जी मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि क्योंकि सपने जो होते हैं, जो ड्रीम्स जो इतना ब्यूटीफुल वर्ड है, ड्रीम्स ये लाइफ को सच में बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर ड्रीम्स ना हो तो सच में लाइफ में वो जो क्यूरियोसिटी और जो हमारा सब कुछ एक्सप्लोर करने की जो एक हमेशा इच्छा रहती है, अगर वो खत्म हो जाए ना तो लाइफ में ना जिंदगी को जीने का मजा कम हो जाता है। सही बात है ना खुशी जी?
2: आई एग्री विद यू प्राची।
3: तो खुशी
2: अभी लेते हैं हम एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, बातें तो हमने बहुत सारी कर ली हैं, तो मैं चाहती हूँ एक प्यारा सा अपने जितने भी हमारे लिसनर इस समय हमें सुन रहे हैं राइट नाउ, सभी के लिए एक अच्छा सा गाना हम प्ले करें यहाँ पर।
3: हाँ बिल्कुल, हम करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सभी के लिए प्ले। सुनते रहिए, कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। मिलेंगे आपसे FM मुरादाबाद 89.6 पर।
2: और मुस्कुराते भी रहिए, ये मत भूलना, क्योंकि ये किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। और आप भी मुस्कुराइए, जब आप मुस्कुराएंगे ना तो मुझे यकीन है कि आपके सामने वाले पड़ोसी भी आपको देखकर जरूर मुस्कुराएंगे।
3: थैंक यू सो मच खुशी जी प्यारा सा मैसेज देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत आरजी खुशी करती है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है महिला मंच और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी और मेरे साथ में यहां पर प्राची भी हैं। एंड आज हम कुछ करने वाले हैं नया, कुछ न्यू क्रिएटिविटी एंड कुछ मस्ती भी, फन यहां पर होने वाला है। और दोस्तों आप ऐसे ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, कार्यक्रम को एंजॉय करते रहिए क्योंकि ढेर सारा एंटरटेनमेंट का डोज हम दोनों कुड़ियां यहां पर लेकर आए हैं आपके लिए। मैं प्राची से कुछ मालूम भी करने वाली हूं। अरे सुनो प्राची, एक बात बताओ।
1: हाँ खुशी जी, बताओ आज अब क्या नया सवाल लेकर आई है।
0: तुम्हें क्या लगता है, सपने देखने की भी कोई उम्र होती है?
1: अरे बिल्कुल नहीं, सपने देखने की उम्र होती तो हम दोनों आज यहाँ बैठकर इतनी बातें थोड़ी कर रहे होते।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और सच बताऊँ, मुझे लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सपने कम नहीं होते, बस हम उन्हें थोड़ा दबा देते हैं।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं खुशी जी आप, क्योंकि जिंदगी में जिम्मेदारियां इतनी आ जाती हैं ना कि हम अपने सपनों को बोल देते हैं, बेटा तुम थोड़ा इंतजार करो, पहले घर तो संभाल ले।
0: और वो थोड़ा देर, और वो थोड़ी देर पता है कब खत्म होती है?
1: जब बाल सफेद हो जाते हैं।
0: लेकिन सपना बेचारा तब भी वही खड़ा रहता है
1: और कहता है मैं तो अभी भी यही हूँ।
0: सच में दोस्तों, हमारे घरों में कितनी ऐसी महिलाएं होंगी ना जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ चाहा होगा। किसी को पढ़ना था, किसी को गाना सीखना था, किसी को सिलाई कढ़ाई का अपना काम शुरू करना था, किसी को घूमना था,
1: किसी को बस इतना करना था कि एक दिन अपने मन की कोई चीज खरीद सके और उसे किसी से पूछना ना पड़े।
0: लेकिन फिर शादी हुई, बच्चे हुए, घर की जिम्मेदारियां आई और अपने सपने धीरे धीरे अलमारी में रखे, किसी पुराने कपड़े की तरह पीछे चले गए।
1: लेकिन दोस्तों पुरानी चीज का मतलब बेकार चीज नहीं होता, कभी कभी वही पुरानी इच्छा सालों बाद फिर से आवाज देती है। दोस्तों हम आपको फिर से सुनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी कहानी जो है बहुत ही प्रेरणादायक। मेरी जान पहचान में एक आंटी थी, उनकी उम्र लगभग 65 साल की थी,
0: बड़ी प्यारी महिला है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, आंटी अगर आपको जिंदगी में एक मौका मिले, मैंने आंटी जी से पूछा, आंटी जी अगर आपको जिंदगी में आप कोई भी काम कर सकें तो आप क्या करेंगी? उन्होंने बिना सोचे कि पता है प्राची क्या कहा?
1: क्या कहा खुशी जी?
0: मैं डांस सीखूंगी। मैंने कहा अरे वाह, तो अभी सीख लीजिए।
1: तो वो क्या बोली खुशी जी?
0: तो वो हंसकर बोली, अब मेरी उम्र थोड़ी है डांस सीखने की।
1: तो आपने उनसे क्या कहा?
0: मैंने आंटी जी से कहा, आंटी जी डांस सीखने के लिए उम्र चाहिए या पैर? वो बोली पैर। मैंने कहा तो फिर समस्या क्या है? हल्की हंसी। और सच बताऊं
1: दोस्तों वो इस बात पर हंसने लगी और उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब वो डांस क्लास ज्वाइन करेंगी। पहले दिन तो उन्हें बहुत डर लग रहा था, उनसे छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं जो थी, उन्हें लगा सब उन्हें देख रहे हैं।
0: लेकिन कुछ दिन बाद वही आंटी सबसे आगे खड़ी होकर डांस कर रही थी प्राची, पता है। और उन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया, बोली बेटा पता है मैं डांस करते हुए अपनी उम्र भूल जाती हूँ। और दोस्तों बस यही तो जिंदगी है, जब कोई काम करते हुए हमें अपनी उम्र याद ना रहे
1: तो समझिए दोस्तों कि आप सच में जी रहे हैं।
0: वाह ये बात तो बहुत अच्छी लगी,
1: क्योंकि दोस्तों हम उम्र को अक्सर एक नंबर समझ लेते हैं कि मैं 50 का हो गया हूँ या मैं 50 की हो गई हूँ, 60 का हो गया हूँ,

0: नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर दोपहर का ये प्यारा सा वक्त और आपके साथ हमारी प्यारी सी महफिल। जी हाँ, आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश, जहाँ गाने सिर्फ बजाए नहीं जाते, दिल की बातें भी सुनकर दिल की बातें बनकर ना बजते हैं। जी हाँ, और आज सुनते हैं किसके दिल में कौन सा गाना घूम रहा है, किसको प्यार वाला सॉन्ग सुनना चाहता है, कोई कौन ऐसा इंसान है जो प्यार वाला गाना सुनना चाहता है, कौन ऐसा शख्स है जो अपनी दोस्ती के लिए गाना सुनना चाहता है, तो फटाफट से कॉल कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी होस्ट आरजे खुशी, और वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:06, और हमारे साथ हमारे फर्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। वैसे एवरीवन, आपको भी ये मौका मिल रहा है तो आप भी बिना किसी देरी के मुझे कॉल लगा सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9838968696। देर किस बात की है, उठाइए फोन, लगाइए हमारा नंबर और बात कीजिए खुशी से और सुनिए अपना फेवरेट ट्रैक। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन से।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सर?
1: मैडम जी बढ़िया है, घर पर ही बैठे हैं और आज ही हम माता रानी वैष्णो देवी दर्शन करके लौटे हैं, तो आराम कर रहे हैं घर पर।
0: जय माता दी।
1: जय माता दी।
0: कैसी रही आपकी जर्नी?
1: जी अच्छी रही मैडम जी।
0: अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, माता रानी के दरबार आप गए, दर्शन कैसे हुए आपको?
1: अच्छे हुए मैडम जी, उधर से लौटते वक्त खाटू श्याम जी भी घूम कर आए, वहाँ भी दर्शन किए बाबा श्याम जी के।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है सर, आपने दर्शन किए माता रानी के भी, खाटू श्याम जी के भी, और आज हमें कॉल भी लगाया है, तो बताइएगा क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी मैडम, पिक्चर का नाम है राम अवतार।
0: हाँ जी।
1: और गाने के बोले तेरी बेवफाई का शिकवा करूँ तो।
0: और ये गाना किनके लिए सुनना चाहते हैं आप?
1: जी ये गाना डेडिकेट रहेगा, हमारे दोस्त हैं गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझानी है, दीपेंद्र ढाकड़ी है, और जितने भी सभी मुरादाबाद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं उनके लिए गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा गीत, आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद,
0: मोस्ट वेलकम। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये शानदार से गाना, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। प्यारे प्यारे गीतों के साथ बनाएंगे आपकी दोपहर को और भी ज़्यादा खूबसूरत।

0: वाह अवतार साहब वाह, मजा आ गया, बड़े गजब का शेर था।
1: लेकिन अवतार साहब एक बात समझ में नहीं आई, जिससे इज्जत शोहरत और किस्मत सबने ही वफादारी की हो, उसकी जबान पर यह बेवफाई भरा शेर।
0: किसने की है बेवफाई आपसे, जरा हमें भी तो बताएं।

हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं आपके साथ आपकी होस्ट खुशी, और समय हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 3:15। हमारे साथ हमारे नेक्स्ट कॉलर भी कनेक्ट हो गई हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं और जानते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश, हेलो मैम, प्लीज़ मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आपके बैकग्राउंड में जो साउंड आ रही है उसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, क्योंकि प्रॉपरली आपकी आवाज़ फिर हमें नहीं आ पाएगी। हेलो हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ डियर थोड़ा सा लाउड बोलेंगी आप? ओहो, ये नेटवर्क को भी ना, बस क्या मैं बोलूँ, वैसे भी वजह ठीक चलता है, और जब कहीं हमें बात करनी होती है ना तभी इशू कर

0: मैंने
1: अच्छा 12th किया है आपने, ओके वेरी गुड। बताइएगा इरम आज क्या सुनना चाहते हो आप? ओके चलिए गाना आपको सुनवाते हैं इरम, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए डियर। ओके बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन इरम की फरमाइश पर सुनवाते हैं ये अमेजिंग ट्रैक और मैं वापस आती हूँ लौट कर, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896, बिना किसी देरी के जल्दी से कॉल लगाइए और जितनी जल्दी आप कॉल लगाएंगे उतनी ही जल्दी आप हमारे शो में कनेक्ट हो पाएंगे। तो वो सिंपल सा फंडा है, हमारा मोबाइल नंबर मैं आपको बता देती हूँ, अगेन रिपीट करती हूँ 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी और इन्जॉय कीजिएगा ये गाना, बस मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
2: For you and Miss Roshni, should we confirm it?

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 शो का नाम है हेलो फरमाइश। और अभी आपने ये ट्रैक एंजॉय किया केके जी की आवाज में। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, जय श्री राम। कैसे हैं आप? नमस्कार, क्या नाम है आपका? गोपाल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: बोल रहे हैं
0: जी, बताएगा कैसे हैं आप? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ जी,
1: आवाज चल रही है। मौसम ऐसे हो रहा है अभी से, थोड़ा मान लीजिए
0: बारिश हुई है। बारिश होने वाली है,
1: होने वाली है बारिश।
0: अच्छा, बारिश होने वाली है, बादल आए हुए हैं। सर मुझे ना आपकी वॉइस प्रॉपरली नहीं मिल पा रही है, प्लीज आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाइएगा ताकि आपकी आवाज अच्छे से आ पाए। जी बताइएगा अपना नाम और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गोपाल ओझा, ग्राम पगवासा, जिला गुना से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। अरे कि
0: हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ सर। मौसम सुहाना सा है, बताएगा कौन सा गीत आपको सुनना है?
1: वो सुनना है अलका याग्निक, अभिजीत की आवाज में सुनना है, वो जुदाई फिल्म का मैं तुझसे ऐसे मिलूं तेरी जान बन जाऊं ये वाला।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा।
1: हमारे सुरीन साहू जी है, चिकन दाखल दिए।
0: ओके, आपके दोस्तों के साथ आप एंजॉय कीजिएगा ये गाना। और दोस्तों आप भी कॉल लगाइएगा, आपका कॉल भी जल्दी से लग जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
3: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और अभी वक्त हुआ है 3:31। दोस्तों, फ्राइडे की दोपहर है और मैं चाहती हूँ कि हमारे शो में ज्यादा से ज्यादा हमारे लिस्टनर हमारे साथ कनेक्ट हों और स्पेशली सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी का अधिकार है हेलो फरमाइश में पार्टिसिपेट करने का, अपनी कॉल लगाने का। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ एवरीवन, जिनका कॉल मंडे टू ट्यूसडे लग चुका है, थर्सडे लग चुका है, तो प्लीज आप दोबारा कॉल ना कीजिएगा, आप नेक्स्ट वीक ही कॉल करें ताकि और भी जो न्यू लिसनर्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो भी इजीली अपना कॉल लगा पाए। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर,
1: कहते हैं कि फोन हेलो फरमाइश में आज शामिल हो रही है हमारी, किसी ने आज का शुक्रवार का दिन का नजारा भी है बड़ा ही प्यारा, तो खुशी जी आपकी शान में कबूल हो, मोहब्बत भरा नमस्कार हमारा।
0: आपको भी नमस्कार सर, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: मैं जिला रामपुर ग्राम से वसीम अकरम बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी बताइएगा, आप कैसे हैं सर?
1: अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और आपकी दुआएं हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ट्रेन में और स्टूडियो में सभी लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, ऑल गुड, सब बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: देखिए मैम, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने एमए कर रखा पॉलिटिकल साइंस से।
0: हाँ जी।
1: और मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ गुड़गांव के अंदर। मैम आइए गुड़गांव घूमने के लिए। गुड़गांव जो है मैम इंडिया का तीसरा नंबर पर शहर आता है गुड़गांव।
0: हाँ जी
1: जी। और यहाँ पर साइबर सिटी वगैरह हैं बहुत सारी, ऐसा लगता है ना कि जैसे आप दुबई में घूम रहे हैं। एक बार गुड़गांव आके देखना मैम आप।
0: श्योर, आपने बुलाया तो हम जरूर आएंगे सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो बताइएगा
1: मैम, जब हेलो फरमाइश कार्यक्रम में रामपुर से कॉल शामिल हो रही है तो मूवी का नाम है प्यार कोई खेल नहीं।
0: हाँ जी।
1: और उसमें तो तेरे गालों की चांदनी देखे तो हो गया दिल बेमान, कुछ इस टाइप के बोले।
0: ओके।
1: और जी मैं चलते चलते कहना चाहूंगा कि गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता, लहरों को पानी से मिलाया नहीं जाता, होने वाले खुद अपने ही हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना बनाया नहीं जाता।
0: बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं आपकी।
1: और मेरे साथ में मेरे कुछ फ्रेंड हैं मैम।
0: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बताइएगा सर।
1: ग्राम खेर डांडा रामपुर से मोहम्मद कामिल।
0: हाँ जी।
1: मोहम्मद तालिब परवेज और हमारे साथ में हारिस रहू, और जितने भी सुनने वाले हैं सभी के लिए मैम ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा।
0: ओके सर, श्योर, ये ट्रैक हम आपको सुनवा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मोस्ट वेलकम। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं सर की पसंद का ये अमेजिंग ट्रैक और लौट कर आती हूँ मैं। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त खुशी, और इंजॉय कीजिएगा ट्रैक।

0: हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपके एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी प्यार कोई खेल नहीं। और इस खूबसूरत गीत को गाया था अलका याग्निक जी ने, साथ में उदित नारायण जी ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे जतिन ललित जी। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ कनेक्ट हुई है। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, हाय
0: जी, तमी केम छो? मजा मा, तमी केम छो?
1: मजा मा छो बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है, गुजराती स्टाइल में आप बोलते हो, अच्छा लगता है हमें।
1: हाँ जी, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम पे भी वो आती थी ना, शायद ही आती थी।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: सीख लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था ये।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो थोड़ा गुजराती और सीखूं?
1: जी नहीं, अब इतनी उन्होंने सिखा दी, आगे तुम सिखा दो ना उसको।
0: अच्छा, मेरे को भी प्रॉपरली गुजराती नहीं आती है, बट लिटिल बिट सॉरी गुजराती आती है मेरे को।
1: हाँ आती है भी, लेकिन तुम बोलती बहुत अच्छा हो सच में।
0: ओह रियली, थैंक यू।
1: हाँ
0: बताइएगा अपने नाम।
1: जी दी, मैं अक्का विकनपुर जिला मुरादाबाद से आपकी पुरानी लिसनर अफरोज फातिमा बोल रही हूँ।
0: और इतनी जोर जोर से सांसें क्यों ले रही हैं आप, पहले ये बताइए।
1: अभी भी मैं मतलब कार चॉप कर रही थी ना।
0: हाँ जी,
1: तो मैं दूसरे घर में बैठी थी, अभी दूसरे घर पे आई हूँ आपसे बात करने के
0: अच्छा,
1: लिए।
0: अच्छा, दौड़ दौड़ के आई है क्या आप, तभी आपकी सांसें इतनी तेज तेज चल रही हैं?
1: नहीं मतलब एक ही है ना हमारा घर, लेकिन दो है।
0: अच्छा
1: एक...
0: अच्छा
1: हाँ, तो मैं उधर से आई हूँ ना, मतलब बहुत तेज भाग के आई हूँ, तो इसलिए मतलब ऐसा लग रहा है।
0: हाँ बिल्कुल, और जब हम स्पीड में चलते हैं ना तो ऐसा होता है।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: बताइएगा
1: आप, बताओ जी आप कैसे हो?
0: हाँ मैं तो ठीक हूँ, ऑल गुड, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, स्टूडियो में भी फैमिली में भी। आप बताइएगा आपके यहाँ पर सब कैसे हैं?
1: जी मेरे यहाँ पे अभी फिलहाल बिल्कुल ठीक है सभी लोग, अल्लाह पाक का करम है।
0: और मौसम बताइए कैसा है मौसम?
1: मौसम तो भी अभी बादल छाए हुए हैं।
0: अच्छा, लेकिन गर्मी भी है ना?
1: हाँ गर्मी भी बहुत हो रही है।
0: बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हो, क्या सुनना चाहते हो?
1: मन तो नहीं था जी इस हफ्ते कॉल करने का, क्योंकि मेरी दोस्त की कॉल नहीं आई है, उनसे बात भी नहीं हुई है, तो इसलिए मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा तुमसे बात करना जरूरी था, तो मुझे लगा मुझे कॉल करनी चाहिए।
0: दिल है कि मानता नहीं, ये बोलू ना साफ?
1: नहीं मानता ना दी, आपसे मोहब्बत ही इतनी हो गई है हमको।
0: हम समझ सकते हैं आपके दिल का हाल।
1: जी दी
0: जी, बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हो?
1: दी आज मैं बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेकर आई हूँ।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: सॉन्ग है हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया।
0: अरे वाह, बहुत प्यारा गाना है। और ये गाना आप किन के लिए सुनना चाहते हो ये भी बताइएगा, और कोई शायरी अगर सुनाना चाहती हैं तो वो भी सुनाइएगा।
1: जी जी बिल्कुल, बिना शायरी के तो कॉल अधूरी लगती है ना।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो हमने बोला ना।
1: जी जी, साथ में जैसे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइबा,
0: हाँ
1: मेरी सिस्टर नजमा, दरख्त राबिया, रुकैया और आशिया और रामपुर से सबनम भी।
0: ओके,
1: मैं एक शायरी सुनाना चाहती हूँ।
0: जी इरशाद।
1: अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, अभी सूरज नहीं डूबा जरा सी शाम होने दो, मैं खुद ही लौट जाऊंगी मुझे नाकाम होने दो, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, मुझे नाकाम करने के बहाने ढूंढते हो क्यों, अरे मैं खुद हो जाऊंगी बदनाम पहले नाम होने दो।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत शायरी है आपकी।
1: जी जी, आप अगले हफ्ते मैं कॉल करूंगी ना दी, कुछ स्पेशल लेकर आऊंगी मैं।
0: श्योर, हमें इंतजार रहेगा और अभी एंजॉय कीजिए।
1: मतलब अपनी सिस्टर के लिए जो शायरी भेजी थी ना, वॉइस नोट डाला था ना आपके पास को?
0: हाँ जी हाँ जी, मैंने प्ले किया था, आपने सुना होगा।
1: हाँ दी, आपको भी बहुत पसंद आया, मेरी सिस्टर ने भी मुझे थैंक यू बोला, क्योंकि वो बोल रही थी, कह रही थी आप इतना प्यार करती हो हमें पता ही नहीं था।
0: वो इतना प्यार करती है कि शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं, है ना? बड़ी बहनें ऐसी होती हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मैं मतलब हम चार सिस्टर है ना।
0: हाँ जी,
1: तो मैंने चारों के लिए वो कुछ लाइनें स्पेशल लिखी थी और आपके पास डाल दी।
0: हाँ बहुत ही प्यारी शायरी थी आपकी, मैंने सुना, और कहते हैं भी हैं कि जो बड़ी बहन होती है ना वो मम्मा की तरह ही प्यार करती हैं।
1: बिल्कुल जी, सभी का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि बड़ी सिस्टर किस तरह से जिम्मेदारियां निभाती है आप समझ सकते हो।
0: हाँ मैं समझ सकती हूँ, भले ही मैं घर में बड़ी नहीं हूँ लेकिन समझ सकती हूँ।
1: लेकिन मैं तो सिस्टर हूँ, मैं तो मैं बड़ी हूँ।
0: हाँ जी, तो आप बड़े हैं
1: मुझसे, लेकिन सिस्टर जो है उनमें बड़ी मैं हूँ।
0: हाँ मैं समझ सकती हूँ। एंड थैंक यू सो मच कॉल किया आपने, और सुनवाते हैं गाना, आप इंजॉय कीजिएगा।
1: थैंक यू,
0: मोस्ट वेलकम, बाय, नाइस टॉकिंग टू यू डियर। तो एवरीवन चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: एवरीवन, शॉर्ट एंड ब्रेक के बाद खुशी लौटकर आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है हेलो फरमाइश और हमारे साथ अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, राम राम सा, नमस्कार, राम राम सा,
1: राम राम सा, राम राम सा,
0: बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: हम बढ़िया हैं दीदी
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं सब?
1: दीदी मैं दिलवाली पटा टेननी तहसील छबड़ा जिला बारा राजस्थान से अमर सिंह गिल बोल रहा हूँ दीदी। मैं
0: जी बताइएगा सर कैसे हैं आप?
1: अपन तो बढ़िया हैं दीदी,
0: अच्छे ही रहने चाहिए। बताइएगा कैसा मौसम है राजस्थान का
1: अभी तक? दीदी यहाँ पर हवा चल रही बहुत तेज।
0: अच्छा, बहुत तेज हवा चल रही है? बारिश होने के चांसेस हैं, राइट?
1: हाँ, बारिश होने के चांसेस हैं पर लेकिन बादल छा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो मौसम बहुत ही कूल है, ठीक, अच्छा मौसम है, सुहाना सा। बताइएगा आज आप हमारे साथ जुड़े हैं सर, क्या फरमाइश है आपकी?
1: फरमाइश है यमला पगला दीवाना पिक्चर का गाना है।
0: अच्छा ठीक है सर, सुनवाते हैं गाना आपको।
1: दीदी मैं कुछ दोस्तों का नाम दे लूं?
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल ले लीजिएगा।
1: गजराज लोधी, नरेश प्रजापति, सुनील साहू, मांगीलाल चंदेल, पूरन वर्मा, ये हमारे दोस्त है दीदी, चाहता हूँ आपको सुनाना चाहता हूँ गाना।
0: ठीक है सर, सुनवाते हैं ये प्यारा से गाना। आपने हमें कॉल किया, आपका धन्यवाद, और एंजॉय कीजिएगा आप ये ट्रैक। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये गाना, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ, आपकी खुशी, और खुश तो आप हो ही जाते हैं ना जब अपना फेवरेट गाना सुनते हो, तो ये खुशी हमारे साथ भी साझा कीजिए। बताइए कौन सा गाना है जो आप इस वक्त सुनना चाहते हैं।

0: दोस्तों अभी आपने टाइटल ट्रैक सुनाई अमला पगला दीवाना, सोनू निगम जी की खूबसूरत सी आवाज, और मुझे पता है आपने एंजॉय किया, हल्का हल्का थिरक भी रहे थे आप क्योंकि गाना इतना शानदार था। अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जान लेते हैं उनकी फरमाइश। हेलो फरमाइश। हाँ जी सर नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार
0: जी, बताइएगा सर क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाने के बोल रहेंगे काले तेरा।
0: अच्छा ओके, चलिए गाना सुनवाते हैं आपको। तो एवरीवन चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक फ्रॉम द मूवी गदर से, और लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मत जाइए, हमें बिल्कुल भी कॉल लगाना मिस मत कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और ऐसे ही खूबसूरत गाने सुनने के लिए ट्यून इन रखिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।
3: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद। 7983153386।
4: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग। स्वच्छ भारत, विकसित भारत।
5: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार है।
4: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शुक्राम हेलो फरमाइश है और मैं आपके साथ आपकी खुशी। अभी आपने सुनाई बहुत ही प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी गदर। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: बहन प्रणाम, नमस्कार। मैं राजीव यादव, ग्राम उप्रहका, श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा, हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: जी बताइएगा, कैसे हैं आप सब?
1: जी बहना जी, हम तो बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं। इस समय झमाझम बारिश का आनंद ले रहे।
0: अरे वाह, आपके सिटी में बारिश हो रही है?
1: जी बहना जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बारिश का लुत्फ उठाइए और बताइएगा आज। अरे वाह क्या बात है। हाँ जी, ये तो आपने मुझे काफी बारी बताया है कि जब भी हम कॉल लगाते हैं फिर मुरादाबाद में तो बारिश जमा जमा होती रहती है ना? जी बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरा पागल जिया ना माने, ओ मेरी बेटा पियों को न जाने, नींद चुरा के ले गए सपने साजन की।
0: अरे वाह बहुत खूबसूरत, सुनवाते हैं गाना, आप एंजॉय कीजिएगा। हाँ जी सर, अच्छा कुछ लाइनें कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहिएगा।
1: परछाई आपकी हमारे दिल में, यादें आपकी हमारे आँखों में, कैसे भुलाएं हम बहना जी आपको, आपका प्यार हमारी सांसों में।
0: अरे वाह बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं आप। थैंक यू सो मच, आप एफएम मुरादाबाद से और सभी प्रेजेंटर से इतना प्यार करते हैं उसके लिए दिल से शुक्रिया।
1: दोस्तों को भी याद करेंगे बहन?
0: जी जी बिल्कुल, बताइएगा अपने दोस्तों के नाम।
1: हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप के श्री गौतम राय भोले जी, लोकन वर्मा जी हैं, टिकचंद रघवाल जी हैं, सतीश रघुवंशी जी हैं, राजन गंगवाल जी हैं, राहुल पाल जी हैं और हमारे दिलीप पहुजा जी हैं।
0: ठीक है, आपके सभी मित्रों के साथ सुनवाते हैं गाना आपको। आपने हमें कॉल किया, धन्यवाद सर।
1: पूनम बहन कानपुर से आपको बहुत याद करती हैं बहन।
0: हाँ जी, उनको बोलिएगा पूनम जी को कि वो हमें कॉल करें।
1: जी बहन
0: जी, तो चलिए व्यूअर्स सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर मैं आती हूँ वापस। तब तक आप भी हमें कॉल लगाइएगा और सुनिएगा ये प्यारा सा गाना।

0: हेलो गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुनाई शानदार सा ट्रैक मेरा पागल जिया ना माने, बहुत ही सुंदर गाना आपने सुना। अलका यानी जी साथ में कुमार सानू जी की आवाज। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, वो भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार,
0: आप मुझे सुन पा रहे हैं? सो हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो, लगता है सर को हमारी आवाज नहीं आ रही है। एंड शायद नेटवर्क इशू भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिटीज़ में आज मौसम जो है ना वो चेंज हुआ है। कहीं बादल हो आ रहे हैं, तो कहीं हवाएं चल रही हैं, तो कहीं बारिश भी हो रही है। और दोस्तों, सर ने गाने की रिक्वेस्ट हमें यहाँ पर की थी, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, बहुत ही खूबसूरत गाना फ्रॉम द मूवी नदिया के पार। तो चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत, लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: हाय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। खुशी आपके साथ है और ये आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6। मैं आपके साथ आपकी खुशी। वक्त हुआ है स्टूडियो की घड़ी में 4:30 और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे बात करते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताइएगा।
1: जी मैम, मैं विकास श्रीवास्तव, ग्राम ऐचोरा, तहसील मिलक, जिला रामपुर से बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा सर, कैसे हैं आप?
1: जी मैम, हम तो बढ़िया हैं मैम, आप बताओ कैसी हो?
0: जी मैं भी ठीक हूँ, आप बताइएगा क्या करते हैं सर?
1: जी मैम, सिलाई का काम करता हूँ।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं आप, तो आप लेडीज ड्रेस सिलते हैं या फिर जेंट्स?
1: जी मैम, जेंट्स सिलते हैं हम तो।
0: अच्छा अच्छा, ओके। पैंट शर्ट कोट पैंट ये?
1: जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइएगा आज आप हमारे शो में जुड़े हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप सर?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है बरसात।
0: हाँ
1: जी। गाने के बोले इसमें पल की थी जुदाई।
0: ओके, तो ये गाना हम आपको सुनवाते हैं। हाँ जी बताइएगा अपने दोस्तों के नाम।
1: शकार मंसूरी, टॉपिंग मंसूरी, शबूर भाई मंसूरी।
0: ओके सर, ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ ही गाने एंजॉय कीजिएगा। आपने हमें कॉल किया उसके लिए थैंक यू। तो चलिए व्यूअर्स, सुनते हैं ये अमेजिंग ट्रैक, लौट कर आते हैं हम। तब तक आप भी कॉल लगाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।

0: दोस्तों मैं जानती हूँ आपका सफर सुहाना बन रहा है क्योंकि गाने इतने प्यारे प्यारे यहाँ पर जो चल रहे हैं, तभी तो मैं कहती हूँ कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कॉल लगा सकते हैं और अपना फेवरेट गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है आप सुनना चाहते हैं तो बस सुन सकते हैं। उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा, अपने ऑफिशियल नंबर पे, हमारे ऑफिशियल नंबर पे आपको कॉल करना है अपने मोबाइल से। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले फरमाइशकर्ता जी के साथ। हेलो फरमाइश। आपको भी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जिला गुना एमपी तहसील मधुसूदनगढ़ ग्राम सीताकड़ी से अमर सिंह साहू बोल रहा हूँ मैम।
0: जी बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: अच्छे मैम, और आप कैसे हो मैम?
0: मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ सर। बताइएगा आप हमारे साथ जुड़े हैं, क्या फरमाइश है आपकी?
1: और वहाँ का मौसम कैसा है अभी मुरादाबाद का?
0: हमारे यहाँ का मौसम धूप भी है बादल भी है।
1: जी मैम, जी मैम,
0: जी आप बताइएगा सर क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: सब कुशल मंगल से है ना?
0: हाँ जी, हाँ जी, सब कुशल मंगल है। आप बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं?
1: मूवी का नाम हम आपके कौन और गाने के बोले दीदी तेरा देवर दीवाना।
0: ओके चलिए सुनवाते हैं गाना।
1: आपकी
0: सर की आवाज़ ब्रेक हो गई है एंड नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, तो ये नेटवर्क भी जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है। तो आप नेटवर्क में आ जाइए अगर आप कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, ताकि आपकी आवाज़ प्रॉपरली मुझे मिल पाए। एंड जब आपकी आवाज़ मिल पाएगी तभी तो बात अच्छे से हो पाएगी ना एवरीवन। सुनिएगा ये प्यारा सा गाना दीदी तेरा देवर दीवाना।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेस मेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार, सोना कितना महंगा हो गया है। काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार, मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: कोई मिल गया,
4: कोई मिल गया।
0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हाय एवरीवन, गुड इवनिंग माय डियर लिसनर्स, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने एंजॉय किया ब्यूटीफुल ट्रैक फ्रॉम द मूवी हम आपके हैं कौन। और ये ट्रैक ऐसा है कि कोई भी मतलब घर में जैसे शादी वाला फंक्शन हो और घर में ये गाना ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इस गाने में ना एक नोक झोंक है, बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता है देवर भाभी का। और मतलब जब शादी वाला माहौल होता है ना घर में, तो ये चीज़ें मतलब खूबसूरत लगती हैं, माहौल को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना देती हैं। वैसे अभी हम अपने शो को ब्यूटीफुल बनाते हैं अगले कॉलर से बातचीत करके। हेलो फरमाइश।
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: कब तक हमसे रूठेगी तकदीर देख लेंगे, कब तक पड़ेगी पाप देंगे, अगर बंद हो जाए आंखें हमारी, हम बंद आंखों से भी आपकी तस्वीर देख लेंगे। मैम मंसूरी क्लब ग्राम है चोरा तहसील मलक जिला रामपुर से शकावत मंसूरी बात कर रहा हूँ
0: जी। आपकी शायरी बहुत ही खूबसूरत है सर, बताइएगा कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, आप सुनाइए।
0: हम भी ठीक है सर, बताइएगा क्या फरमाइश है आज आपकी?
1: जी मैम, फरमाइश है फिल्म का नाम है दिल, गाने के बोल हैं ओ प्रिया प्रिया, मैम कुछ दोस्त हैं
0: जी, बताइएगा
1: जी। छोटा भाई तालिम मंसूरी, तौफीक मंसूरी, शकूर भाई मंसूरी, विकास श्रीवास्तव, लहीक मंसूरी,
0: ओके,
1: और सहनूर अंसारी जी हैं।
0: ये आपके पीछे पीछे कौन आपको गाइड कर रहे हैं?
1: जी दोस्त हैं मैम।
0: हाँ वही आपको पीछे पीछे नाम बता रहे हैं ना?
1: जी जी जी।
0: चलिए सुनवाते हैं गाना, थैंक यू कॉल करने के लिए सर। तो एवरीवन, ऐसे भी दोस्त होते हैं जो पीछे पीछे गाइड करते हैं, अरे ये नहीं ये वाला गाना सुनना है आपको। तो दोस्ती का रिश्ता भी बहुत खूबसूरत होता है और ऐसे दोस्त बहुत कम होते हैं। और आपके पास अगर ऐसे दोस्त हैं तो उनको संभाल कर रखो और बाकी पहला से गाना सुनो। मैं लौट कर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा।

0: 그래가네요.
1: 왜 그래요?
2: 안 해봐도?
3: 이제 고백. 익장.

हाई एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम है आपका एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और मेरे अब जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अभी आपने ये अमेजिंग ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया। और ये अमेजिंग ट्रैक आपने सुनकर गाड़ियों में जो म्यूजिक का वॉल्यूम है ना, वो हाई कर लिया था। चलिए, अच्छी बात है, अपने सफर को ऐसे ही खूबसूरत बनाइए और आराम से अपने घर जाइए। और फिलहाल मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे संडे मॉर्निंग। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और कीप स्माइलिंग एवरीवन। मुस्कुराना बहुत जरूरी है, ये स्माइल कोई पैसों से नहीं मिलती है ना, फ्री की है। तो मुस्कुराने में क्या जा रहा है, क्यों इतनी कंजूसी करते हो, चलो मुस्कुराओ। और सुनते रहो एफएम मुरादाबाद। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।

0: 0.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ग्रेटर नोएडा में आज उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था, अनुकूल औद्योगिक नीतियों और सक्रिय शासन की मदद से आज उत्तर प्रदेश में आकर्षक निवेश वातावरण बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियरा के साथ पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। तीनों नेताओं ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अवसर पर IBSA संवाद मंच की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यवहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त तरक्की हुई है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के विद्यार्थियों के एक समूह से मुलाकात की। वे राष्ट्रीय एकता यात्रा के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन आए थे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज उपराष्ट्रपति भवन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रमुख विचारक और समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पुणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन की शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। शोभा यात्राओं को देखने और गणपति के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हैं। शहर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एशियाई खेलों में भारत के कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में आज स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की भारतीय टीम ने रजत पदक जीता। मानु शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत 2 स्वर्ण, 8 रजत और 11 कांस्य समेत 21 पदकों के साथ 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद।
2: हे, यू आर ट्यून्ड इनटू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। आवाज दो हमको, उदित नारायण जी की आवाज में और अलका याग्निक जी की आवाज में। फिलहाल आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 12 मिनट हो चुके हैं। इवनिंग मस्ती की शुरुआत यानी कि इवनिंग मस्ती शो की शुरुआत हो गई है, और आपका ध्यान थोड़ा इधर उधर डगमगा रहा है ना, तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत डगमगाइए, बस अब फोकस होना चाहिए आपको अपने शहर का रेडियो यानी कि सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 पर, क्योंकि अब बातें ढेर सारी होंगी, क्योंकि और आज की तारीख 25 सितंबर है और आज बहुत ही स्पेशल बहुत ही खास डेज मनाए जाते हैं। जो बच्चे डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही खास कि मैं बोलूँ इसके ऊपर टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, और हमारे साथ आज सर भी कनेक्ट होने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, तो उनसे भी बहुत सारी बातें करेंगे। जो बच्चे मेडिकल से हैं, फार्मासिस्ट डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं, तो वो इस शो को ज़रूर इंजॉय करें और जाने कि आप अपने करियर को और आगे कैसे ग्रो कर सकती हैं और क्या करना है। क्योंकि हम एक्चुअली ये होता है कि हम कर तो लेते हैं, ये सब्जेक्ट ले भी लेते हैं, लेकिन बाद में जब हमें कुछ काम नहीं मिलता है तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन जो डी फार्मा बी फार्मा होते हैं ना, उन जो करते हैं बच्चे, उनको दिल से सैल्यूट है, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ाई करना और उस चीज़ को फील करना और उस चीज़ में आगे ग्रो करना बहुत टफ होता है, जिसमें से आप सब इतना मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। सो, आज का डे बहुत ही स्पेशल है। देश दुनिया के बारे में बात करेंगे, लोकल के बारे में बात करेंगे, और आज फाइनली गणेश जी का विसर्जन हो गया है, वो अपने घर पधार चुके हैं, और ये मैं सोचिए कि वो हमारे साथ ही रहते हैं। जब भी आप उनको दिल से पुकारेंगे वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे, चाय के चुस्कियों के साथ इस शाम को और भी मज़ेदार बनाइए मेरे साथ, करेंगे हम यहाँ ढेर सारी बातें। और सड़कों पर जो भीड़ चल रही है ना भैया, उसको भी ध्यान रखिए, और फिलहाल आप कहीं ट्रैफिक में हैं तो आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, नंबर है 9823789689 पर। फिलहाल आज का वेदर बहुत ही शानदार है, यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मुरादाबाद का, तो ऑलमोस्ट हर चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक गाना सुनते हैं बहुत ही शानदार वाला, इस गाने को सुनते ही आपको बहुत ही मज़ा आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है, वो भी सुनते हैं, और उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ श्रोताओं। Hey, you're
1: tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM। क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,

हम आपके है कौन मूवी से आपने गाना एंजॉय किया है लता मंगेशकर जी की आवाज में, ये मौसम का जादू है मितवा, क्या बात है जी, ऐसे ऐसे गाने सुनने को मिल जाए ना तो सच बताऊं शाम और भी शानदार हो जाती है। और आप फिलहाल आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, समय की अगर मैं बात करूं तो 5:20 हो चुके हैं इवनिंग मस्ती शो में। और आज राइट यानी कि 6 हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सर कनेक्ट होने वाले हैं। आज का जो डे है, क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, तो उस टॉपिक पर हम सर से बात करेंगे, खूब ढेर सारी बातें करेंगे, तो आप ज़रूर कनेक्ट रहिए। और साथ ही साथ अभी अगर मैं बात करूँ तो मौसम यानी कि वेदर अपडेट, वेदर ये कहता है भैया कि कल शनिवार और परसों संडे यानी कि संडे और सैटरडे को बारिश बताई जा रही है, जमकर बारिश आने वाली है मुरादाबाद में। आज वैसे ही आपको मौसम देखकर ही पता लग गया होगा क्योंकि आज मुरादाबाद का जो टेम्परेचर है 29°C टेम्परेचर है, लेकिन कल और परसों बारिश की संभावना जताई जा रही है कि पूरी पूरी संभावना है बारिश आने की। और सच बताओ तो अब वेदर ना चेंज हो गया है, सुबह के टाइम में दोपहर तक कुछ और वेदर रहता है और जैसे शाम होती है ना ठंडी ठंडी शीतलहर वाली हवाएं चलने लग जाती हैं। इससे पता चलता है कि मौसम ने अब करवटें ले ली है, तो आप भी जो अपना रूटीन है उसको ठीक रखिए। और साथ ही साथ अगर आप बाहर जाते हैं, शाम के वक्त बाहर जाते हैं, तो फुल स्लीव के कपड़े ज़रूर पहनिए, मच्छरों से कोशिश करिए कि आप बचें। और साथ ही साथ आज मुरादाबाद के आसपास इलाके में भी बहुत बारिश हो रही है, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप सोचेंगे कि वाओ बारिश हो रही है तो हम गीले हो लेते हैं या फिर नहा लेते हैं, तो आप गलत इस टाइम, क्योंकि अगर आप इस मौसम में अगर नहाते हैं, बारिश आती है, गीले भी हो जाते हैं इनफैक्ट, तो आपको कोल्ड होने की पूरी संभावना है, जुकाम खांसी होंगे साथ ही साथ। तो आप भीगे ना, गीले ना होए, अगर इन गीले हो भी जाते हैं, आप बाहर जा रहे हैं, कुछ आपके पास नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप जल्दी घर पर पहुँचे और अपने जो कपड़े हैं वो चेंज करें ताकि आपको कोल्ड ना होए और आप आसानी से बच सके, क्योंकि आता मौसम जाता मौसम इंसान को बीमार करके ही जाता है, इसीलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और बात करेंगे इसके बाद यानी कि ट्रैफिक अपडेट के बारे में भी हम बात करने वाले, और बहुत से डेज आज मनाए जाएंगे और लोकल फॉर वोकल के बात करने वाले हैं। तो आर्जेरीना के साथ कनेक्ट रहिए और यूं ही सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल एक और बहुत शानदार वाला हम गाना सुनते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती

हूँ और क्या करेंगे जी, अरे समझ जाए करिए आप, मतलब ढेर सारी बातें करेंगे और क्या करेंगे जी। तो फिलहाल आज मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, अभी से ही मैं एक रिवील कर देती हूँ आप सभी के लिए, मतलब पूछ लेती हूँ कि देखिए शाम के टाइम ना, अगर सोचिए कि आपके आसपास प्यारा सा झील हो और फिर आप क्या करते हैं? शाम होते ही प्यारे से झील के पास जाकर बैठते, सुकून की अनुभूति करते, तो किसके साथ आप जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, बैठने के लिए? बिल्कुल आप मैसेज करके बता सकते हैं, हमारा नंबर है 9823789689 और साथ ही साथ साथ अजूबे पार्क अगर आप घूमना चाहते हैं तो हम आपके लिए कड़क सवाल लेकर आने वाले हैं 6:30 बजे के समथिंग। तो आप अगर राइट आंसर देते हैं तो आपको मिलता है यहाँ से कार्ड, और उस कार्ड के माध्यम से आप 7 अजूबे पार्क में घूम सकते हैं, वहाँ का वेदर देख सकते हैं, वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। 7 अजूबे पार्क यानी कि एक ही जगह आपको 7 वैरायटी का आपको आनंद मिलेगा देखने का। तो आप ज़रूर कनेक्ट रहिए और सवाल का आंसर देने के लिए भी रेडी रहिए। फिलहाल के लिए गाना प्ले करते हैं आप सभी के लिए।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान, एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। आज रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हूँ, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और हम आप सभी के साथ, यानी कि समय की बात करूँ तो 5:33 हो चुके हैं।

0: श्रोताओं, फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मूवी की बात कर लेते हैं। तो आज की तारीख आपको पता है ना, 25 सितंबर है और 25 सितंबर को रिलीज हो गई है द वन मूवी, यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की ये मूवी है जो कि बेहद शानदार बताई जा रही है। अगर आपने इस मूवी की ट्रेलर अगर अभी तक नहीं देखी है तो एक बार मूवी देखने जाने से पहले मुझे लगता है कि उस मूवी के बारे में पढ़ना और ट्रेलर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रेलर नहीं देखेंगे ना, आपके अंदर वो क्रेज़ नहीं आएगी कि भाई मुझे ये मूवी देखने ही जाना है, आखिरकार इस मूवी में क्या चल रहा है क्या नहीं है। और साथ ही साथ इस मूवी में पावन छठ पूजा के बारे में भी सीन दिखाया गया है जो कि बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। तो अब जो छठ पूजा है वो सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, बॉलीवुड की गलियों तक हर देश दुनिया में अब गूंज रही है छठी मैया की जय जयकार। तो इस मूवी को जरूर देख कर आइए, और जिन्होंने ये मूवी देख ली है तो वेल डन है। आप जरूर मैसेज करके बता सकते हैं कि ये मूवी आपको कैसी लगी। वेल, अगर आप जाना चाहते तो बिल्कुल डेफिनेटली जाइए, क्योंकि ऐसी धार्मिक मूवी देखनी चाहिए, मुझे ये लगता है। रोमानंस की बात करूँ तो भैया बहुत धमाकेदार वाली मूवी है, यानी कि थिएटर से वो हटने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि जब भी आप कब एट ए टाइम कभी चले जाइए देखने के लिए, एक भी सीट आपको खाली मिलेगा ही नहीं, भरपूर मात्रा में फुल ऑफ ऑन है। फुल होने के बाद भी कह रहे कि नहीं भैया मुझे जाना है मूवी, मूवी देखना है, चाहे नीचे बैठ के देखो लेकिन मुझे भेज दो। तो ऐसी ऐसी जब मूवी आएंगी ना, तो देखिए मुझे लगता है कि एक मूवी ना दो दो तीन तीन महीने थिएटर में लगी रहेंगी क्योंकि उसकी डिमांडें ना बढ़ती जाती हैं। और इसी के साथ हम एक और बात करने वाले हैं, यानी कि बात करेंगे वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में, क्योंकि सीएमओ ऑफिस की तरफ से भी एक मैसेज है हमारे पास, वो भी आपके सामने हम रखेंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल के लिए एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद कनेक्ट होते हैं, ठीक है जी।
1: Come on, man. Excellent.

0: ये हिंदुस्तान
1: है। योर ट्यून इन टू FM मुरादाबाद 89.6 FM।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है अर्जुरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं तो 5:00 यानी कि 45 मिनट हो चुके हैं और आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज है 25 सितंबर। और आज एक ऐसा दिन बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जब भी सेहत की बात याद आती है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डॉक्टर और साथ ही साथ एक और शख्स जिनकी भूमिका बेहद खास होती है, वो है हमारे फार्मासिस्ट, यानी कि दवा कौन सी है, कितनी मात्रा में लेनी है और उसे कैसे सुरक्षित रखना है और दवा से जुड़ी जरूरी सावधानियां क्या है, इन सब में फार्मासिस्ट की हमारी बहुत और बेहद मदद होती है क्योंकि इनकी वजह से हर दवा नामुमकिन है। तो इस महत्वपूर्ण भूमिका को सम्मान देने के लिए हर साल यानी कि 25 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, यानी कि इस साल की थीम है एम्पावरिंग फार्मासिस्ट फॉर हेल्थ फ्यूचर्स, यानी कि स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्ट को सशक्त बनाना है। और इसी खास मौके पर सीएमओ और सीएमएसडी मुरादाबाद के कार्यकर्ता श्री अंकुर चौहान जी की ओर से सभी फार्मासिस्ट साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आइए आज एक और दिन, हम इस दिन को बेहद अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और फार्मासिस्ट को दिल से धन्यवाद कहते हैं और हमारी स्वास्थ्य सेवा और मजबूत बनाने के लिए उनका अनेक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनेक योगदान देते हैं, तो उनको दिल से सैल्यूट है, दिल से सलाम है, क्योंकि वो उनकी वजह से ही हमारे घर में दवा आती है। क्योंकि हर एक चीज कितनी मात्रा में हमें दवा लेनी है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है, हर चीज के बारे में वो बताते हैं। और मैं तो सच बताऊं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट है मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि इतना स्टडी करना होता है, हर चीज के बारे में डीपली पढ़ना होता है, तब जाकर वो यहाँ तक पहुँचते हैं। तो दिल से सैल्यूट है। और जितने भी बच्चे डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं उनको आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के मौके पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, सीएमओ ऑफिस से भी और सीएमएसडी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत और रेडियो की टीम की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भी हम ढेर सारी बातें करते रहेंगे, बस यूं ही आर्जरीना के साथ कनेक्ट रहिए, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया ही था कि आज करेक्ट 6:00 हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सर कनेक्ट होने वाले हैं, जिसे हम वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के बारे में ही बात करेंगे। तो आप कनेक्ट रहिए और उनकी बातें ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम दवा तो ले आते हैं अपने घर, लेकिन हमें खुद नहीं पता होता है कि कितने किस टेम्परेचर में उसको रखना है, कैसे घर में रखना है, तो उस चीज के बारे में भी हम बात करेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक लेती है और उसके बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट होती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है। श्री मोदी ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वडनगर ने उन्हें जीवन को दिशा देने वाले संस्कार दिए, जबकि काशी ने उन संस्कारों में सेवा के अनगिनत रंग जोड़े। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि युवा भी सेवा के विभिन्न रंगों के साथ इस यात्रा को समृद्ध कर रहे हैं।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधि

0: और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। इसमें स्कूली विद्यार्थियों, आईटीआई प्रशिक्षुओं, पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों तथा कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कर्नाटक से मालदीव के लिए जीआई टैग वाली गुलबर्गा तुअर दाल की 1 मीट्रिक टन खेप को रवाना किया है। इस पहल का उद्देश्य भारत के जीआई टैग वाले कृषि उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना है। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 11 कांस्य समेत 22 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad, 89.6 FM.
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा?
5: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
6: राष्ट्र सेवा मंत्र को जी
7: मुरादाबाद। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी, क्योंकि आज का डे हमारे लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। अब ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज है 25 सितंबर, यानी आज का दिन उन लोगों के नाम जो दवाइयों की सही जानकारी देकर हमारी सेहत की राह को थोड़ा और आसान बना देते हैं। जी हाँ, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे एक ऐसा दिन जो फार्मासिस्ट की अहम भूमिका और स्वास्थ्य सेवाओं में अनेक योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। सो आज इस खास मौके पर हमारे साथ कनेक्ट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से चीफ फार्मासिस्ट श्री संदीप बडोला जी। सर, तो सर मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी। तो सर मैं आपके बारे में ही आपसे ही जानना चाहती हूँ।
8: देखिए, मैं संदीप बडोला, मैं डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ऑल इंडिया फार्मेसिस्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चेयरमैन हूँ और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मैं वर्तमान में मेंबर भी हूँ। फार्मेसी के क्षेत्र में लगातार एक लंबे समय से काम कर रहा
7: हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी क्योंकि आपके पास इतना समय भी नहीं है, फिर भी आप आम जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना बहुत जरूरी है।
8: हाँ, नहीं, मुझे चूंकि विश्व फार्मेसी दिवस पर पूरे प्रदेश में तमाम जगह कार्यक्रम लगे हैं और मुझे लखनऊ 24-25-26 लगातार मेरे कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो मुझे उन कार्यक्रमों में भागीदारी करने लखनऊ जाता।
9: तो सर हम अपने काम की तरफ बढ़ते आगे कि मेरा पहला क्वेश्चन है सर,
7: वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे
9: यानी कि हर साल 25 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है?
8: देखिए, विश्व फार्मासिस्ट दिवस स्वास्थ्य सुधार और चिकित्सा के क्षेत्र में फार्मासिस्टों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है और 25 सितंबर को मनाए जाने का इसका कारण है कि इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP का गठन 25 सितंबर 1912 में हुआ था। वो 25 सितंबर 1912 अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP का स्थापना दिवस है। सन 2009 में इस्तांबुल में FIP द्वारा अपने इसी स्थापना दिवस को यादगार बनाने के लिए 25 सितंबर को विश्व फार्मेसिस्ट दिवस मनाने की घोषणा की थी कि 25 सितंबर विश्व अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का स्थापना दिवस है। तो इस दिन से सब वर्ष 2009 से पूरे विश्व में इस दिन को विश्व फार्मेसिस्ट दिवस मनाया जाता है।
9: ओके, तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है, दवाई बनाने में
7: फार्मासिस्ट की क्या भूमिका होती है?
8: देखिए, दवाई बनाने में फार्मासिस्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है। दवाई की गुणवत्ता जांचने और मरीजों तक दवाई को सुरक्षित पहुंचाने में फार्मासिस्ट का महत्वपूर्ण योगदान है। नई दवाओं के जैसे फॉर्मुलेशन, किस किस फॉर्मुलेशन से वो दवाई बनती है, उसकी रासायनिक संरचना और उनके प्रभाव का अध्ययन, ये उसका क्या प्रभाव मरीज पर पड़ेगा उसका अध्ययन करना ये फार्मासिस्ट का कार्य है। फार्मासिस्ट ही ये तय करते हैं कि दवाओं में जो विभिन्न रसायन मिले होते हैं उसमें उनका सही अनुपात हो। दवाई बनाने में सही अनुपात हो ताकि वो मरीजों के लिए और सुरक्षित और प्रभावी हो सके। फार्मेसिस्ट दवाओं की शुद्धता, मानक और गुणवत्ता की जांच जो करता है वो फार्मासिस्ट ही करता है। पूरी दवाओं का बनाने से लेकर मरीजों तक पहुंचाने में फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है।
9: मतलब कोई और नहीं बना सकता है इस दवाई?
8: नहीं, दवाई नहीं, दवाई सिर्फ फार्मासिस्ट बना सकता है। वो डी फार्म हो, डिप्लोमा होल्डर हो, बैचलर हो, मास्टर हो, फार्म डी वाय हो, PhD हो, तो फार्मेसी से रिलेटेड व्यक्ति जो वहाँ पर जो केमिस्ट होगा।
9: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, दवाइयों को किस तापमान पर रखना चाहिए, ये कैसे तय होता है?
8: देखिये, दवाओं को भिन्न भिन्न तापमान पर रखा जाता है। जैसे मोस्टली हमारी जितने टैबलेट, कैप्सूल और सिरप होते हैं ये 15 से 30 डिग्री के टेम्परेचर, मोस्टली 15 से 25 मैक्सिमम 30 डिग्री के टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। अब कुछ हमारे इंजेक्टेबल हैं, इंसुलिन भी हैं, उसमें वैक्सीन है, इनको 2-8 डिग्री के टेम्परेचर पर रखे जाते हैं। और दवाओं में विशेष रूप से ये एक नॉर्मल जैसे घर पर हम दवाएं रखते हैं तो उनको हमको धूप से बचा कर रखना होगा, हम उनको ठंडे स्थान पर जो हमारा कूल प्लेस हो, जहां धूप नहीं जाती हो, रोशनी नहीं जाती हो, जहां नमी ना हो, सीलन ना हो, तो बेसिकली ऐसे स्थानों पर दवाई को रखा जाना जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता बरकरार।
9: क्योंकि अक्सर हम हॉस्पिटल से जो दवाइयां मिलती हैं हम घर पर ले जाके ऐसे ही रख देते हैं।
8: नहीं, वो दवाई देखिए मोस्टली हर दवाई के रैपर पर किस टेम्परेचर पर मेंटेन रखी जाएगी उस दवाई के रेफर पर लिखा होता है। और मोस्टली मैंने कहा कि टेबलेट, कैप्सूल्स और सीरप ये 15 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर सुरक्षित रहती हैं उनको घर पर भी जहां हम दवाई रखें तो वो स्थान हमें ये देखना चाहिए कि वहां धूप ना जाती हो और रोशनी ज्यादा ना जाती हो, तो इस तरह से घर पर उसको रखना चाहिए। और जिस दवा पर लिखा हो कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर, तो उसे हम फ्रिज में निचले स्थान पर फ्रिज में उसको हम दवाई को सुरक्षित कर सकते हैं।
9: क्या सर हर दवाई फ्रिज में रखना जरूरी है?
8: नहीं, हर दवाई फ्रिज में रखना जरूरी नहीं, हर दवाई मैंने बताया 15 से मोस्टली दवाइयाँ 15 से 30 डिग्री के टेम्परेचर पर रखी जाती है। दवाओं में स्पष्ट रूप से लिखा होता है, कुछ ही दवाइयाँ हैं इंजेक्शन, जैसे वैक्सीन है, इंसुलिन का इंजेक्शन है, उस तरह की दवाइयाँ हम 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर रखती है। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो माइनस डिग्री पर रखी जाती हैं, वो रेयर दवाई।
9: और सर दवाई की एक्सपायरी डेट कैसे तय की जाती है?
8: देखिए, दवाई की एक्सपायरी डेट तय करने के लिए स्टेबिलिटी टेस्ट होता है, उस टेस्ट से पता चलता है कि कितने समय के बाद दवा का केमिकल जो कंपोजिशन है वो कितने समय तक अपनी मूल गुणवत्ता को बरकरार रख सकता है, या 90% से अधिक उसकी क्षमता रह सकती है। मेन उसकी एक्सपायरी डेट का सिर्फ यही कि उसका स्टेबिलिटी टेस्ट होता है। स्टेबिलिटी टेस्ट में उस दवा का कि वो कब तक अपनी गुणवत्ता उसकी बनी रहेगी, कितने समय तक, उस स्टेबिलिटी टेस्ट के माध्यम से उसकी एक्सपायरी डेट तय की जाती है।
9: ओके, दवाई के स्ट्रिप और बैच नंबर जो होता है सर, वो क्यों लिखा जाता है?
8: देखिए, दवाई के बैच नंबर का मतलब है कि हम एक बार में जो दवाई बना रहे हैं तो उस बैच नंबर से उस दवा का इतिहास हमको पता चलता है कि वो दवा हम कब बन रही है, उसका कंपोजिशन क्या है, ये पूरा इतिहास उसमें दर्ज हो जाता है। और एक विशेष रूप से असली और नकली दवा की पहचान भी बैच नंबर से होती है।
9: हाँ,
8: जैसे किसी दवा का, कोई दवा अपने सैंपल में उसका एनालिसिस टेस्ट में अगर वो फेल हो जाती है तो ऐसा नहीं कि वो पूरी दवा उसमें जो बन रही है उस पूरी दवा को, उस बैच नंबर की, जो दवा बैच नंबर की, तो उसी दवा को वहां से हटाते हैं। तो ये उस मतलब उसके इतिहास को, उस दवा को हम आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद उस दवा को ट्रैक कैसे करेंगे, तो उस बैच नंबर से उस मतलब वो इसका इतिहास उस बैच नंबर में दर्ज है, ये समझ लीजिए।
9: ओके, मतलब कोई भी अगर काफी टाइम से मेडिसिन अपने घर में रखता है तो एक बार मुझे लगता है कि नंबर जरूर चेक कर लेना चाहिए। सर अगला हमारा क्वेश्चन होगा, जेनेरिक और ब्रांड दवाई में क्या अंतर होता है?
8: देखिए, जेनेरिक दवाई अपने, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेनेरिक दवाई और ब्रांडेड दवाइयों में उनका जो सॉल्ट है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। जेनरिक दवाई अपने सॉल्ट जो उसमें है, जो दवा बनी है उस दवा में क्या सॉल्ट है, तो उस सॉल्ट के नाम से जेनरिक दवाई पहचानी जाती है, इसको मूल सॉल्ट जो है उसके सॉल्ट के नाम से जेनरिक दवाई पहचानी जाती है। जबकि जो ब्रांडेड दवाई है, ब्रांडेड दवाई कोई खास कंपनी, कोई विशेष कंपनी अपने किसी विशेष ट्रेडमार्क नाम से उस दवाई को मार्केट में लाते हैं। कोई विशेष कंपनी अपने विशेष ट्रेड नाम से किसी भी सॉल्ट को जो है, दवाई को अपना विशेष नाम दे देते हैं, उसको ब्रांडेड किया जाता, कहा दिया जाता है। ब्रांडेड दवाई थोड़ा जेनरिक दवाई से महंगी होती है।
9: ओके,
8: ब्रांडेड दवाई क्योंकि विशिष्ट कंपनी ने विशिष्ट नाम से उसको किया है, तो वो उसका एडवर्टाइज में, उसको प्रचार में और काफी पैसा खर्च करते हैं, और कभी कभी ये कीमत 10-10 गुना होती है जो जेनरिक दवाई की कीमत में। और जबकि दवाओं में प्रभाव में ऐसा नहीं है कि ब्रांडेड दवाई असर करेगी और जेनरिक दवाई असर नहीं करेगी, सॉल्ट दोनों में वही है, दवाई बनाने की प्रक्रिया वही है, लेकिन कुछ कंपनियां अपने विशिष्ट नाम से उसको ब्रांडेड नाम दे देती हैं और उसका प्रचार करती हैं।
9: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, महंगी दवाई क्या हमेशा ज्यादा असरदार होता है या फिर सस्ती दवाई? क्योंकि अक्सर हम देखिए सर हॉस्पिटल में जाते हैं और हमें पर्ची पे लिख दिया जाता है कि ये दवाई आपने हॉस्पिटल से लेनी है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि हम गलती करते हैं और बाहर से जाकर सस्ती दवाई ले लेते हैं।
8: नहीं, ये मैंने कहा ब्रांडेड दवाई, कोई कंपनी अपनी दवाई बना रही है अपने ब्रांड नेम से, विशिष्ट नेम से बना रही है, तो उसके प्रचार में, उसके एडवर्टाइज में, उसको मतलब मरीज तक पहुंचाने में विभिन्न माध्यमों में बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं। और एक जेनरिक दवाई है, जेनरिक दवाई में कोई प्रचार नहीं करना पड़ता। जेनरिक दवाई में आपका पैरासिटामोल टेबलेट है तो उसमें पैरासिटामोल है, आप बाजार में पैरासिटामोल के नाम से लेंगे और पैरासिटामोल के अलावा और विभिन्न नामों से वो मार्केट में दवाई मिल जाएगी, कालपोल जाएगी, कालपोल आपको महंगी मिल जाएगी, तो इस तरह से तमाम वो अभी जन औषधि जो प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी द्वारा जो जन औषधि के खुले गए हैं हिंदुस्तान के विभिन्न शहरों में, उन जन औषधि में जेनरिक दवाई, अब वो जेनरिक दवाई लाभदायक है, सरकारी चिकित्सालयों में जो दवाई मिलेगी ऐसा नहीं है कि वो लाभदायक नहीं, वो दवाई भी उसी प्रक्रिया सेम उसी प्रक्रिया के तहत बनी है जिस तहत प्रक्रिया के तहत ब्रांडेड दवाई बनी है। तो चूंकि उनको उसका प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जेनरिक से अपने मूल नाम से है, और ब्रांडेड दवाई को नाम से, क्योंकि एक दवाई हजारों कंपनियां अलग अलग नाम से बना रही है। एक पैरासिटामोल टेबलेट है, पैरासिटामोल टेबलेट को हजारों कंपनियां अपने अपना अपना नाम देके बना रही है, और उसको फिर उनको जो है उसकी सेल के लिए उनको भरपूर उसको प्रचार करना पड़ता है, भरपूर इम्प्लॉइज रखने पड़ते हैं, उसका मार्केटिंग उनको करनी पड़ता है।

0: भोजन है, पेट में अगर भोजन है तो वो दवाइयाँ सही तरीके से खून में नहीं मिल पाती, खून के साथ नहीं मिल पाती हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जो खाली पेट, अगर हम हमारा पेट खाली है तो वो वहाँ जाकर एसिडिटी और जलन वगैरह पैदा करती हैं। तो इसलिए दवाओं का, जैसे आप पेन किलर लेंगे तो पेन किलर हमेशा आपको एडवाइस किया जाएगा कि पेन किलर जो है आप खाली पेट ना लें, जब आपके पेट में भोजन हो तब आप लें। तो वो एब्जॉर्प्शन, दवाई का एब्जॉर्प्शन शरीर में सही तरीके से हो इसलिए उसको निर्धारण किया जाता है कि ये खाली पेट ली जाएगी या खाना खाने के।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों और बड़ों की दवाई की डोज अलग क्यों होती
0: है? दवाई तो इसलिए होती है कि दवाई जो दी जाती है, जो दवाई असर करेगी, कोई भी दवाई है तो वो बॉडी वेट पर डिपेंड करती है। ये दवाई इस बीमारी में इतने mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से उसको कैलकुलेशन किया जाता है कि इस वेट पर दवाई की इतनी मात्रा दी जाए। तो छोटे बच्चों को मात्रा कम हो जाती है, और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, वेट बढ़ता है, तो उस दवाई की डोज उस हिसाब से कैलकुलेट करती है।
1: एंटीबायोटिक दवाइयाँ वायरल बीमारी में क्यों नहीं ली जाती?
0: देखिए, एंटीबायोटिक दवाइयाँ केवल जो है बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले संक्रमण को मारते, जबकि वायरल जो है वायरस के संक्रमण से होता है, विषाणु के संक्रमण से होता है। अब एंटीबायोटिक वो बैक्टीरिया जीवाणु को मारती है, तो एंटीबायोटिक का रोल वायरल फीवर में है ही नहीं। और अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेने से हमारे, जब हम बिना एंटीबायोटिक की जरूरत हुए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, या हम एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स होने से पहले एंटीबायोटिक को छोड़ देते हैं, तो हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक के अभ्यस्त हो जाते हैं, उनको उनकी आदत पड़ जाती है। तो अब जब वास्तव में हमारे शरीर में बैक्टीरिया का संक्रमण होगा तो हमें वो एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेंगी। तो इसलिए एंटीबायोटिक तो जरूरत पड़ने पर चिकित्सक या आपके जो फार्मासिस्ट हैं उनकी सलाह पर ही एंटीबायोटिक ले। एंटीबायोटिक तो आज के समय में बहुत बड़ा इशू हमारे देश के सामने है कि एंटीबायोटिक के दुरुपयोग को रोकना। निश्चित रूप से एंटीबायोटिक को बिना मेडिकल अफसर के प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में नहीं बेचा जाना चाहिए। हम एक समय, जिस तरह से इस समय समय चल रहा है, जिस तरह से व्यवस्था चल रही है, तो एक समय ऐसा ना आए कि मनुष्य के शरीर में एंटीबायोटिक दवाएं असर करना बंद कर देंगे, और निश्चित रूप से तब वो समय बहुत भयावह होगा। हमको एंटीबायोटिक पूर्ण रूप से जब तक मेडिकल ऑफिसर के, प्रिस्क्रिप्शन चिकित्सक के या किसी फार्मासिस्ट की सलाह के बिना हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए, और जब हम एंटीबायोटिक ले तो उसका पूरा कोर्स नियमित रूप से करें। तो इसलिए वायरल फीवर में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं।
1: सर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हम दवाई लेते हैं उसका एलर्जी, जो दवाई लेने के बाद बॉडी में एलर्जी हो जाता है, तो उस टाइम क्या करना चाहिए इंसान?
0: जी हाँ, कुछ दवाइयाँ कभी कभी मानव के शरीर पर रिएक्शन कर देती है। तो निश्चित रूप से जहाँ भी आप, चाहे वो इंजेक्शन लगवा रहे हैं दवाई, तो उसके लिए एंटी एलर्जिक दवाई, अगर कभी भी ऐसी स्थिति होती है तत्काल उसके लिए एंटी एलर्जी की दवाई दे, और तत्काल नजदीक के जो भी चिकित्सालय है या चिकित्सक है या फार्मेसिस्ट है उनसे अवश्य संपर्क करें। कभी कभी दवाइयाँ मानव के शरीर में विपरीत रिएक्शन कर देती हैं, और इस पर जो है कुछ इनकी एंटीडोट दवाइयाँ आती हैं, जो एंटीडोट दवाइयों को उनको लेना चाहिए।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, नई दवाई बाजार में आने से पहले वैज्ञानिक उसकी जांच कैसे करते हैं?
0: देखिए, कोई भी दवाई मार्केट में आती है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको लैब में भी टेस्ट करते हैं, तो पहले जानवरों पर भी टेस्ट किया जाता है। जानवरों पर टेस्ट करने में अगर वो परीक्षण उनको सही पाया जाता है तो फिर मनुष्य पे भी टेस्ट किया जाता है। मनुष्य में चार चरणों पर उसका टेस्ट किया जाता है। चार चरणों, अगर कोई दवाई जैसे एनिमल्स पर उसका परीक्षण किया गया, वहाँ वो दवाई उसकी गुणवत्ता सही पाई जाती है, दवाई सही पाई जाती है, तो फिर उसे मानव पर करते हैं। चार चरणों में करते हैं, पहले स्टेप पे 80 से 100 मनुष्यों पर की जाती है, फिर 200 से 400 मरीजों पर की जाती है, फिर हजारों मरीजों पर, उसे कई चार स्टेप में उसका परीक्षण करके तब उस दवाई को मार्केट में लाया जाता है।
1: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवाई देना है या इसके अलावा और भी कोई जिम्मेदारी?
0: ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ दवाई देना नहीं है, पूरी प्रक्रिया दवाई के निर्माण से लेकर

0: किसी भी कंपनी में दवा की जो कंपनी है उसमें जो दवाई बना रहा है व्यक्ति वो वहाँ फार्मासिस्ट बन रहा है, उस दवाई में क्या कंपोजिशन होंगे, उस दवाई की डोज क्या निर्धारित की जाएगी, उस दवाओं के क्या दुष्प्रभाव होंगे, वो दवाई किस टेम्परेचर पर रखी जाएगी, ये सारा निर्धारण जो दवा कंपनी में फार्मासिस्ट केमिस्ट बैठे हुए वो करते हैं। उसके बाद दवाई मार्केट में आने के बाद उसके रख रखाव का, जब ये आपने एक दवाई किस तापमान पर रखी जाएगी आपने प्रश्न किया था, तो कोई जो फार्मासिस्ट से अलग व्यक्ति है जो टेक्निकल व्यक्ति नहीं है तो निश्चित रूप से वो उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखा है, और अगर हमने टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा तो उस औषधि की गुणवत्ता समाप्त, वो औषधि अपनी गुणवत्ता वो मरीज को फायदा नहीं करेगी क्योंकि वो अपनी गुणवत्ता खो चुकी है, उसको उचित टेम्परेचर पर रखा ही नहीं है
1: जी।
0: तो ये काम फार्मासिस्ट का है, मरीज को औषधि देते समय उसकी डोज बताना, कौन सी औषधि किस औषधि के साथ लेनी है, कौन सी औषधि किस औषधि के साथ नहीं लेनी है, उसका निर्धारण करना। और अभी आपने जो क्वेश्चन किया था कि दवाई के रिएक्शन
1: जी,
0: जैसे कोई दवाई, बहुत सारी दवाई ऐसी होती है जो लैब से भी अप्रूव होकर आती है, हर दवाई लैब से अप्रूव होती है, लेकिन उसके बावजूद अनेकों दवाई मनुष्य को रिएक्शन करती हैं, उसके शरीर के साथ मैच नहीं हो पाती, तो उसकी रिपोर्टिंग करना ये फार्मासिस्ट का काम है कि हम उसकी ये दवाई है ये इस व्यक्ति को मैच नहीं की, इस व्यक्ति को इस दवाई से रिएक्शन हुआ, हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और उस पर फिर हमारा इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है IPC है वो उस पर रिसर्च करती है और फिर उसके दुष्प्रभावों को देखती है। तो सबसे बहुत महत्वपूर्ण कार्य फार्मासिस्ट का ये भी है कि औषधि का मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको भी वॉच करना है, इसको भी देखना है। तो ये सब काम फार्मासिस्ट है, उसकी रिपोर्टिंग करने का काम एक व्यापक क्षेत्र है कि सीधा समझ लीजिए कि हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 स्पष्ट रूप से कहता है कि जहां दवा वहां फार्मेसिस्ट।
2: सर आपने बहुत ही प्यारी लाइन बोली है, कैची लाइन है ये, दवा तो हर कोई दे सकता है लेकिन दवा की सही जानकारी देने वाला असली साथी फार्मासिस्ट कहलाता है।
0: जहां दवा है, जहां दवा का नाम है, चाहे उसका मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, जहां दवा है वहां जो है फार्मासिस्ट होगा। ये इसलिए फार्मासिस्ट का बहुत व्यापक बहुत महत्वपूर्ण रोल है क्योंकि औषधि मानव के जीवन पर सीधा प्रभाव डालती है, इसलिए जहाँ औषधि होगी वहाँ फार्मेसिस्ट होगा, बहुत व्यापक रोल फार्मेसिस्ट का औषधि का।
1: जो बच्चे डी फार्मा करे बी फार्मा करे उनको एक मैसेज आप देना चाहे? और
0: मैं तो जो हमारे छात्र हैं चाहे वो डी फार्मा हो बी फार्मा हो फार्म डी हो PhD वाले छात्र, मैं फार्मेसी से जुड़े हुए प्रत्येक छात्र से यही कहना चाहूंगा, मैं तमाम कॉलेजों में सम्मेलन में, अभी मैं परसों ही 21 तारीख को इलाहाबाद में एक सेमिनार में गया था जहां तमाम कॉलेज की फैकल्टीज वगैरह वहां थी, अध्यापक वगैरह थे, तो वहां मुझे चीफ गेस्ट वहां आमंत्रित किया था। तो वहां छात्रों को मैं और फैकल्टीज को भी मैं यही संदेश देता हूँ कि हिंदुस्तान में फार्मेसी को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिला। तमाम जो हिंदुस्तान से डेवलप कंट्री हैं, उन डेवलप कंट्री में फार्मेसिस्ट को चिकित्सक के समान ही सम्मान और दर्जा दिया जाता है। हिंदुस्तान में फार्मेसी एक्ट का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है, फार्मेसिस्ट की जो ड्यूटीज हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। तो मैं तमाम छात्रों से यही कहूंगा कि पढ़ाई विशेष रूप से ये बहुत बड़ा समझिए कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, औषधियों का इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इसमें जितना अधिक वो ज्ञान ले सकते हैं, शिक्षा जितनी गुणवत्ता वाली होगी उतना ही उनका ज्ञान होगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है औषधि का, इस पर वो अपना पूर्ण रूप से ध्यान औषधि के बनाने, चूंकि जो उनकी बी फार्मा की जो एजुकेशन है उसमें औषधि के निर्माण की भी पूरी प्रक्रिया बताई जाती है और औषधि के दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं उस सब की स्टडी होती है, तो विशेष रूप से अपनी पढ़ाई पर अपनी शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। और मैं हमेशा जो अध्यापक गण है जब मैं उनकी भी कार्यक्रमों में जाता हूं तो मैं उनसे भी कहता हूं कि फार्मेसी को आगे बढ़ाने का पूर्ण दायित्व जो फार्मेसी कॉलेजों में फार्मेसी की शिक्षा दे रहे हैं जो हमारे अध्यापक हैं, हमारे टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, ये उनका भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है कि वो अपने छात्रों को अपने स्टूडेंट्स को जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनको इतनी अच्छी शिक्षा दें, उनको वास्तविक रूप से जो ज्ञान है उसको दें ताकि हमारे जो छात्र निकले वो इतने एक्सपर्ट होकर निकले कि औषधियों का पूरा ज्ञान उनको, उसकी डोजेज उसके साथ चीजों का ज्ञान उनको हो, उसके साइड इफेक्ट्स उसके इफेक्ट्स उनका उनको ज्ञान हो, तभी हम ये कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम तमाम डेवलप्ड कंट्रियों की तरह हम हिंदुस्तान में भी फार्मेसी अलग अलग।
2: सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, हमें तमाम जनता सुन रही है और तमाम जनता को आप एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहे ताकि वो अपने लाइफ में फॉलो करे, जो गलती करते हैं वो ना करे।
0: प्रशासन के सलाह दवाइयां कहीं से ना लें, क्योंकि ये दवाइयां जितना फायदा करती हैं उतना ही नुकसान भी करती हैं। हर दवाई के साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए किसी भी बीमारी में, चाहे वो बुखार हो, चाहे खांसी हो, चाहे छोटी बीमारी हो, चाहे बड़ी हो, बिना चिकित्सक की सलाह के या बिना फार्मासिस्ट की सलाह के कभी भी दवा का प्रयोग न करें, क्योंकि ये दवाएं अक्सर रिएक्शन कर जाती हैं और उस समय निश्चित रूप से शरीर को हानि पहुंच सकती है। तो मेरा यही संदेश आम जनता से है कि अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और हमेशा हमेशा एजुकेटेड डिग्री वाले डॉक्टर से, फार्मेसिस्ट से, इनसे ही उचित सलाह लेकर दवाइयों का प्रयोग करें।
1: थैंक यू सो मच सर।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
7: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया। तेरा दीदार हुआ आए हाय, मज़ा ही आ गया। और साथ ही साथ सर के साथ बात करके और भी मज़ा आ गया, क्योंकि एक उस चीज़ के बारे में होती है कि हमें नहीं पता होता है, लेकिन एक्चुअल में असली ज्ञान हमें वहीं से मिलता है। तो सर का बहुत बहुत थैंक यू कि हमारे साथ कनेक्ट हुए, और इतना कीमती समय जब रेडियो के साथ शेयर करते हैं, हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बिजी शेड्यूल से टाइम निकालना बहुत भारी होता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ कनेक्ट हुए, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर देखिए, अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं, फिलहाल तो समय की बात करूँ तो 6:00 यानी कि 34 मिनट हो चुके हैं, दूसरे घंटे की शुरुआत बहुत पहले की हो गई है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हर कोई मैच देखने के भैया दीवाने तो होते ही हैं, कुछ भी हो जाए मैच नहीं छोड़ेंगे, मैच तो हम देखेंगे ही देखेंगे। तो आपके पास गोल्डन चांस है। अब ये चांस मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 27 सितंबर से शुरू होने जा रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यानी कि उनके साथ मैच शुरू होने वाला है। तो आप ज़रूर देखिए इस मैच को और इन्जॉय करिए। और जब हमारी टीम इंडिया मैच खेलती है ना, तो भाई सिर्फ वो मैच नहीं खेलती, करोड़ों लोगों का दिल जीतती है, और करोड़ों लोगों का दिल सांस बस वहीं अटका रहता है कि हमारी टीम इंडिया जीत जाए। तो चलिए एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और इसी के साथ मैं लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए कड़क सवाल, कड़क क्वेश्चन। अगर आप 7 अजूबे पार्क में घूमना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली घूम सकते हैं, क्योंकि ये 24 तारीख से लेकर यानी कि 31 सितंबर तक वैलिड रहेगा, उसके बाद आप ये कार्ड लेकर जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जिन जो विनर बन चुके हैं, तो प्लीज़ आप स्टूडियो आइए और अपना कार्ड लेकर जाइए और 7 अजूबे पार्क एंजॉय करिए। आप सोच रहे होंगे कि पार्क कार्ड हम रख लेंगे और 1 तारीख के बाद जाएंगे, तो वैलिड नहीं माना जाएगा वो। इसीलिए जो जो विनर बन चुके हैं, आप आइए स्टूडियो और अपने कार्ड लेकर जाइए। और साथ ही साथ अगर आप भी चाहते कि आज भी मैं आपको मौका मिले, तो मैं आप सभी के लिए क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, तो आप आंसर दीजिएगा और आप विनर बन जाइएगा। तो फिलहाल अभी मैसेज की बात करूँ तो जान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी कनेक्ट होती हैं, प्यारी प्यारी गुड इवनिंग पहुंचाती है, वेरी गुड इवनिंग जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो दीपक जी हमारे साथ मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, गुड इवनिंग पहुँचाते हैं, और इन्होंने कहा कि वर्ल्ड फार्मर्स डे पर आपने जो इंटरव्यू लिया है सर का, सच में बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा लगा। और अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ
1: तू ढंग चाहतों का, मैं जैसे कोई नादानी।
0: कुणाल कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से, और इनका कहने कि मैम मैं डी फार्मा कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी मैं राइट नाउ ऑन द वे हूँ और मैं आपका रेडियो सुन रहा हूँ, और जिस तरीके से आपने इंटरव्यू लिया है, और मुझे पता चला है कि जब मैं फार्मासिस्ट कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है और तभी मैं आगे ग्रो अप कर पाऊँगा। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी अच्छी आप जानकारियाँ लेकर आती हैं, थैंक यू सो मच जी कुणाल जी। ये तो हमारा काम है आप सभी के लिए, हम कुछ कुछ नया लेकर आते रहते हैं। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट मेडिकल से हैं तो मेहनत करिए, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड से हैं और मुझे लगता है कि मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप मेहनत करते रहिए, आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ ज़रूर मिलेगा और आप सक्सेस भी ज़रूर होंगे, क्योंकि हम जब एक चीज़ पर फोकस करते हैं जो हमारा गोल है, तो अचीवमेंट आपको डेफिनेटली मिलती ही मिलती है। चलिए इसी के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम कड़क सवाल लेकर आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये वाला जो गाना है बहुत ही शानदार वाला हम गाना प्ले करने वाले हैं आप सभी के लिए, तो आप इस गाने को एंजॉय करिए और यूं ही सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बचाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और 7 अजूबे पार्क, भैया देखिए अगर फ्री में एंट्री मिल जाए तो कौन नहीं जाना चाहता है, और हम ये नहीं बोल रहे कि आपको अकेला ही जाना है, आप अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर जा सकते हैं, तो जल्दी करिए, लेट ना हो जाए।

ने गाना एंजॉय किया है। तोबा तोबा इश्क में करिया। और हाँ जी, अब बारी है आप सभी के लिए कड़क सवाल। अब कड़क सवाल क्या है क्या नहीं है वो तो हम आप सभी के लिए म्यूजिक लेकर आए हैं, बस आपने वो सुनना है, गैस करना है कि ये म्यूजिक का जो मैं प्ले कर रही हूँ गाने का सही नाम क्या है। अगर आप सबसे पहले मैसेज पहुँचाते हैं तो आप बन जाते हैं विनर, और आपको मौका मिलेगा 7 अजूबे पार्क जाने के लिए, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं पहले इस म्यूजिक को, तभी आपको मजा आने वाला है और तभी आप राइट आंसर भी पहुंचा पाएंगे।

0: हाँ जी, जल्दी जल्दी सुनिए इस म्यूजिक को और बताइए कि गाने का क्या नाम है। और आपने व्हाट्सएप करना है, नंबर है 9837896896 पर आपने मैसेज पहुंचाना है कि जो मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ गाने का क्या नाम है। जल्दी जल्दी सुनिए और मैसेज करिए क्योंकि आपको मौका मिलेगा फ्री में 7 अजूबे पार्क घूमने के लिए। अंजी मैं क्या किथे रह गए जी, जल्दी ले सुनिए। मैं कहती हूँ रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए तभी आप अच्छे से सुन पाएंगे और राइट आंसर भी पहुंचा पाएंगे। चलिए वंस अगेन एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए जी बस सुन, आप समझ गए होंगे और आराम से मैसेज पहुंचा दीजिए ताकि आपको मौका मिल जाए 7 अजूबे पार्क में घूमने के लिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और कहीं मत जाइए और भी ढेर सारी बात करते रहेंगे क्योंकि पिटारे में जब सच बताओ बातें करने के लिए बहुत होती है ना, तो उस टाइम समय हमारे पास कम पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, आर्जरीना आप सभी साथ पूरी कोशिश करेगी आज का अपडेट पहुँचाने के लिए। फिलहाल कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का महामंच।
3: जापान, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम की साझेदारी से यूपी के कारोबार को मिलेगा वैश्विक बाजार, जिसमें होगी इंटरनेशनल बायर्स के साथ साथ देश के B2B और B2C खरीदारों की भागीदारी। डिफेंस, एरोस्पेस, AI और इलेक्ट्रॉनिक्स पर खास फोकस के साथ 27 से ज्यादा सेक्टर होंगे शामिल।
2: UPITSF बेहद खास, पूरी दुनिया अब यूपी के साथ।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: कर दे होश दीवाना।
1: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। फिलहाल राइट नाउ आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है और सुन रहे हैं इवनिंग मस्ती शो। और अब ये कहा जा रहा है भैया कि बिहार से लेकर गुजरात तक दौड़ेगी अमृत भारत। हाँ जी, जो ट्रेन है भैया हर जगह हर इलाके में बहुत ही शानदार अपना प्रदर्शन दिखा रही है। और वैसे भी छठ पूजा का पावन पर्व है और इस पर बहुत सी ट्रेनें हैं जो चलाई जाएंगी ताकि किसी भी प्रॉब्लम का फेस ना करने पड़ जाए जो भी घर जाने वाले हैं। और साथ ही साथ काशी में दुनिया का तीसरा और भारत का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपे बनाया जाएगा ताकि इसके अभी भैया देखिए आगे आगे क्या होता है, यानी कि अब हमारा जो इंडिया है डेवलप कर रहा है। और साथ ही साथ मैंने आप सभी से आज बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन भी पूछा है, अगर आप उसका राइट आंसर पहुँचाते हैं तो आप पहुँच जाएंगे 7 अजूबे पार्क। जी बिल्कुल, फ्री में आपको एंट्री मिलने वाला है। लेकिन हमारा आज का म्यूजिक है ये, थोड़ा सा एक बार और आप हम प्ले करते हैं, सुनिए जरा इसको ध्यान से।

हाँ जी, मैं कहा कितने ध्यान है जी, अभी आपके पास एक और मौका मिलेगा, फिलहाल आप जल्दी सुनकर बताइए इसका राइट आंसर। चलिए जी, गाने का नाम राइट आपने पहुंचाना था, फिलहाल एक और गाना हम आप सभी को सुनवाते हैं और फिर मैं लौट कर आती हूँ और आप सभी के जो मैसेज आए हैं ना उनको मैं शामिल करती हूँ।

जी बबली बदमाश है, क्या गाना आपने एंजॉय किया है। चलिए अब बारी है आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि किनका हमारे पास राइट आंसर आता है। आज का कड़क म्यूजिक जो मैंने प्ले किया था, जिसका आंसर आपने पहुंचाना था।

चलिए जब देखते हैं हमारे पास राइट आंसर आता है। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, आपने नाम नहीं बताया है। अच्छा, मोहम्मद आसिफ जी कनेक्ट होते हैं। और गुड इवनिंग रीना जी, वेरी गुड इवनिंग सर। और इनका मैसेज राइट आंसर आता है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। तो आप बनते हैं इवनिंग मस्ती शो के विनर, तो आप स्टूडियो आइए और पास लेकर जाइए और साथ अजूबे पार्क एंजॉय करिए। साथ ही साथ अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कोमल शर्मा जी कनेक्ट होती हैं और इनका भी राइट आंसर है, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। प्रवीण जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं राइट आंसर के साथ। दीक्षा हमारे साथ कनेक्ट होती है राइट आंसर के साथ। और अगले मैसेज की बात करूं तो ये कोकिला जी का आंसर यानी कि थोड़ा डगमगा गया है, गलत आंसर आ गया है आपका। रूपाली जी का भी आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है, जो कि दिल्ली से कनेक्ट होती हैं। पूनम जी का भी राइट आंसर है। शालिनी जी भी राइट आंसर के साथ कनेक्ट होती है मुरादाबाद से। चलिए इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह तो नहीं मिलेंगे हम, कल मॉर्निंग मसाला शो में मिलने वाले हैं, यानी कि 10 बजे मिलेंगे और करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय।

0: संस्कार लेकर के हम चले हैं, इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की प्रशंसा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। उन्होंने कहा कि परिषद की सफलता की कहानियां अब पहले से कहीं अधिक दिखाई दे रही हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने युवा नवोन्मेषकों से आम लोगों की समस्याओं को पहचान कर नवाचार के माध्यम से व्यावहारिक समाधान तलाशने का आह्वान किया है। श्री जोशी ने आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती के दक्षिण क्षेत्र का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के दैनिक जीवन को बेहतर बनाने वाली समस्याओं की पहचान कर उनके अभिनव समाधान तैयार करना है। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड

लामोला और ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ दोनों नेताओं की बैठक में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बहुपक्षीय व्यवस्था को मजबूत करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अपनाए जाने का स्वागत किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने, मैनग्रोव संरक्षण तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। जापान एशियाई खेलों में आज कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलंगोवन ने कांस्य पदक जीता। वहीं 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। मानुष शाह और दिया चिताले ने मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम ने थाईलैंड को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका FM मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और मेरे साथ हैं अखिल। और आज हम बात करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, और हमारा स्पेशल टॉपिक रहेगा लखनऊ की मक्खन मलाई और चाट।
1: नमस्कार उत्तर प्रदेश, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम विकास का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जहां बात होती है विकास की, विरासत की और उस स्वाद की जो दिल में उतर जाए।
0: और आज हम पहुँचे हैं बाबू की शहर, तहजीब की शहर यानी लखनऊ में, जहाँ पहले आप सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि जिंदगी जीने का अंदाज है।
1: अब यही लखनऊ अपने शानदार स्वादों की वजह से भी दुनिया में नई पहचान बना रहा है।
0: योगी सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन यानी ODOC पहल ने लखनऊ के पारंपरिक व्यंजनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
1: दोस्तों, लखनऊ सिर्फ बड़ा इमामबाड़ा, चिकनकारी और अदब के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का खाना भी शहर की रूह माना जाता है।
0: और भाई, लखनऊ का खाना सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि एहसास भी भर देता है।
1: यही वजह सरकार अब इन पारंपरिक स्वादों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और आधुनिक मार्केटिंग से जोड़ रही है, ताकि दुनिया लखनऊ को सिर्फ नवाबी शहर नहीं बल्कि स्वाद की राजधानी के रूप में भी पहचाने।
0: और अब बात करते हैं लखनऊ की सर्दियों की सबसे नाजुक मिठास, मक्खन मलाई की।
1: वाह, नाम सुनते ही जैसे मुंह में मिठास घुल गई। मक्खन मलाई, जिसे कुछ लोग निमिष भी कहते हैं, इतनी हल्की होती है कि मुंह में रखते ही पल भर में घुल जाती है, जैसे ठंडी सुबह धूप की पहली करण, बिल्कुल वैसा एहसास।
2: ये सबसे पहले अपना नाम हमें बता दें।
3: हमारा नाम पप्पू जी है।
2: पप्पू जी, पप्पू जी आपका ये प्रतिष्ठान कब से है?
3: 40-45 साल हो गया।
2: खासियत क्या है, क्योंकि भीड़ काफी कुछ देखा, बहुत देखने
3: जैसे हम लोगों का यहाँ छोला समोसा मिलता है और यहाँ से व्यवहार भी बहुत अच्छा, हम लोग बहुत अच्छे से आते हैं सबसे।
2: जी जी, इसकी खासियत क्या है?
3: खासियत हमारे यहाँ लहसुन पड़ता है, सोयाबीन पड़ता है और क्वालिटी भी अच्छा रहता है हमारे यहाँ।
2: मैंने सुना है लहसुन
3: प्लेट में पड़ता है।
2: तो उससे क्या स्वाद में?
3: स्वाद आप खाएंगे खुद जान जाएंगे, खाके देखिए।
2: बिल्कुल, ये भीड़ तो मुझे बता ही रही है कि उसमें जरूर कोई ना कोई खासियत है, तभी इतनी ज्यादा भीड़ आपके हमेशा बनेगी। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री हमारे जो है योगी जी, उनके एक प्रोजेक्ट के तहत एक जनपद एक व्यंजन हम यहाँ पे आपको चुने हैं। ये लहसुन वाला छोला आपका काफी प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से हम आए और आपसे खास वार्ता हो रही है। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे?
3: बहुत धन्यवाद है, हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, उनका क्या पूछा जाए।
2: हमारे शहर के राजा हैं,
3: हमारे शहर का क्या, हमारे पूरे देश के राजा हैं वो।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उन्हें महाराज हैं।
4: धन्यवाद योगी जी।
0: और दोस्तों, इसकी सबसे खास बात ये है कि ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लखनऊ की पुरानी नवाबी परंपरा का भी हिस्सा है। कहा जाता है कि पुराने समय में नवाबों की रसोई में भी इसे बड़े अंदाज में तैयार किया जाता था,
1: और इसे बनाने की प्रक्रिया भी किसी कला से कम नहीं। सबसे पहले ताजे दूध को घंटों तक धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर उसमें मलाई तैयार की जाती है।
0: उसके बाद असली जादू शुरू होता है। पूरी रात उस दूध को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, ताकि सर्दियों की ओस और ठंडी हवा उसकी मिठास में घुल जाए।
1: यानी ये सिर्फ मिठाई नहीं है बल्कि मौसम और मेहनत का अनोखा संगम है।
0: बिल्कुल, और सुबह सुबह जब हलवाई उस दूध को बड़े प्यार से फेंटता है तो धीरे धीरे उसमें हल्के हल्के झाग बनने लगते हैं।
1: उसमें डाली जाती है केसर की खुशबू, इलायची का स्वाद और ऊपर से पिस्ता बादाम की हल्की सजावट। उफ़, ये सुनकर ही दिल खुश हो जाए।
0: और खास बात ये भी है कि मक्खन मलाई सिर्फ सर्दियों में ही मिलती है, क्योंकि इसकी असली पहचान ही ठंडी हवा और ओस से जुड़ी हुई है।
1: इसलिए लखनऊ में लोग सुबह सुबह दूर दूर से इसे खाने निकल पड़ते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि अगर आपने सर्दियों में चौक की मक्खन मलाई नहीं खाई तो समझिए लखनऊ को पूरी तरह महसूस ही नहीं किया।
0: और चौक, अमीनाबाद और पुराने लखनऊ की गलियों में सुबह के वक्त बड़े पीतल के बर्तनों में सजी मक्खन मलाई का नज़ारा अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है।
1: लखनऊ के चौक इलाके में मक्खन मलाई कॉर्नर पर सर्दियों में सुबह सुबह लोगों की भीड़ लग जाती है। कोई कुल्हड़ में खा रहा होता है, फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल रहा होता है।
0: यानी पारंपरिक स्वाद अब नई पीढ़ी को भी खूब पसंद आ रहा है।
1: और अब ODOC योजना के जरिए इस मिठाई को नई ब्रांडिंग और पहचान मिल रही है, जिससे छोटे दुकानदारों को भी बड़ा फायदा होगा। दोस्तों ODOC योजना सिर्फ लखनऊ के पारंपरिक स्वादों को पहचान दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हलवाइयों, चाट विक्रेताओं, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को आगे बढ़ाने का भी एक बड़ा माध्यम बन रही है।
0: बिल्कुल, सरकार इन पारंपरिक व्यंजनों से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण, कौशल विकास और आधुनिक व्यावसायिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
1: भिन्न भिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से छोटे उद्यमियों को ऋण, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी दिलाया जा सकता है, ताकि वे अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकें।
0: स्वयं सहायता समूह, महिला उद्यमियों और युवाओं को भी इस पहल से जुड़कर नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं।
1: सरकार की कोशिश है कि छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यंजन बनाने वाले कारीगरों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की सुविधाएं मिले, जिससे उनके उत्पाद बड़े बाजारों तक पहुंच सके।
0: डिजिटल प्लेटफॉर्म, फूड फेस्टिवल, किटन आयोजनों और विशेष प्रदर्शनियों के माध्यम से चार प्रसार का अवसर दिया जा रहा है।
1: यानी ODOC योजना स्थानीय स्वादों को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ हजारों परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का भी काम कर रही है।
0: और यही वजह है कि लखनऊ की मक्खन मलाई, चाट और रेवड़ी जैसी पारंपरिक स्वाद अब नए बाजारों और नए ग्राहकों तक भी पहुंच रहे हैं।
1: अब चलिए लखनऊ की गलियों में, जहां चाट की खुशबू देर से लोगों को अपनी ओर खींच रही है।
0: अरे भाई, लखनऊ की चाट मतलब स्वाद का धमाका। खस्ता, आलू टिक्की, मटर चाट, दही बड़े, हर चीज में नवाबी अंदाज।
1: और सबसे खास बात यह है कि लखनऊ की चाट सिर्फ तीखी या मसालेदार नहीं होती, बल्कि उसके स्वाद में एक संतुलन होता है। खट्टापन, मिठास, मसाले और कुरकुरापन, सब कुछ बिल्कुल सही मात्रा में।
0: सही कहा, यहाँ की चाट वाले खाने सिर्फ खाना नहीं, बल्कि हर प्लेट को बड़े प्यार और कला से सजाते हैं।
4: बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी, रेडियो की जुबानी, नई

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के साथ अब बदलेगा हमारे प्रदेश का परिवेश, जिसका संकल्प है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
3: स्वच्छता से समृद्धि और जन भागीदारी, हमारे सफाई मित्रों के लिए सुरक्षा एवं सम्मान शिविर तथा युवाओं के लिए स्वच्छ पाठशाला अभियान इस जन आंदोलन के मुख्य आधार हैं।
2: 1 अक्टूबर 2026 को विशेष श्रमदान एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता का हिस्सा बनिए तथा www.swachhatahiseva.gov.in पर पार्टनर साइन अप कर सफाई के सच्चे भागीदार बनिए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे, लेकिन अफसोस कई घरों में सबसे पहले सवाल यह उठता है

0: कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
1: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
0: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
1: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था। लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है। शुरू करते हैं आज का।
0: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे, लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला न सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
1: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
0: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
1: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर से मैं बोलूंगा।
0: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
1: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
0: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें।
1: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में वो सारी डिटेल्स खोल देता है। उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
1: हाँ, बिल्कुल बना सकता है। अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, एकदम आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में, अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी वसीयत, अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं। अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है, उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए, कोई भी अगर लगता है आपको कोई कंट्रोवर्सी आ रही है, तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
0: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
1: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
0: अच्छा,
1: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
0: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
1: देखिए, अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें। कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
0: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
1: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
0: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
1: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद सामने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
0: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
1: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो, एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
0: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
1: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई अब मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
0: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
1: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती है जो उसके लीगल हायर्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है और फिर वो जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं। कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा, ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
0: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
1: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है, जिसको उसने ऐसे।
0: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
1: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होकर घर चले आना है, बस बात खत्म, तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा, तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस कि लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
0: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
1: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
0: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
1: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, उसका लीगल राइट।
0: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
1: देखिए स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते हैं।
0: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं, आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार, जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुन।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रही हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रामाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि भाई इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा जो भी डिसीजन लेगी साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे, जो भी अदालत जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती है?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं फिर।
0: ओके क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते तो बता दीजिए और नहीं बताना तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो है रिकनसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉ या एडवोकेट्स होंगे आप उनको जो है उनसे राय लेके आप कानूनी मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजोल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्मत वसीयत बनवाएं जो भी एस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आपका कानूनी सलाह अवश्य लें। और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो है आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी है, उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात हुई वो जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते हैं सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।
2: क्या दर्द आपकी जिंदगी रोक रहा है? अब दर्द को नजरअंदाज ना करें, इस सितंबर में श्री साई हॉस्पिटल में हर गुरुवार शाम 5 बजे से 7 बजे तक फ्री क्रॉनिक पेन कैंप, निशुल्क परामर्श, जांच पर 20% तक की छूट और दवाइयों पर 10% तक की छूट, रजिस्ट्रेशन मात्र 100 रूपए में। दर्द से राहत की सही शुरुआत अभी कॉल करें 9412504190, श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
5: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प है भारत का नया उत्तर प्रदेश।
4: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
5: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
6: लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने डीटीसी बसों के संविदा ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। दिल्ली में आज रात 10 बजे तक आईटीओ चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मीरदर्द रोड, रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जहांगीर रोड और प्रेस रोड के आसपास यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन रहेगा। और भाजपा ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
7: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये उपलब्धि केवल संख्या पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाने, पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और स्वच्छ हवा के लिए निरंतर प्रयासों का परिणाम है। श्रीमती गुप्ता ने जानकारी दी कि मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 की शुरुआत इस वर्ष 7 जुलाई को वन महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की थी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सार्वजनिक स्लॉट बुकिंग सुविधा के माध्यम से 1,80,000 से ज्यादा बुकिंग की गयी, जिनमें करीब 1,47,000 नागरिकों ने भाग लेकर 3,00,000 से अधिक पौधे लगाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मिशन ग्रीन दिल्ली वायु प्रदूषण से निपटने और दिल्ली के पर्यावरण में सुधार की व्यापक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री सिरसा ने कहा कि अब सरकार का अगला ध्यान लगाए गए पौधों के जीवित रहने, संरक्षण और संवर्धन पर होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग की रिपोर्ट के साथ मैं विशाल शर्मा।
6: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में आरोग्य मंथन 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कारण अब 90% कैंसर मरीजों का इलाज 30 दिन के अंदर शुरू हो रहा है। एक रिपोर्ट।
8: श्री जेपी नड्डा ने कहा कि अब तक आयुष्मान भारत के अंतर्गत करीब 13 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत अब सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिससे बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों को भी लाभ मिल रहा है। आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने पर दोनों योजनाओं के बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार दिए गए। श्री नड्डा ने नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री मोबाइल ऐप और सिक्योर डेटा एनवायरनमेंट एप्लीकेशन भी शुरू किया। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य संस्थान, बीमा क्षेत्र और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें इन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आगे मजबूत करने पर चर्चा जारी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
6: दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज एक विशेष बैठक की। इसमें कंसेशनर यानी किसी निजी कंपनी के जरिए संविदा पर रखे हुए डीटीसी बस ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की गई। ये बैठक बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ की गई। बैठक में ड्राइवरों द्वारा उठाई गई मांगों के समाधान के साथ ही राजधानी में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के दौरान श्री सिंह ने कंसेशनर के माध्यम से रखे गए संविदा पर काम करने वाले ड्राइवरों के लिए उचित कल्याणकारी उपाय सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। परिवहन मंत्री ने कहा कि कंसेशनर के जरिए अनुबंध पर रखे गए बस ड्राइवरों का कल्याण और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की निरंतरता दोनों ही महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने संबंधित पक्षों से लागू कानूनों और संबंधित रियायत समझौते के अनुसार संविदा पर काम करने वाले ड्राइवरों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा के साथ ही उचित दुर्घटना बीमा की व्यवस्था संभावनाओं पर विचार करने को कहा। उन्होंने अवकाश संबंधी प्रावधानों के संबंध में भी संबंधित पक्षों से विचार करने को कहा है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित वर्ल्ड सेफ्टी 2026 सम्मेलन में रोड सेफ्टी कैंपेन, हेलमेट पहनने के परिणाम के लिए आधिकारिक रूप से ऑनरेबल मेंशन से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान सेफ्टी सम्मेलन 2026 अल्ट्रा शॉर्ट वीडियो श्रेणी में प्रदान किया गया। सरकार ने बताया कि इस सम्मान में दोपहिया वाहन चालकों के बीच हेलमेट के महत्व को रेखांकित करने और बिना हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की संभावित परिणामों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार संचार अभियान को मान्यता दी गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
9: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
6: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। इनमें NDMC कन्वेंशन सेंटर में परिषद के कर्मचारियों के साथ संवाद, चाणक्यपुरी स्थित अनुपम कॉलोनी जीरो वेस्ट मॉडल क्षेत्र का दौरा और धर्म मार्ग स्थित दंत चिकित्सालय में दंत स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का उद्घाटन शामिल था। एक रिपोर्ट।
10: इस अवसर पर उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने समर्पित NDMC परिवार के साथ संवाद किया और उन सफाई कर्मचारियों, माली और अभियंताओं की सराहना की जो राष्ट्रीय राजधानी के हृदय स्थल को स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने स्वच्छता ही सेवा अभियान में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर NDMC को बधाई दी। श्री संधू ने विश्व स्तरीय दिल्ली के लिए 4 स्तंभों वाले रोड मैप की रूपरेखा प्रस्तुत की, साथ ही बेहतर प्रकाश व्यवस्था और पिंक फोर्स की तैनाती के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कों, AI सक्षम त्वरित नागरिक सेवाओं और साझा जिम्मेदारी के रूप में जन भागीदारी पर बल दिया।
11: सारे कर्मचारी NDMC वाले अच्छा काम करते हैं। अभी आपने ब्रिक्स समिट देखी, उसमें सबने अप्रिशिएट किया। मैंने सिर्फ उनको यही प्रेरित किया कि जो आप ब्रिक्स में डिलीवर कर सकते हो वो बाकी दिनों में भी दिल्ली को साफ सुथरा रखना, और ये भी कॉपरेशन उनसे मांगी कि NDMC एरिया में पूरी सुरक्षा।
10: श्री संधू ने NDMC क्षेत्र में स्थित अनुपम कॉलोनी का भी दौरा किया, जहां उन्होंने निवासी कल्याण संघ के सदस्यों से बातचीत की और स्रोत स्तर पर 100% कचरा पृथक्करण तथा मौके पर कंपोस्टिंग के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। इसके अलावा श्री संधू ने धर्म मार्ग पर दंत स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक मौखिक स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने दंत विशेषज्ञों से बातचीत की और विशेष रूप से तैयार किए गए जागरूकता स्टॉलों का दौरा भी किया। शिवांग के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए रजनी शुक्ला।
6: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज सुल्तानपुरी क्षेत्र का निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। श्री वाही ने क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए। उन्होंने सुल्तानपुरी में स्थित जर्जर सामुदायिक भवन को तोड़कर उस पर सामुदायिक कार्य के लिए एक योजना बनाने के आदेश दिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने आज मेरठ के विहान बालिका बालक आवासीय विद्यालय के लगभग 100 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक विशेष शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया। यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से परिचित कराना और स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता को अपने व्यवहार तथा व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि आज रात 10 बजे तक ITO चौक, बहादुर शाह जफर मार्ग, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, मिरदर्द रोड, रणजीत सिंह मार्ग, रणजीत सिंह फ्लाईओवर, जांगीर रोड और प्रेस रोड के आसपास यातायात पर प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तन लागू रहेंगे। पुलिस ने बताया कि ये व्यवस्थाएं दोनों कैरिजवे और सर्विस रोड पर भी लागू रहेंगी। यातायात पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे निर्धारित समय के दौरान इन मार्गों पर जाने से बचें और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आज इन मार्गों पर नो पार्किंग व्यवस्था लागू रहेगी। पुलिस ने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को टो किया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
12: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
6: आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। एक रिपोर्ट।
13: पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्नातक की पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और RSS के प्रचारक बन गए। प्रचारक बनने से पहले उन्होंने वर्ष 1939 और 1942 में संघ में प्रशिक्षण लिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
6: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित उपाध्याय का संपूर्ण जीवन राष्ट्र साधना और भारत की सांस्कृतिक चेतना को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान को राष्ट्र की प्रगति का आधार मानने वाला उनका चिंतन आज भी प्रेरणादायी है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा की अध्यक्षता में आज राष्ट्र कार्यालय विस्तार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्र सेवा, संगठन निर्माण और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित रहा। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पंडित जी के विचार आज भी भाजपा के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रहित और जनसेवा के लिए प्रेरित करते हैं।
14: भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को विचार देने का जो काम किसी नेता ने किया, तो भारतीय जनसंघ में महामंत्री रहते हुए 1951 से लेकर के 68 तक उन्होंने जो दर्शन दिया, एकात्म मानव दर्शन जिसको हम कहते हैं, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल विचार वही है।
6: भारतीय जनता पार्टी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने केंद्रीय कार्यालय में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। शिविर के दौरान पार्टी कार्यालय के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की देशभर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों ने व्यापक रूप से स्वास्थ्य जांच की और उन्हें आवश्यक दवाएं तथा चिकित्सीय सलाह दी। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि शिविर में कार्यालय कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया। विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन शैली के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी दिया, जिससे प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत और आरोग्य भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान मिला है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर, सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वें नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि यमुना का पुनरुद्धार केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे एक सांस्कृतिक अभियान के रूप में भी आगे बढ़ाना होगा। दिल्ली नगर निगम स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत कल शाहदरा दक्षिण जोन में धूल मुक्त और पार्क स्वच्छता अभियान आयोजित करेगा। ये अभियान सुबह 9 बजे से न्यू राजधानी एनक्लेव स्वास्थ्य विहार और न्यू प्रीत विहार में आयोजित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार कल हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और राजधानी को अधिक हरा भरा, स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाने के लिए मिशन ग्रीन दिल्ली के अंतर्गत 70 लाख पौधरोपण का लक्ष्य पूरा किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आयुष्मान भारत योजना ने देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने डीटीसी बसों में संविदा ड्राइवरों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
4: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
3: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
5: हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो है। और आज की शाम फिर से हम आपकी शाम को और शानदार बनाने के लिए और आपकी इस महफिल को और भी खुशनुमा बनाने के लिए आ गए हैं आपके रेडियो सेट पर। जी कुछ कहना चाहते हैं? शायद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। जी सर, इंट्यूशन
6: मैं, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने से पहले शायरी, हल्का सा शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा।
5: जी माहौल ही बनेगा तभी, बताइए आप, और आपकी शायरी का स्वागत करता हूं मैं।
6: कुछ रिश्ते अल्फाज से नहीं,
5: हाँ
6: खामोशी से समझ आते हैं।
5: क्या बात है,
6: कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब नजर आते हैं।
5: क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, दिल के तो सभी करीब हैं, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं, है ना। चलिए आज की शाम को और खुशनुमा बनाते हैं। बात है हमारे खास मेहमानों की, तो सबसे पहले हम सर का स्वागत करेंगे, उन्हीं की आवाज में हम सुनेंगे, उनका अंदाज में उन्हीं का परिचय। हम उनका नाम क्यों बताएं, हम तो उन्हीं से सुनेंगे, तभी तो कुछ नया होगा। जी सर, आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा सा हमारे लिसनर्स को बताइए। आप काफी रेड टी शर्ट में चमक रहे हैं आज, हर बार की भांति आज भी कुछ नए लग रहे हैं आप, हर बार नए रूप में आते हैं।
7: आपके लिस्टनर्स लगता है मुझे भूल गए हैं, क्योंकि आपने काफी समय बाद बुलाया मुझे।
5: नहीं भूले नहीं है, हमने अभी रिसेंटली आपकी आवाज चला दी थी, आपको नहीं बताई, वो बात अलग है, है ना। आप हमारे बीच में लिस्टनर के बीच में एक्टिव रहते हैं, अब आप नहीं सुनते हुजूर, तो इसमें
7: हमने ऐसी बात सुनता रहता हूँ।
6: नहीं तो वो कहाँ सुने, किस किस की सुने, वो
7: ये बात भी है।
5: हाँ ये बात भी है, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। लेकिन उससे पहले सर का जरा तारुफ करा देते हैं अपने लिस्टनर्स के सामने, उनको रूबरू करा देते हैं। सर प्लीज थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में।
7: वही आपको पुराना साथी कमल, अपने कुछ पुरानी
5: कमल, मुझे एकदम लोटस से एकदम खिली खिली भाई बने।
6: तुम तो बिल्कुल एकदम पॉलिटिकली हो जाते हो।
5: नहीं नहीं भाई, पॉलिटिकली का कोई मतलब नहीं है, ये लोटस जो है अमीरी की निशानी है।
7: तो वही आपको पुराना साथी कमल एक बार दोबारा से आपके FM 89.6 मुरादाबाद पर। और सही कहूँ तो आज मैं अकेला नहीं हूँ।
6: हाँ बस यही हमें बात,
7: साहित्यिक हस्ती मेरे साथ है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
5: मतलब आज लिस्टनर को लग रहा है वो अब दोबारा कमल जी को झेलना पड़ेगा, उनको लग रहा होगा नहीं नहीं अब कमल जी को झेलेंगे नहीं, अच्छे से सुनेंगे उनके साथ। एक बार
7: देखा जाए तो 36 के साथ 24 फ्री होता है, आज 36 के साथ 48 फ्री है।
5: अरे वाह क्या बात है, वेरी नाइस। फिर तो मतलब और भी मजा आने वाला है कमल सर।
7: आपके जो लिसनर्स हैं उनको निराश नहीं करूंगा।
5: जी, जी।
7: मेरे साथ आज मेरे साहित्यिक मित्र, बहुत अच्छे मित्र मेरे उपस्थित हैं, राशिद भाई, राशिद हुसैन साहब।
5: अभी लिसनर को कंफ्यूजन हो रहा होगा, राशिद जी दो तीन दिन पहले तो आए थे जी, दूसरे वाले राशिद।
6: ये जो राशिद जी है ना, बस इनका अलग ही।
5: अच्छा तो वो अभी हम उनसे बात करते हैं ना, पहले हम जरा कमल सर का पूरा सुन लेते हैं। जी सर आप प्लीज पूरा करिए अपना वाक्य।
7: वाक्य मैं इस तरह से पूरा करता हूँ कि मैं अपने मित्र राशिद भाई के लिए चार पंक्तियाँ प्रस्तुत करूँगा।
5: अरे वाह, क्या बात है।
7: और मैंने बोलूंगा उस पर राशिद भाई होंगे,
5: पक्का
6: पक्का
7: आप होंगे,
5: हाँ,
7: और अखिल भाई होंगे।
5: और आपको हम जाने नहीं देंगे, आप ये भी ध्यान
7: मैंने जाना भी नहीं।
5: हाँ, ठीक है, आप अपनी प्लीज जरा पंक्तियाँ रखिए, हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं जनाब।
7: ये गौर फरमाइएगा राशिद भाई के लिए।
5: जी,
7: कि जीवन में वो लोग भी ऐसे चंद हुआ करते हैं।
5: अरे वाह,
7: जीवन में वो लोग भी ऐसे चंद हुआ करते हैं, जो खुद में ही दोहा मुक्तक छंद हुआ करते हैं।
5: अरे वाह क्या कहने,
7: जो खुद में ही दोहा मुक्तक छंद हुआ करते हैं, जिनसे भी मिल जाते हैं उन जैसे बन जाते हैं।
5: क्या कहने,
7: वैसे भी मिल जाते हैं उन जैसे बन जाते हैं, बिना आईने के भी एक प्रतिबिंब हुआ करते हैं।
5: अरे वाह वेरी नाइस, क्या बात है, जोरदार तालियां, मजा आ गया सर।
7: अगली आवाज जो आपके लिसनर्स को सुनाई देगी वो है राशिद साहब की, राशिद हुसैन साहब।
5: राशिद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करते हैं अपने स्टूडियो में, पूरी दिल की गहराइयों से FM मुरादाबाद के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत अभिनंदन, और मैं चाहूंगा कि हमारे लिसनर्स को अब आप भी कुछ अच्छी सी अपनी आवाज में बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं।
8: बहुत शुक्रिया आनंद साहब, अखिल साहब, वैसे तो परिचय इन्होंने दे दिया, ये बात तो ये सच बोल रहे थे कि बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन जो इन्होंने तारीफ कर दी वो ज्यादा कर दी। मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो धूल मट्टी छापने वाला थोड़ा सा इंसान हूँ। और
5: जो काबिल लोग होते हैं ना, वो अपने आपको ऐसे ही बोलते हैं।
8: साहित्य का छोटा सा एक छात्र हूँ, ये कमल भाई की मोहब्बत है कि वो मुझे इतना समझते, और मेरा नाम इंजीनियर राशिद हुसैन के नाम से, मैं साहित्य लिखता हूँ और जो भी गजल लिया मंच पे कहीं पर भी।
7: राशिद भाई हीरा जो होता कोयले की खान से निकलता।
8: अरे नहीं नहीं नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, हीरा कहाँ है।
5: मुझे लगता है अखिल भाई हमें चलना पड़ेगा, ये लोग आपस में तारीफ करते रहेंगे।
8: आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एफएम मुरादाबाद 89.6 में आज मुझे आने का मौका मिला, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली मानता हूँ।
5: जी जी जी।
8: और आपसे मिलकर तो और भी अच्छा लगा आनंद जी, आपका तो मजा आ गया आपके बात करके।
5: अरे राशिद जी अभी तो मजा बाकी है, ये तो शुरुआत है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी आपके साथ शुरू होगी हमारी।
8: लेकिन फिर अब जब बात हो ही रही है तो
6: अरे बनता है सर उसी
8: के तना होकर यार कहाँ तन्हा हूँ मैं।
5: अरे वाह।
8: तना होकर यार कहाँ तन्हा हूँ मैं, तेरी यादें साथ लिए फिरता हूँ।
5: क्या बात है।
8: यादें साथ लिए फिरता हूँ मैं। और एक शेर और
5: जी जी
8: मैं आपकी अपने श्रोता रखना चाहूंगा कि शाम ढले तो सारे परिंदे घर जाते हैं।
5: अरे वाह।
8: शाम ढले तो सारे परिंदे घर जाते हैं, जाए कहाँ वो जिनके टूटे नाते हैं।
5: अरे
8: जाए कहाँ वो जिनके टूटे नाते हैं। और मैं चाहूंगा कि मैं अगर सुनाना शुरू कर दूंगा तो फिर कमल भाई कहेंगे कि राशिद भाई ये तो आज आप ही का काम हो रहा है।
5: ये बात तो मैं चाहता
8: हूँ कमल भाई भी सुना
5: ये बात तो मैं।
8: लेकिन एक एक मतलब शेर और।
5: हाँ प्लीज प्लीज।
8: कि तेरी यादें मिटा रहा हूँ, तेरी यादें मिटा रहा हूँ मैं, दिल से तुझको भुला रहा हूँ मैं।
5: क्या बात है, क्या कहने।
8: तेरी यादें मिटा रहा हूँ मैं, दिल से तुझको भुला रहा हूँ मैं, और रूह कैसे अलग बदन से करूँ। रूह कैसे अलग बदन से करूं, सोच कर मुस्कुरा रहा हूँ।
5: क्या कह
8: सोच कर मुस्कुरा रहा हूँ मैं।
5: बहुत खूब बहुत खूब सुना,
8: बहुत शुक्रिया।
6: अरे राशिद जी ये तो एक एक अलग ही हुनर है ये। आप मुझे ये बताइए कि कैसे आप ऐसी प्रोफाइल में हैं, कंस्ट्रक्शन की प्रोफाइल में है, आपका प्रोफेशन इतना मतलब कहते हैं ना हेक्टिक और इतना पूरे दिन की भागदौड़ वाला है, उस बीच आप ऐसी ये इतनी बढ़िया बढ़िया जो जज्बात और शायरी है कैसे निकाल लेते।
8: कहा ना कि अगर शायरी को अच्छा करना है तो मोहब्बत कर लीजिए, और मोहब्बत में जब टूटेगा तो दिल वो बात अल्फाज दिल से ही निकलेंगे, तो शायद ऐसा हुआ हो मेरे साथ। और अखिल जी वैसे तो मुझे शौक है इसका, लिखने का शौक तो मुझे, मैं जब ट्वेल्थ में था सेकंड स्टैंडर्ड में तभी से मैंने पहला थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में फिर बीच में काफी गैप रहा, अपनी मसूफियात होती है जैसे कि कारोबारी और एजुकेशनल और तो। लेकिन मुझे अगर मैं लिखता भी था तो रख लेता था, कोई मंच नहीं था मेरे पास, कोई स्टार नहीं थे। उसके बाद में फिर मैंने दोबारा लिखना शुरू किया और मेरा कई जगह जब अखबारात में छपा और मुझे तारीफें मिली तो मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हुई, मुझे हिम्मत आई मेरे अंदर से, और मैं फिर मैंने उस्ताद अपने बनाए जनाब तहसीन अहमद मुरादाबादी साहब, मेरे शायरी के उस्ताद हैं। तो उसके बाद में फिर मैं अपने लिखता रहा, लेकिन ये आपकी मोहब्बत की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ।
6: नहीं नहीं ये तो
8: अपनी
5: बहुत अच्छी बात,
6: बहुत अच्छी बात है।
5: कह रहा हूँ कमल जी आज नायाब हीरा को पकड़ के लाए हैं।
6: मैं मतलब मैं बात करते करते खो रहा हूँ।
5: हाँ मुझे भी मजा आ रहा है, लेकिन कमल जी आपकी शेर व शायरी भी हम जरूर सुनना चाहेंगे।
7: बिल्कुल, लेकिन और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है।
5: हाँ सर प्लीज।
7: राशिद भाई एक वो शेर सुना दीजिए, नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं।
8: अच्छा अरे
5: अरे वाह क्या बात है, ये मतलब कॉन्सेप्ट भी बहुत प्यारा लग रहा है सुनने।
7: देखिएगा उसके अंदर जो शेर में है और वो इनकी आवाज में जचेगा,
5: क्या
7: खारा जंग की आवाज में, वो उसी आवाज में जचेगा।
8: मैं तो उससे अच्छा कुछ सुनाना चाह रहा था
7: ना, मेरी मेरा तो जब से पहला तारुफ आपसे हुआ है वो शेर मेरे दिमाग में।
5: एक काम करते हैं, इन सारे शेरों से पहले गाना लेते हैं हम, ये शेर व शायरी तो चलती रहेंगी, हमारे लिसनर्स को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी जरूरी है साहब। तब तक हम इनसे जरा और मुद्दे की बात करके आते हैं और आपको एक गाना सुनवाते हैं। शेर व शायरी की बात चली, गाना है मैं शायर तो नहीं, शायद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत प्यारा गाना है,
8: बहुत अच्छा गाना है।
5: तो उसी से करते हैं आज के सफर का आगाज। क्यों अखिल भाई
6: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेके फिर से
5: बिल्कुल
6: ज्वाइन करते हैं।
5: वैसे गाना कह रहा है मैं शायर तो नहीं, लेकिन यहाँ जो दो लोग बैठे हैं वो सच में शायर हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अखिल भाई तो बन ही रहे हैं आजकल, प्रैक्टिस में है वो।
6: मैं तो मेरे साथ तो आनंद जी, जब से मैं आनंद जी के उसमें आया हूँ, टच में आया हूँ,
5: मैं भी शायर बनने की कोशिश में,
6: मैं भी आधे से आधा शायर बन ही गया।
5: चलिए मैं चैट जीपीटी से कुछ पूछ के आता

0: दोस्तों गाना बहुत खूबसूरत है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम करेंगे आप सभी का स्टूडियो में। हमारे बीच में अखिल जी हैं, कमल जी हैं और हमारे राशिद साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। और इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका प्रोग्राम, जहां पर शेरो शायरी की महफिल सजती है। और आज की महफिल तो हमारे दो खूबसूरत जनाब सजा ही रहे हैं, तो बिना किसी देरी के उनकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन अखिल भाई से जरा कुछ सुनना चाहेंगे, शुरुआत इनसे होती है तो मजा ही आ जाता है।
1: सारी शुरुआत पहले से मेरे से करवा दो।
0: अरे बिल्कुल भाई जी,
1: एक प्यारी स्माइल दे दो कि यार अखिल भाई अब जरा चालू हो जाओ फटाफट।
0: हाँ बिल्कुल, आपकी शायरी सुन के तो स्टार्ट होता है इंजन हमारी गाड़ी का।
1: हाँ बिल्कुल सही है। दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का।
0: क्या बात
1: आज
0: है?
1: जैसे मेरे सामने जो दो दोस्त बैठे हैं, दोनों ही अपने मतलब इस फन में एकदम, कहते ना अगर हमें ही कुछ जहन में चाहिए होता है कि अगर मुरादाबाद में हमें किसी को सुनना है तो हम चाहते हैं कि भैया कमल जी कहाँ है और राशिद जी कहाँ है।
0: बिल्कुल,
1: तो इनकी दोस्ती देख के मुझे ऐसा लगा, दोस्ती नाम है सुख दुख की कहानी का, दोस्ती राज है सदा कुराने का।
0: अरे वाह,
1: ये कोई पल भर की पहचान नहीं, दोस्ती नाम है उम्र भर साथ निभाने का।
0: आजकल दोस्ती की उम्र भर की बात करते हो, लेकिन जब कमल जी से बात करते हो तो कहते हैं दोस्ती के ऊपर शायरी है का? शायरी तो प्यार के ऊपर लिखी जाती है, और खुद इतने अच्छा दोस्त लेके घूम रहे हैं साथ में।
1: तो आप
2: शायर तो खाली विषय का भूखा होता है, विषय दे दो।
1: बिल्कुल सही,
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत।
1: तो आपकी दोनों की दोस्ती कैसे शुरुआत हुई?
0: अच्छा, आप पहले दोस्ती का इंटरव्यू लो, अब हम शायरी बाद में सुनेंगे।
1: नहीं नहीं, उस शायराना अंदाज में ही लेंगे। राशिद जी से पूछना चाहेंगे, राशिद जी
0: सुनना चाहते हो ना, क्योंकि आजकल तो दोस्ती ही नहीं है, तो जरा हम भी कुछ सीखने को मिलेगा ना। जी सर बताइए थोड़ा सा।
2: बस मेरा भी सही कहूँ तो बैकग्राउंड को ज्यादा पुराना नहीं है साहित्य क्षेत्र के अंदर, शायद पिछले 3-4 साल में ही थोड़ा ऐसा बना है, कुछ लिखना शुरू किया है। और बस इन्हीं जो साहित्यिक गोष्ठी होती रहती है, मासिक गोष्ठी या अलग अलग संस्थाओं
0: गेट टूगेदर हो जाती है, जैसे
2: राशिद भाई से मुलाकात हुई एक दो बार, ऐसी बस आमना सामना हुआ, धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, और अब तो ये सिलसिला है कि बस अक्सर कभी इनका फोन आ जाता है, कभी मेरा फोन आ जाता है,
0: एक दूसरे को सुनाने लगते हो कॉल पे। नहीं, मेरे को लगा कि पूछते लू कभी,
2: खैर मतलब एक तरह से पूछा जाता है, कभी इन्होंने कुछ लिखा तो इन्होंने डाला, मैंने कुछ लिखा तो मैंने इनको भेजा, इसी तरह से थोड़ा चलता रहता
0: है। बस एक दूसरे का सहानुभूति अपनी बढ़ा रहे हैं, तो ये अच्छा है ना।
2: मतलब एटलीस्ट मैं अपने साथ और ये अपने साथ एक ऐसा बंदा लेके चल रहे हैं कि हाँ ये जरूर लाइक करेगा।
0: नहीं, एक बार बताऊं सर, अपने ग्रुप में एक बंदा ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल ना मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे उम्मीद होती है ना वही तोड़ के भागते हैं। बट कोई बंदा अगर एक ऐसा भी होता है जो हमारी कला को थोड़ा सा मतलब हमारा सहयोग कर रहा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है, हौसला अफजाई जिसे हम कह सकते। जी राशिद जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुस्कुराते हुए, मुझे लगता है अपनी दोस्ती का कुछ जिक्र करने वाले हैं।
3: दोस्ती की जब बात चल रही थी, हाँ, तो एक्चुअली हम जब बात करते हैं, इन्होंने गलत कहा कि हम शायरी की बात करते हैं, जब आपस में बात करते हैं हम तो फिर शायरी बहुत पीछे रह जाते हैं, फिर मोहब्बत की दोस्ती की बात होती है, हम बात शायरी की नहीं करते।
0: मैं वही तो जानना चाह रहा था,
3: हम फिर अपने दिल की बात करते हैं, क्योंकि मित्रता में फिर शायरी अलग हो गई,
0: अलग हो गई, वो कॉन्सेप्ट ही अलग हो गया,
3: कॉन्सेप्ट अलग हो
0: गया।
3: उन्होंने थोड़ी सी बात गलत बता दी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बीच में मैं
0: कमल जी थोड़ा सा शर्मा रहे कि अब ये सच्चाई ना रुको कर दे।
3: सच्चाई है, बात कुछ और भी होती
1: है। कमल जी जो है यहीं पे सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं, घर पे भी मुस्कुराते हैं।
0: ये तो देखिए आप पता होगा, आप शादीशुदा लोगों की कहानी आप ही लोग जाने, मैं तो अभी सीधा साधा बच्चा हूँ। खैर हम सर से कुछ सुनना चाहेंगे। राशिद जी आप मुस्कुराइए, क्योंकि आप एफएम मुरादाबाद में हैं, लखनऊ तो नहीं कह सकते अभी हम।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप अभी थोड़ी देर ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सुनाने वाले हैं अच्छा सा, तो मैं वो सुनना चाहता हूँ। आपने
2: और एक मुकम्मल गजल,
0: आपने कमल जी इनको एक हिंट दिया था ना, पुराने छूट रहे हैं नए।
3: मैं वो एक शेर आपके सामने रखता हूँ
0: जी जी,
3: क्योंकि कमल जी को बहुत ज्यादा पसंद है।
0: अब हमारे हमें भी पसंद आएगा।
3: मैं तो कुछ और सुनाने वाला था, लेकिन
0: सर वो भी सुनेंगे, हम जाने नहीं देंगे, आज सुनेंगे आपसे।
3: मैं कमल जी की मोहब्बतों के हवाले एक शेर के, नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं, नए बने हैं और पुराने
0: टूट रहे हैं,
3: हर रिश्ते के ताने बाने।
0: क्या बात,
3: नए बने हैं और पुराने टूट रहे हैं, हर रिश्ते के ताने बाने टूट रहे हैं, और रस्म मोहब्बत तेरे आंगन सूने हो।
0: क्या बात है,
3: रस्म मोहब्बत तेरे आंगन सूने हो गए, शान और शौकत के वो घराने टूट रहे हैं।

0: कोई बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: क्या बात है,
0: सजाने की
1: बनाने की
0: जरूरत ही नहीं पड़ती। बड़ा खुद को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
1: क्या बात है,
0: बड़ा खुद को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और लबो लहजे से पहचाने गए हैं खानदानी लोग, लबो लहजे से पहचाने गए हैं खानदानी लोग, जमाने को जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: क्या बात,
0: जमाने को जताने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
2: गजब,
0: आज क्योंकि एटेंडम इनका फोन आया भाई का कि नहीं आज ही जाना है, तो आज थोड़ा सा गला 2-3 दिन से मेरा ऐसा हो रहा था, अगर मुझे पहले से पता होता तो शायद मैं थोड़ा सा गरारे वगैरह कर गया था, इसलिए माफी चाहूंगा।
2: नहीं आज ये समय राशिद जी मौसम भी ऐसी चल रहा, मैं भी 3 दिन से
0: डिस्टर्ब है
2: डॉक्टर से मिल मिल के पैसे।
0: बदलता हुआ मौसम, और बदलते हुए मौसम में हम बचपन से अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं कि नहीं बदलते मौसम में तबीयत खराब हो जाती है,
1: लेकिन ऐसी बात नहीं है। आवाज आपकी
2: सर,
1: जो आवाज इंशाल्लाह अभी भी बहुत बेहतरीन आ रही है आपकी।
0: बहुत शुक्रिया आपका, बहुत
2: अमिताभ बच्चन याद आ गए हैं
0: तो आप, क्योंकि कमल भाई ने कहा कि एक मुकम्मल गजल, तो मुकम्मल तो गजल तो कभी मुकम्मल नहीं होती, बस चंद अशआर होते हैं
1: जी,
0: लेकिन वो मैं पहले बाद में, पहले कमल भाई हमारे अपनी मोहब्बत का कुछ।
2: अरे कमल जी तो मोहब्बत का जरूर सुनाएंगे, खाना जल्दी खाना है ना घर में, भिंडी की सब्जी पसंद है कमल जी? नहीं, भिंडी की?
3: हाँ बिल्कुल,
2: तो सही है।
1: दोस्तों मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए शेरो शायरी का जो ये माहौल है, ये जो एक बना हुआ है जिसे कह सकते हैं पूरी वाइब सेट हो गई है यहाँ पर अभी फिलहाल, एंड ये वाइब आपकी गाड़ियों में सेट है, आप इस वक्त घरों में सुन रहे हैं, कुछ लोग बिस्तर पे लेट चुके हैं, काम करके आए हैं बेचारे थक गए, वो आप आराम से आपकी शेरो शायरी सुन रहे हैं, हो सकता है कमल जी भी अभी सुन रहे हो, है ना, यहाँ लाइव तो सुन ही रहे हैं, क्या पता घर बैठ के भी सुन रहे हो, ऐसा भी हो सकता है
2: घर बैठ के,
1: राशिद जी अपने घर बैठ के सुन रहे होंगे हमें, और आप स्टूडियो में बैठ के सुनते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो दोस्तों मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो जो शेरो शायरी का ये माहौल है ना, ये माहौल एक्चुअली बनता ही उसी इंसान से जो एक्चुअल में खुद से अपने पन्नों पे अपने दिल की बात उतारता है, राइट? मुझे ऐसा लगता है साहब लिखी हुई कॉपी पेस्ट करते जाओ उसमें वो मजेदारी नहीं है। अभी राशिद जी ने जो सुनाया वो मुझे काफी मतलब ऐसा लगा कि हाँ कुछ नया है, वो उनके दिल के जज्बात थे जो उन्होंने पन्ने पे उतारे, वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाए, और शायद ऐसा ही कुछ आप भी सुनाने वाले, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ।
3: बिल्कुल, हर पहेली का मैं पहले हल लिखूंगा।
1: हाँ
3: राशिद साहब
0: जी,
3: कि हर पहेली का मैं पहले हल लिखूंगा
1: जी,
3: आज बस रहने दे तुझको कल लिख,
1: क्या कहने,
3: आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा, खुद के हिस्से मैं लिखूंगा जहर सारे, खुद के हिस्से मैं लिखूंगा जहर सारे,
1: सारे
3: और तुझको पाक गंगा जल लिखूंगा,
0: क्या बात,
3: आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा,
1: बहुत ही सही, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मजेदार। और
0: कमल साहब की शायरी में भी कहीं ना कहीं कुछ होता है।
1: अरे बहुत, तभी तो हम इनको इनसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए तो बुलाते हैं हम इनको,
2: इनकी शाही शायरी है।
3: अगर मैं आगे बढ़ा दूं, नेकी और अपकार का खाता बनाकर, नेकी और अपकार का खाता बनाकर, खुद के कर्मों का मैं पहले फल लिखूंगा, आज बस रहने दे तुझको कल लिखूंगा,
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी बात पे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं इस प्रोग्राम में, और वापस आते हैं फिर और कुछ बेहतरीन शेरो शायरी के साथ, और कुछ बेहतरीन बातचीत भी इनसे जानने का प्रयास करेंगे, इतने दिग्गज लोग हैं तो इनसे जानेंगे ये लिखने की कला कैसे उत्पन्न हुई, इनके अंदर कहां से आई, किसी को अगर ये चीज करनी है उसे भी अपने जज्बात दिल के पन्नों से कॉपी के पन्नों पर उतारना, तो वह कैसे उतार सकता है, तो ये चीज जो है राशिद जी और कमल जी से हम जानेंगे। काफी पुराने खिलाड़ी लग रहे हैं मुझे, ऐसी बात नहीं है, और आप लोग को भी पता है कमल जी हमेशा आते रहते हैं हमारे बीच में अपनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां लेकर, अच्छी अच्छी बातें लेकर। तो अभी फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे और तब तक अखिल जी भी कुछ बढ़िया सुनाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप बने हुए हैं एफएम मुरादाबाद पर आनंद और अखिल जी के साथ, और हमारे बीच में दो और खास दिग्गज पर्सनालिटी हैं, जिसमें कमल जी और राशिद जी स्टूडियो में हैं और आज ढेर सारी आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, अपने दिल की शेरो शायरी आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमेशा हमारी कोशिश होती है अपने रेडियो के माध्यम से गीत संगीत के साथ साथ जो लोकल हमारे कलाकार हैं, जो हमारे लोकल, इसको भी एक मौका दें, क्योंकि देखिए टैलेंट तो सब में होता है अखिल जी, आपको भी पता है, लेकिन मंच हर किसी को नहीं मिल पाता है ना। और वो मंच कौन देता है? एफएम मुरादाबाद, है ना, क्योंकि हम करते हैं लोकल फॉर वोकल, क्योंकि लोकल को जब लोकल की आवाज मिलती है तो और मजा आता है ना?
1: अपने मुरादाबाद में वो हुनर है, हाँ, तो फिर हम क्यों इधर उधर भटके।
0: एग्जैक्टली। और हमारे मुरादाबाद में राशिद जैसे कमल जैसे दिग्गज लोग थे, मुझे तो नहीं पता था भाई दिग्गज पर्सनालिटी, अब जब इनसे रूबरू हुए हैं तो पता लग रहा है कि इतने फैंटास्टिक कलाकार भी हैं। जी अखिल जी, कुछ कहने के लिए बेकरार
1: हैं
0: आप?
1: मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि भले ही आवाज मेरी
0: है, अपने श्रोताओं से कहते हैं, बाकी तीन लोगों से नहीं कह रहे हैं, तो कमल जी अपने कानों में जो है हाथ रख के सुनेंगे। हाँ बताइए सर।
1: मैं ये कहूंगा कि भले ही अल्फाज मेरे हैं, मगर जो अंदर से भावना है वो आनंद जी की है।
0: अरे वाह, क्या बात है, लपेटना कोई आपसे सीखे, मैं लपेटने के लिए तैयार हूँ, आप बोलिए सर।
1: तुम पे आज ना चरखी कम पड़ जाएगी, मगर मैं तब भी बता देता
0: हूँ। बताइए सी।
1: इश्क में अक्सर लोग परेशान होते हैं, इश्क में अक्सर लोग परेशान होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ हैरान होते हैं, और सबसे ज्यादा परेशान वो होते हैं जिनके पास गर्लफ्रेंड हो लेकिन पैसे कम होते हैं।
0: हाय हाय, मैं कल से पैसों पे काम करूंगा भाई, गर्लफ्रेंड का तो पता नहीं, पैसे होंगे तो सही रहेगा मेरे पास, क्योंकि आजकल पैसों से दुनिया चलती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कमल सर, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? है ना,
2: सब चीजें चाहिए, हाँ, पैसा ही नहीं, सभी चीजें चाहिए,
0: सभी चीजें,
2: रिश्ते,
0: हाँ, लेकिन आजकल तो रिश्ते भी पैसों से होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है अभी, मतलब
2: कह सकते
0: हैं। देखिए मैंने वो बात पूछी ली, अखिल जी आप मत बताओ, देखिए मेरे सामने लेजेंड लोग बैठे हैं। तो देखिए वार्तालाप चल रही है, अब मेरी और अखिल जी की बहुत बातें होगी, और हमारे बीच में इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं, उनसे बड़ी सारी हम वार्तालाप कर रहे हैं, कमल साहब से हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो कमल सर, आप दोनों के बीच में हम कॉम्पिटिशन तो नहीं लड़ाएंगे, लेकिन अभी हमने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे युवा पीढ़ी है जो आप लोग को सुन के उनका भी मन करता है हम भी लिखें भाई, जैसे सर आपने बताया राशिद साहब कि आपने ट्वेल्थ में ही जो है शुरुआत कर दी थी लिखने की, तो ऐसे बहुत सारे यूथ है जिनको मन होता है अखिल भाई, क्रेज होता है लिखने का, कभी कभी अखिल भाई भी सोचते तो हैं लेकिन वो लिख नहीं पाते क्योंकि समझ में नहीं आता कहाँ से शुरुआत करूँ। तो आप थोड़ा सा हमें बताइए हम कहाँ से शुरुआत करें।
3: तो मैंने तो कहा था ना
0: जी
3: कि मोहब्बत कर लीजिए, हाँ, शुरू हो जाएगा।
0: अरे वाह, क्या अखिल भाई, ये मैं काट दूंगा, भाभी तक नहीं पहुंचेगा, आप बेफिक्र रहिए, मोहब्बत आपको करनी आप करिए।
1: तो मैं क्या मोहब्बत नहीं कर सकता क्या?
0: नहीं, अब ये मुझे नहीं पता है, देखिए इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाभी जी। हाँ सर बताइए आप।
3: बस ये है कि अगर युवा इसमें आना चाहते हैं तो हम लोग मुरादाबाद में बहुत सारे लोग हैं, कहीं ना कहीं जिसको शौक होता है, जो कहते हैं ना कि ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, तो हम लोग हैं और हर वक्त अवेलेबल है, मिले हमसे, सीखें, अपनी रचनाएं हमें दें, अपनी गजलें, हाँ, अपनी जो भी कुछ है, तो हम उसको एडिट करेंगे, उनको पूरा सहयोग करेंगे। हमारे मुरादाबाद में एक साहित्यिक शौचालय भी है जिसके डॉक्टर मनोज रस्तोगी साहब संस्थापक है, और
0: अच्छे
3: वहाँ पे मैं समझता हूँ कि 100-100 से 150-150 साल पुरानी वहाँ पे बुक्स किताबें, और वो मुरादाबाद की उनकी एक खास बात मैंने मनोज रस्तोगी साहब की जो मैंने देखी,
0: नाम मैंने सुना है,
3: मैंने भी 4 या 5 साल मेरा उनसे परिचय है।
0: अच्छा।
3: इन 5 सालों में जो मैंने उनकी खास बात देखी वो आज तक किसी इंसान में नहीं देखी मैंने, वो शख्स है कि लाइन में खड़े हुए सबसे पीछे वाले आदमी का हाथ पकड़ के अपने बाजू में लाके खड़ा कर, और मेरे साथ उन्होंने वो किया है।
0: क्या बात?
3: मेरी पहचान अगर साहित्यिक दुनिया में पहचान रही है तो डॉक्टर मनोज रस्तोगी साहब।
0: देखिए उन्होंने आपको वो मंच दिया ना, तभी आप आज वो हम यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन आप उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं?
3: और वो मुझसे बेपना मोहब्बत करते हैं, मेरे घर भी आ चुके हैं, मैं भी उनके घर जाता रहता हूँ, बहुत बहुत।
1: कहाँ उन्होंने संग्रहालय किधर है?
3: ये उनका जलाल स्ट्रीट मंडी चौक मुरादाबाद।
0: अच्छा, मंडी चौक,
3: मंडी जलाल स्ट्रीट में। और बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बड़े आदमी। नहीं, खास बात यही मुझे उनकी लगती है कि लाइन में सबसे पीछे खड़े हुए इंसान का हाथ पकड़ के अपने बाजू में लाके खड़ा कर ले, अपने कंधे से कंधा मिला के ला कर ले, और वो उन्होंने मैंने अपने लिए ये फील किया है, मैं समझता हूँ कि वो सभी के लिए ऐसे हैं। तो ये इसी तरीके का कोई युवा है, मैंने भी उनको खोजा, मैं किसी ना किसी से मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसी हस्ती मिले जिसके मैं मुझे वो मिले
0: संपर्क में, संपर्क में आया हूँ,
3: तो जो अगर लिखना चाहे तो हम उनके लिए, हम है कमल भाई और भी बहुत लोग हैं,
0: हाँ,
3: कोई हमें इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे लिए अच्छा है,
0: सही बात है, हम साहित्य के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: आकर हम देख रहे हैं एक सोशल मीडिया के दौर में एक जो युवा है वो साहित्य से बहुत हटते जा रहे हैं, हम चाह रहे साहित्य जिंदा रहे,
0: जिंदा रहे,
3: और जिंदा रहने के लिए हमें नए युवा आगे आएंगे तो हम उनको पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे, जिससे कि हमें एक साहित्य जिंदा रहना चाहिए। आज हमारा मुरादाबाद, आप एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत आप शायद जानते भी होंगे, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है कि अगर मुरादाबाद में पीतल का काम न होता जो आज पीतल के नाम से जाता है तो शायद जिगर मुरादाबादी के नाम से जाना जाता कि जिगर साहब का शहर है। और आज भी मंच से कहीं पर भी जिगर हम जिगर मुरादाबाद जिगर वाले
1: नहीं
3: मुरादाबाद जिगर वाले से आए हैं
1: तो
3: हम कहीं अपने शहर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो जिगर का मुरादाबाद कहलाया जाता। तो ऐसा नहीं है, साहित्य में आना चाहिए नौजवानों को। और क्योंकि साहित्य कैसा होता है जब आदमी साहित्यकार बन जाता है ना तो वो लड़ाई झगड़े उसका दिल बड़ा मर्म हो जाता है, बड़ा नर्म हो जाता है उसका दिल,
1: वो दुनिया से थोड़ा सा
3: हाँ वो बहुत मतलब फिर अदब भी साहित्य के अंदर है। अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की
1: अदब,
3: एक सादगी एक अदब आता है, एक स्टैंडर्ड आता है, वो साहित्य में है।
0: बहुत बढ़िया राशिद जी, आपने बहुत अच्छे से इसको जो है बताया हमारे श्रोताओं को, मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना जहाँ चाहा है वही रहा है, है ना। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी थी कुछ आपको करना है, और वो कहते हैं ना जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो वो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है ना, तो वो चीज आप में भी है। और ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप बात ही अच्छी कर रहे हैं, आपकी आवाज में भी बहुत अच्छी खनक है, इसका क्या राज है?
3: आवाज तो ये तो कुदरत की बात है।
0: नहीं सच में मतलब काफी अच्छी
3: है, शुक्र मैं अदा करूंगा इसमें मेरा।
0: हर किसी की आवाज में
1: एक शायरी हो जाए राशिद जी,
0: लेकिन मैं चाहूंगा राशिद जी की शायरी से पहले मैं जरा कमल सर की तरफ रुख करना चाहूंगा, बड़े इनोसेंट होके बैठे हैं तो जरा उनसे कुछ सुन लेते हैं।
1: वो आज मैंने
0: वो कह रहे हैं कि आज मैंने अपने दोस्त को चेयर दे दिया, आनंद जी आज मुझे मत टच करना।
1: वो ये कह रहे नहीं अखिल जी,
2: मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि आप तो मैं इनको सुन पाऊँ।
0: अच्छा तो हम राशिद जी को सुने?
2: बिल्कुल।
0: अच्छा तो हम आपको कब सुनेंगे? राशिद जी को तो हम सुन ही रहे हैं,
2: तो मैं भी उनको सुनना चाहता हूँ।
0: है मतलब आज इनकी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आज लिसनर बन के सुनूं।
2: बड़ी मुश्किल से तो आज फुर्सत से मिले हैं मुझे।
0: क्या बात है, तो राशिद जी इसी बात पे इरशाद।
3: नहीं बात ऐसी नहीं है कि वो फुर्सत से मिले, मैं इनके लिए हर वक्त फुर्सत हूँ।
0: ये इनका प्यार है फिर आपके लिए। अरे वाह,
3: अगर पर्सनली हर वक्त हाँ इस काम के लिए थोड़ा सा इन्होंने ऐसा नहीं है, मेरा भी मन था कि नहीं मैं FM जाऊंगा, मेरी बड़ी मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया।
2: और ये
3: कमल भाई मुझे सुनना चाह रहे हैं, कमल भाई मुझे सुनना चाह रहे हैं, मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है, बड़ी मोहब्बत की।
0: हमें भी बहुत फख्र हो रहा है कि हम आपको सुन पा रहे हैं।
3: जब इनकी मोहब्बत है तो फिर एक गजल के चंदा शायर में आपके सामने
0: जरूर जरूर,
3: लेकिन उसके बाद फिर कमल साहब
0: जरूर जरूर।
3: एक गजल मैंने पिछले साल लिखी थी और हर गजल के पीछे कुछ न कुछ तो होता है। उस वक्त की जो ये कहानी थी जो मेरे ऊपर गुजर रही थी, मैं वहीं से उस गजल को उठा रहा हूँ, उसी उस कहानी के ऊपर ही जो मेरा था मामला, तभी मैंने एक गजल के चंद अशआर लिखे थे कि गजल का मतलब समाप्त फरमा लें कि मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले, मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले कोई गम न था तेरे आने से पहले।
0: क्या बात है,
3: मोहब्बत की दुनिया बसाने से पहले कोई गम न था तेरे आने से पहले। और गजल का अगला शेर है जो हकीकी शेर में कहूंगा कि कहीं ना कहीं गजल के एक शेर में पड़ी, मैंने बड़ी दिल से अपने लिखा है और बाकी तो श्रोताओं को पसंद आए तभी मेरी उसकी कामयाबी है, अदरवाइज तो लिखते रहे।
0: बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, सबको पसंद।
3: बिछड़ने की इतनी कहानी है, बिछड़ने की इतनी कहानी है अपनी, खफा वो हुए आजमाने से पहले, खफा वो हुए आजमाने से पहले। और कमल जी आपको नजर करता हूँ कि खुशी इस कदर कोशिशों से मिली, खुशी इस कदर कोशिशों से मिली थी कि हम रो पड़े मुस्कुराने से पहले, हम रो पड़े मुस्कुराने से पहले। और आनंद जी आपके नजर एक शेर कर रहा हूँ कि ना रह पाए हम लब हिलाने के काबिल, ना रह पाए हम लब हिलाने के काबिल, उन्हें हाल दिल सुनाने से पहले, उन्हें हाल दिल का सुनाने से पहले, उन्हें हाल दिल का सुनाने से पहले। और एक गजल का बड़ा मेरे लिए बड़ा पसंदीदा शेर है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा और डांट चाहूंगा कि हमें उम्र भर की मिलेगी जुदाई।
0: क्या बात है,
3: हमें उम्र भर की मिलेगी जुदाई, ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले, ये सोचा ना था दिल लगाने से पहले। और मनाने का हमको तरीका बता दे सनम बेसबब रूठ जाने से पहले, सनम बेसबब रूठ जाने से पहले। और इस शेर पे मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा अखिल साहब के तुम्हारी भी आंखों में आंसू बहे, तुम्हारी भी आंखों में आंसू बहेंगे मेरी हर निशानी मिटाने से पहले, मेरी हर निशानी मिटाने से पहले। और तड़पता न दिल इस तरह मेरा हमदम, तड़पता न दिल इस तरह मेरा हमदम, बताते तो कुछ दूर जाने से पहले, बताते तो कुछ दूर जाने से पहले। और गजल का मकता समाप्त फरमा ले और मैं बाकी कमल भाई आपने बड़ी तारीफें कर दी आज मुझे बांध दिया है और आज आपने बस मैं क्या बताऊं मैं इस लायक ही नहीं था जितना आपने मुझे बांध दिया और मुझे मजबूर कर दिया है कि नहीं आप मैं इतना कहां हूं इस लायक मोहब्बत है और कुछ नहीं है और आनंद भाई हमारे इतनी बढ़िया मैं तो ताजुब आज देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि आनंद इतने अच्छे मतलब नहीं बहुत अच्छे आरजे हैं और मैं इनकी भविष्य के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं और मैं भगवान से
0: बहुत बहुत
3: इनको
0: आपका दिल से आभार साधुवाद और
3: नहीं नहीं वाकई आप कमाल बहुत कमाल जवाब नहीं और हमारे अखिल भाई तो माशाल्लाह बीच बीच में शायरी करते हैं तो ऐसा लगता है कि अपने भाई है हमारे जितने भी भाई शायर है साहित्यकार सब अपना परिवार मानते
0: जी। वैसे मैं आपको राशिद हुसैन साहब मैं बता दूं ये शायर नहीं है तो इन्हें अपनी उसमें मत जोड़िएगा बिल्कुल भी फील्ड में
1: नहीं नहीं नहीं आज मैंने सीख लिया मुझे मोहब्बत करनी है
0: राशिद हुसैन साहब से कि आपको मोहब्बत किससे करनी है वो क्लैरिटी जरूरी है।
1: अभी एक साल पहले इन्होंने मोहब्बत किससे करी थी जो अब ये मुझे बताएंगे
0: नहीं उन्होंने कमल जी से की है।
2: अच्छा गले मुड़ते उखाड़ने की नहीं
3: गले मुड़ते कोई नहीं उखाड़ेंगे
2: तो वो शांति से पड़े रहेंगे
3: क्योंकि सभी को घर जाना है मुझे तो खैर कोई बात नहीं।
0: इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हमारे स्टूडियो में है कमल जी के साथ
3: गजल चमकता समाप्त फरमाने के मुझे आ दबोचा अंधेरों ने मुझे आ दबोचा अंधेरों ने राशिद मेरी जिंदगी जगमगाने से पहले
0: क्या बात
3: मेरी जिंदगी जगमगाने से पहले बहुत शुक्रिया ये गजल मेरे बड़े दिल की अजीज थी और इसके चंद अशआर मैंने आपके सामने रखे आप मैं उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे और अब मैं चाहूंगा कि कमल भाई अब मुझे थोड़ा सा पानी पीने दें।
0: तब तक ये लोग पानी शानी पीते हैं हम इनको पानी पिलाकर और पीकर आते हैं और एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे आप कहीं मत जाइए। और ये इंजीनियर राशिद हुसैन साहब ने जो कमाल की गजलों के बीच से लाइनें हम तक पहुंचाई है मतलब दिल को छू गई कमल भाई मजा आ गया और मैं चाहूंगा कि अगली श्रृंखला में आप भी तैयार रहें। हमारे जो श्रोता साथी हैं वो सुनने के लिए बेकरार हैं कमल जी और राशिद जी की जोड़ी वाकई में कमाल की अब तो हम आपको अकेले बुलाना भी नहीं चाहिए हम चाह रहे हैं कि एक बार दोबारा जब भी आए तो इनको लेकर आप जरूर
1: तो ये पैकेज इनका बुक हो गया
0: सच में। चलिए बहुत अच्छा लगा और गाइस आप कहीं मत जाइए रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए हम वापस आते हैं जरा सी देर में अखिल जी के साथ बाकी हमारे जो मित्र हैं स्टूडियो में उनको आप सुन ही रहे हैं कमल जी हैं साथ में हमारे इंजीनियर राशिद हुसैन साहब हैं बहुत ही अच्छी जो है शेरो शायरी कर रहे हैं और आज का ये जो माहौल है वो और भी खूबसूरत बना रहे हैं। तो अखिल जी कुछ सुनाना चाहोगे आप भी जाते जाते ब्रेक पे जा रहे हैं थोड़ा सा माहौल और अच्छा कर दीजिए माहौल तो ऑलरेडी बहुत अच्छा है
1: अकेले हो तो मुस्कुरा लिया करो
0: मैं रोज मुस्कुराता हूँ शीशा नहीं मिल रहा है लेकिन आजकल आप बोलो
1: श्रोताओं ये जो मैं अल्फाज बोल रहा हूँ ना ये
0: जी जी
1: ये अल्फाज मेरे हैं मगर जो इसके अंदर की जो भावनाएं हैं
0: वो भाभी जी की हैं
1: आनंद जी की है आनंद की आनंद अकेले तुम मुझे नहीं चाहते कि मैं घर जाऊं और सीधा एक सिंगल पीस में जाके बैठो दिखूं
0: नहीं दो बच्चे भी है ना उनका भी ख्याल रखना है मैं सारा भंडा फोड़ूंगा आप बोलो तो सही आप बोलो आगे
1: मैं भूल गया जो बोल
0: चलिए आप गाना सुन लेते हैं नहीं तो मैं गाना भूल जाऊंगा।

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
4: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
3: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
4: अरे नहीं,
0: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
4: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
3: अच्छा।
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफ्सपा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ग्रामीण परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। उन्होंने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गुजरात के वडनगर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि सबके योगदान और भागीदारी से ही विकसित भारत का संकल्प साकार हो सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके बताए 7 सूत्रों का उल्लेख किया।
1: पंडित दीनदयाल जी ने हमें समाज जीवन में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए 7 सूत्र दिए हैं और आज के पुण्य दिन उन 7 सूत्रों का स्मरण हर भाजपा कार्यकर्ता को नई ऊर्जा से भर देता है। ये 7 सूत्र हैं: सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि यही 7 सूत्रों तो आपकी इस सेवा यात्रा की आत्मा है।
0: पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 110वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री इस समय नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित भजन क्लबिंग कार्यक्रम में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं और उनकी ये यात्रा जन सेवा से देश सेवा के मंत्र से प्रेरित है और इस संकल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता जारी है। सेवा और सुशासन की दृष्टि से संचालित सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सरकार का ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि किस प्रकार इस संकल्प को आगे रखते हुए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया है।
2: पहले भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायु सेना, अलग अलग योजनाएं तैयार करती थी, प्रशिक्षण देती थी और सरकार को अपनी अपनी सलाह देती थी। तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल के लिए कई बार सुझाव दिए गए थे। 1999 की करगिल समीक्षा समिति और उसके बाद बने मंत्रियों के समूह ने भी इस दिशा में बदलाव की सिफारिश की थी। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का पद बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इससे तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय होगा।
1: आज हमने निर्णय किया है कि अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS इसकी व्यवस्था करेंगे और इस पद के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शीर्ष स्तर पर एक प्रभावी नेतृत्व मिलेगा। हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गति में ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है,
3: उसके लिए बल देने वाला काम है।
2: दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने CDS का पद बनाने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बनाया गया, जिसका प्रमुख CDS को बनाया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने कहा कि CDS की नियुक्ति से सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह लेने के लिए एक ही प्रमुख अधिकारी से संपर्क करने की सुविधा मिली।
4: ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वन पॉइंट कॉन्टैक्ट होने के कारण सरकार को जो भी एडवाइस देना है, सरकार को किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, खबर चाहिए, एडवाइस चाहिए, एक आदमी जो पूरा सब कुछ संभाल सकता है, तो इसीलिए CDS का होना निहायत जरूरी था।
2: CDS के पद के सृजन होने के बाद तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय और बेहतर हो गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफस्पा को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। नागालैंड के 9 जिलों में भी इसे बढ़ाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तिरप, चांगलांग और लोंगडिंग जिलों तथा असम की सीमा से लगे नामसाई जिले के नामसाई, महादेवपुर और चौखाम पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों में भी अफस्पा को बढ़ाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत 7.8% की वृद्धि दर हासिल कर सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाया है और जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भी देश की संप्रभु रेटिंग को उन्नत किया है। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
6: हमारा रक्षा उत्पादन 1,78,000 करोड़ को पार कर गया है और इसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है। आज यूपी में बने ब्रह्मोस पाकिस्तान की नींद उड़ा देते हैं। अमेठी में बनी AK-203 एसोल्ट राइफल आज नक्सलवादी और टेररिस्टों की नींद उड़ा चुकी है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले दशक में भारत में नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 85वें स्थापना दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश ने पिछले 5-6 दशकों की अवधि में पिछले 10 वर्षों में अधिक नवाचार, अनुसंधान गतिविधियों और नई प्रयोगशालाओं की स्थापना देखी है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा नागरिकों, सरकार और उद्योग सहित सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह में उन्होंने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जल संबंधी चुनौतियों का समाधान केवल देशों और संस्थानों के सहयोग से ही संभव है।
7: आज जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा।
0: ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने कहा है कि राष्ट्रीय सरस आजीविका मेला महिला स्व सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय स्तर का बिक्री का मंच प्रदान करेगा। विजयवाड़ा में उन्होंने कहा कि ये मेला 8 से 22 अक्टूबर तक लगभग 600 स्टॉलों के साथ आयोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 4030 अम्बेडकर प्रतिमा स्थलों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए जारी किए हैं। योजना के पहले चरण में 403 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में इस प्रतिमा स्थलों कुल मिलाकर 4030 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग एक मंत्री स्तरीय सत्र में उन्होंने बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रक्रिया में प्रगति नहीं होने से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में असंतोष बढ़ रहा है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान किया है। विदेश मंत्री ने एक अन्य बैठक में खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर कल महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में समुद्र के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरों पर आयोजित उच्च स्तरीय पूर्ण बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्री जॉर्ज ने समुद्र के बढ़ते जलस्तर पर संयुक्त राष्ट्र घोषण को अपनाए जाने का स्वागत किया। भारत ने क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन के प्रारंभ का स्वागत किया है। इसकी घोषणा इस वर्ष 26 मई को नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में की गई थी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय तटरक्षक बल का जहाज शौनक चारों क्वाड देशों के समुद्री पर्यवेक्षकों के साथ चेन्नई से रवाना हो गया है। शंघाई में वर्ल्ड स्किल्स 2026 में विभिन्न व्यावसायिक और तकनीकी कौशल क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती भागीदारी देखने को मिल रही है। टीम इंडिया की 70 सदस्यीय टुकड़ी में 14 युवा महिलाएं 63 अलग अलग कौशल श्रेणियों में हिस्सा ले रही हैं। टीम इंडिया के प्रतिभागियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 5वें हिस्से से भी अधिक है। मौसम विभाग ने कल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर, पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर और बहराइच जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज बारिश का अनुमान है। पर अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
9: जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल की मिक्स्ड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सुरुचि ने कहा कि इस जीत से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है।
10: टीम वर्क बहुत ही अच्छा है, मुझे मेरे टीम ऑनर पर पूरा भरोसा था कि वो अच्छा ही करेगा और हम अपना 100% देंगे तो हमारी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस निकल जाएगी और मेडल जीतने के लिए कॉन्फिडेंस मुझे वर्ल्ड कप से मिला है और अभी एशियन गेम्स में जीता है तो शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुझे कॉन्फिडेंस देगा।
9: 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप तोमर और नीरज कुमार की पुरुष टीम ने रजत पदक हासिल किया। एथलेटिक्स के 10,000 मीटर पुरुष दौड़ स्पर्धा में गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। पोल वॉल्ट में बर्निका एलेंगोवन ने कांस्य पदक जीता। मनप्रीत कौर ने महिला शॉटपुट स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। टेबल टेनिस में मानुष शाह और दिया चिताले ने डबल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। भारत 2 स्वर्ण, 9 रजत और 12 कांस्य समेत 23 पदकों के साथ पदक तालिका में 12वें स्थान पर है।
0: सरकार ने कहा है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अक्टूबर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 70,000 ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र प्रायोजित इस योजना में गरीब ग्रामीण युवाओं को रोजगार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण की अवधि 3 से 12 महीने तक होती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन और महिलाओं की आत्मनिर्भरता देश की प्रगति को दर्शाते हैं। श्री मोदी ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत क्षेत्रों में अफस्पा को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार सुनिश्चित करने के लिए लिखित मसौदे पर बातचीत का आह्वान किया और बदलाव का विरोध करने वालों की आलोचना की। जापान एशियाई खेलों के आज 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स टीम स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में रजत पदक जीता। गुरवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
12: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
13: जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, बेवजह टेंशन लेना बंद किया करो।
14: क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक मैसेज है, एक मीनिंगफुल है। आज कमाल की बात करी, मुझे लग रहा है कमल जी की बातों का असर हो रहा है अखिल जी आप पर।
13: मैं संगत का असर हो रहा है। आसपास जो मेरे पास वाइब्स आ रही है ना, इनका जो ऑरा है राशिद जी का और कमल जी का इस समय, तो जो इनका ऑरा है वो आ रहा है ऊपर धीरे धीरे, और थोड़े से निखार आ रहा है मेरी शायरी में।
14: बहुत बढ़िया। तो देखिए राशिद जी से हम सुन ही रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा कमल जी से भी सुनने चलते चलते। सर कुछ मिश्रे या चंद लाइनें जो आप रखना चाहें, दोबारा तो आपको बुलाने का मौका हम जरूर देंगे आपको, और हम भी आपसे चाहेंगे कि आप भी पधारें। क्यों अखिल जी?
13: बिल्कुल सही कहा।
15: चलिए पेश करता हूँ। कल ही लिखा है और बाकी अब ये क्या है क्या नहीं है ये राशिभर बताएंगे सुनने के बाद। कि दिल में है उम्मीद कि ये हाल बदले, दिल में है उम्मीद कि ये हाल बदले।
16: क्या बात,
15: हो नया दिन रात बदले साल बदले।
16: बहुत
13: क्या बात है,
15: हो नया दिन रात बदले साल बदले। पाई है तकदीर तो चमकेगी एक दिन, पाई है तकदीर तो चमकेगी एक दिन। कर रहे कोशिश की अपना भाल बदले।
13: क्या बात,
15: कर रहे कोशिश की अपना भाल बदले। और मुफलिसी ने भूख को जिंदा ही रखा, मुफलिसी ने भूख को जिंदा ही रखा। बच्चे ने कितनी दफा ही थाल बदले।
13: क्या बात है,
15: बच्चे ने कितनी दफा ही थाल बदले।
16: क्या बात,
15: था तो वो सयाद, था तो वो सयाद पर शातिर नहीं था, था तो वो सयाद पर
13: शातिर
15: नहीं था। सैद ने आकर कहा कि जाल बदले।
13: बहुत बहुत
16: क्या बात,
15: सैद ने आकर कहा कि जाल बदले।
16: बहुत खूब, बहुत खूब।
15: और वो हवेली भी मुनासिब बन ना पाई, वो हवेली भी मुनासिब बन ना पाई। सीख है मेमार को अब माल बदले।
14: क्या बात,
15: मेमार मतलब जो चिनाई,
16: चिनाई।
15: सीख है मेमार को कि माल बदले। और बीच सागर नाव गोते खा रही है, बीच सागर नाव गोते खा रही है। ना खुदा को चाहिए कि चाल बदले, ना खुदा को चाहिए कि चाल बदले।
13: क्या बात है।
15: और आगे देखिएगा कि हंस रहे पर गालों में गड्ढे नहीं है, हंस रहे पर गालों में गड्ढे नहीं है। अब कमल देखे उमरिया गाल बदले।
16: क्या बात है,
13: क्या बात है,
14: बहुत बढ़िया।
13: कल मुझे पूरी उम्मीद है, कल पूरे दिन बिजली आई है कमल भैया, एकदम मक्ती हुई, एकदम भड़कती हुई शायरी लिखी है सब एकदम।
14: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन वही है कि चलते चलते उन्होंने सबको जो है जगा दिया। हाउ द जोश, है ना, बहुत बढ़िया।
15: ये सब आपकी संगत का असर है।
14: बहुत बढ़िया, चलिए अच्छी बात है, कुछ हम आपसे सीख रहे हैं कुछ, और कुछ आपका माहौल भी बदल रहा है रेडियो में।
13: मैंने तुमसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये एक पल कैसा निकल जाएगा।
14: बहुत बढ़िया। और कमल सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए इंजीनियर राशिद हुसैन साहब बैठे हुए हैं हमारे बीच में। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये आनंद बार बार इंजीनियर इंजीनियर क्यों कर रहा है, तो राशिद जी एक बार जरा फिर से, कुछ लोगों ने जस्ट रेडियो अभी ट्यून इन किया है तो उनको भी अपना तारुफ करा दीजिए चलते चलते। आज हमारे साथ आप हमारे ऑफिस में, आप तशरीफ कहाँ से लेकर आए, कहाँ रहते हैं इधर?
16: मैं मुरादाबाद से।
14: मुरादाबाद से, अच्छा
16: सही हूँ, और क्योंकि सिविल से इंजीनियर हूँ।
14: अच्छा अच्छा,
16: उसी का प्रोफेशन।
14: बहुत बढ़िया।
16: बाकी साहित्य, गजल लिखना, कुछ कलम, मेरा शौक है कलम लिखना। और आज आपने मुझे बुलाया एफएम मुरादाबाद ने मुझे, बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एफएम मुरादाबाद जिस तरीके से आप इसको गूगल पे सर्च करें, लाइव एफएम मुरादाबाद 89.6 डालें, तो आपको लाइव प्रोग्राम मिलेंगे, बड़े अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं। और
14: राशिद जी, बहुत
16: हूँ अक्सर और बहुत अच्छा लगता
14: है। बहुत बढ़िया राशिद जी, चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे, तमाम श्रोता गण आपको सुन रहे हैं हमारे स्टूडियो से लाइव,
13: कोई एक मैसेज उनके लिए,
14: एक संदेश कुछ कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी के लिए?
16: बस युवा पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि प्रेम जगाइए, प्रेम ही से बड़ी बड़ी जगह प्रेम से जीत जाती है, जंग से कभी कोई जीत नहीं आज तक जीत पाया है, प्रेम से सब जीते हैं, जंग लड़ने से कभी कोई आज तक नहीं जीत रहा। जंग लड़ने से आप जमीन जीत सकते हैं, दिल से प्रेम से जीत सकते हैं।
13: बिल्कुल सही,
16: दिल से प्रेम से जीत जाए। बहुत जंग से नहीं लड़ते।
13: इन्होंने इतनी बार प्रेम का नाम लिया है तो मुझे सलमान खान याद आ गए, वो हर मूवी में उनके कैरेक्टर का नाम प्रेम रहता है, तो वैसे ही प्रेम आपके अंदर रहे।
14: बहुत अच्छा मैसेज दिया। और राशिद जी, आप तो फर्स्ट टाइम पधारे हैं हमारे मुरादाबाद के स्टूडियो में, तो हमारे श्रोताओं को क्या एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, कैसा लगा? कमल जी तो हमारे स्टूडियो में काफी बार आ ही चुके हैं, आज फर्स्ट टाइम आप आए, कैसा लगा इनवाइट चार दीवारों में बैठ के?
16: मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। हाँ। और वाकई मुझे ऐसा लगा कि आपसे आज पहली मुलाकात है, अखिल जी से भी और आनंद जी आपसे भी
14: जी।
16: और मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं आज आपके साथ पहली बार बोल रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के साथ बैठ के बिल्कुल बातचीत चल रही है।
13: हमें भी बिल्कुल
16: मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एटमोसफियर। और मैं समझता हूँ कि मुझे मेरा दिल चाहेगा कि बार बार यहाँ
13: जरूर जरूर, आपका दिल चाहे ना चाहे मगर हम तो बुलाएंगे आपको।
14: बिल्कुल बहुत अच्छा लगा राशिद जी, थैंक यू सो मच। कमल सर आपसे भी बहुत अच्छा लगा मिलकर, और हम आपसे भी गुफ्तगू करते रहेंगे, बीच बीच में आपको बुलाते रहेंगे ऐसे ही। वो थोड़ा सा माना कि मुश्किल है इनकी अपॉइंटमेंट लेना, क्योंकि कभी कभी मुश्किलें थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना, बहुत बार बुक करना पड़ता है सर
13: इन्हें। इनका अपॉइंटमेंट लेने का मतलब है पहले ये भी तो कहीं से अपॉइंटमेंट लेते हैं ना।
14: ओहो, वो मुझे पता नहीं था। खैर, बाकी श्रोताओं बहुत अच्छा लगा होगा आपको भी आज का ये कार्यक्रम, मुझे उम्मीद है। और डेफिनेटली ऐसे कार्यक्रम एफएम मुरादाबाद आपके लिए लेकर आता रहेगा। और अखिल जी, आप चलते चलते क्या कहेंगे हमारे तमाम श्रोताओं को?
13: मैं चलते चलते यही बात बोलूंगा कि जी आनंद, तुम थोड़ा सा समय दिया करो।
14: देखिए, समय यहाँ नहीं दे सकते ना, रेडियो की घड़ी हमें इशारा कर रही है कि बेटा निकलूं या प्यार से निकाल दूं, तो इससे बेहतर यही हम खुद ही निकल जाएं। जी,
13: मैं चलते चलते बस सभी श्रोताओं से यही कहूंगा कि हमेशा आप ये चीज जरूर याद रखें कि महफिल वही खूबसूरत होती है जहां चेहरे कम और मुस्कुराहटें ज्यादा होती है।
14: बहुत
13: तो आज का दिन, सच में आज का समय, ये समय हमें बिल्कुल पता नहीं चला जब हमारे साथ इंजीनियर राशिद जी और कमल जी हमारे साथ जुड़े, तो इस पल का तो सच में पता ही नहीं चला कि हमने वो कैसा बीत गया। और आनंद जी ने जो चटकारे लिए हैं आज मेरे साथ और मेरे शायरी के ऊपर,
14: बहुत अच्छा लगा मुझे भी। धन्यवाद कहना चाहते हैं?
13: मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, बाद में शो के बाद तुमसे अलग भी धन्यवाद।
14: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो श्रोताओं, फिलहाल जाने का समय हो गया है, कुछ अच्छे गीत आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राशिद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कमल साहब, आप लोग पधारे और ऐसे ही आप लोग आते रहिए और एफएम का साथ निभाते रहिए। नमस्कार साहब, थैंक यू। दोस्तों, आपको भी हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
13: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
14: बाय बाय श्रोताओं,
13: बाय बाय।

0: सिर दर्द, लकवा, रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरोसर्जन पे, आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और मेरे साथ है आरजे खुशी। इस शो में हम कनेक्ट हो गए हैं आप सभी के साथ और करने वाले शाम को भैया ढेर सारी बातें। शाम ये देखिए, शाम होते ही ना दिन भर की भागदौड़, थकान लगती है, लेकिन मुरादाबाद की गलियों में अभी रौनक बाकी है। बाजारों में भीड़, दुकानों में रोशनी, दोस्तों की गपशप और कहीं से आती है गर्मा गर्म समोसे की खुशबू, कहीं चाट का चटकारा तो कहीं कबाब की महक। तो क्यों ना आज की शाम घर बैठे बैठे मुरादाबाद की गलियों की सैर की जाए। तो बस अब होती है असली कहानी, असली मुरादाबाद शाम की शुरुआत। क्योंकि बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि रेडियो की सुई आपने अगर घुमाया तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिस कर जाएंगे। और देखिए, गाड़ी चलाते चलाते या फिर आप घर बैठकर सुन रहे हैं ना, तो आपको हम आज बाहर जाने से और बाहर जाने के लिए मजबूर कर देंगे। क्यों खुशी, सही कह रही हूँ ना मैं?
4: बिल्कुल सही बोल रहे हो आप।
5: हेलो, हाई एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए, आप हमें सुबह भी सुनते हैं, दोपहर भी सुनते हैं, अब हम शाम में भी आपके साथ आ गए हैं। आई होप आपको सुनकर अच्छा लग रहा होगा। आपकी शाम को बनाने आए थोड़ा और हैपनिंग खूबसूरत ब्यूटीफुल शाम। क्योंकि देखिए दोस्तों, सोचिए बाजार में चलते चलते सामने गोलगप्पे वाला दिखाई दी जाए और एक तरफ कुरकुरी पूरी, ओहो हो, और दूसरी तरफ आलू मसाला, ऊपर से खट्टी मीठी चटनी और फिर वो ठंडा ठंडा मसालेदार पानी। भैया एक प्लेट और लगाना और पहला गोलगप्पा मुंह में जाते ही बस दिन भर का तनाव गायब हो जाता है। क्यों रीना?
3: ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि एक गोलगप्पा मुंह में जाते ही दिन भर की तनाव गायब।

0: मुझे पानी पूरी ना ज्यादा तीखा वाला पसंद नहीं है, मुझे खट्टा मीठा दोनों पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, खट्टा मीठे में ना टेस्ट अच्छा आता है, और ज्यादा तीखा अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर मुझसे तो नहीं खाया जाएगा,
1: कान से हवा निकलने लग जाती है।
0: रीना स्पेशली तीखा खा लेती है, बट मैं तीखा नहीं खा पाती हूँ।
1: लेकिन गोलगप्पे मुझे भी मीठे पानी वाला ही पसंद है।
0: मुझे सूजी वाले पसंद है।
1: सूजी वाले तो मेरा पसंद है।
0: वैसे गाइस आप भी मुझे बताइएगा, हम लोगों को बताइए कि आपको कौन से पानी पूरी पसंद है, आटे वाले या सूजी वाले,
1: और पानी भी बताना आप।
0: हाँ, और जब तक हम करते हैं आपसे और भी बातें, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं ना एक प्यारा सा गाना। चलो सुनते हैं एक धमाकेदार ट्रैक, उसके बाद लौट कर आते हैं। अगर आपका भी पानी पूरी खाने का मन है ना, उसमें दोष हमारा नहीं है। आपका मन विचलित है तो हम क्या कर सकते हैं।

0: देखिए, शाम होते होते ना मन करता है भैया कुछ चटपटा अटपटा खा ले, तो मुझे लगता है इस मन को ना दुखी नहीं करना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो चलिए श्रोताओं, अब जैसे जैसे शाम होती है ना, बस गली मोहल्ले से मार्केट से ना खुशबू आने लग जाती है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं गोलगप्पों के बाद समोसों की खुशबू। आए हाय, मुझे पता है कि आपके बहुत पसंद है गोलगप्पे और साथ ही साथ समोसे। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं आप। कोई बात नहीं, अब जरा हमारे साथ बने रहिए आरजे रीना के साथ और खुशी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अब जरा अपनी कल्पना को बाजार की अगली गली में ले जाइए और वहां से आती है एक ऐसी खुशबू जिसे सूंघ कर कोई भी रुक नहीं पाएगा। गर्मा गर्म समोसे की कड़ाही के तेल में छन छन समोसे का सुनहरा रंग और साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी। अब बताइए, समोसा अकेला अच्छा लगता है या साथ में एक कप गर्मा गर्म चाय हो जाए तो मजा दुगनी हो जाती है। मेरी तरफ से चाय के बिना समोसा थोड़ा अधूरा रहता है। अब समोसा हो और चाय ना हो, मतलब फीकी पड़ जाती है ना?
1: चाय के बिना समोसा अच्छा नहीं लगता है और समोसे के बिना चाय नहीं अच्छी लगती है। दोनों साथ में होते हैं तो कॉम्बो अच्छा लगता है। अब चटपटा, अब चाट का चटपटा स्वाद लेते हैं क्यों?
0: हाँ,
1: मुरादाबाद की शाम हो और चाट का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है रीना? सोचिए, प्लेट में कुरकुरी पापड़ी, ऊपर उबला हुआ आलू, दही, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी और आखिर में मसाले की हल्की सी बारिश। पहला निवाला मुंह में जाते ही ना खट्टा मीठा तीखा और कुरकुरा, चारों स्वाद एक साथ। और फिर वो आवाज, भैया थोड़ी चटनी और डाल दीजिए ना।
0: हाँ, ये तो अक्सर हम करते ही
1: अब रीना
0: हैं।
1: के मुंह में पानी आने लगा है खाने की बातें सुन।
0: मेरे मेरे मुंह में नहीं, मतलब जो श्रोता सुन रहे हैं उनके मुंह में भी पानी आने लगा है। वो तो यही कह रहे, भैया गाड़ी न्यूटन ले लेते हैं और
1: पहले
0: चलते
1: कुछ खा ही लेते
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ, तो चलिए अब हम बात करेंगे कबाब की खुशबू। मुझे आपको पसंद है ना? मुझे
1: हाँ,
0: तो बहुत पसंद
1: मुझे
0: है।
1: भी पसंद है यार, कबाब को भी पसंद है और हमारे
0: हाँ,
1: जो बहुत सारे श्रोता है ना उनको भी पसंद है ना?
0: एक काम करिए, एक प्लेट भिजवा दीजिए आप
1: मैंने
0: ऑफिस
1: तुमको
0: में।
1: खिलवाया था ना, याद है तुम्हें वो वाला कबाब कितना टेस्टी था?
0: हाँ, मुझे लगता है कि आज तो फास्ट टैकल चलेंगे।
1: हाँ
0: तो चलिए आगे हम बात करते हैं, कबाब की बात करेंगे। अब अगर आप मुरादाबाद के किसी खाने वाली गली से गुजर रहे हैं और अचानक मसालों और सिकते कबाब की खुशबू आपके नाक तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए आपका पेट आपको रोकने वाला है। सीख पर लगा कबाब, आग की हल्की आंच, ऊपर से प्याज और हरी चटनी और गर्मा गर्म खुशबू। आए हाय, मुरादाबाद के मुलायम खाने और कबाब बिरयानी की अपनी खास पहचान है। अब सवाल ये है कि आप सिर्फ खुशबू लेकर निकल जाएंगे या प्लेट भर के खा लेंगे या फिर घर वालों के लिए भी ले जाएंगे, डिपेंड आपके ऊपर करता है। फिलहाल देखिए, अपने लिए आप खा रही हैं और घर वालों के लिए ले जा रही हैं ना, तो एक प्लेट इधर भी भिजवा दीजिएगा स्टूडियो में।
1: पर आज तो हम नहीं खा पाएंगे, अगर हमारे लिसनर जो है सुन रहे हैं, अगर भिजवा भी देंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
0: मतलब आज ना भिजवाइए, आप कल भिजवा दीजिएगा, ये तो चलेगा ना?
1: ये चलेगा नहीं, दौड़ेगा फिर तो। हाँ, अब हम बात करते हैं, पता है रीना किसकी? हम बात करते हैं अब बिरयानी का इम्तिहान। अब जरा कल्पना कीजिए, ढक्कन उठता है और अंदर से आती है मसालों में पके चावल की गर्मा गर्म खुशबू, ऊपर से हरे धनिए की हल्की महक और साथ में नरमा नरम पीस। जी हाँ, बात हो रही है बिरयानी की। मुरादाबाद की बिरयानी अपने खास मसालेदार स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। और बिरयानी की सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आप कहते हैं बस थोड़ी सी खाऊंगा या थोड़ी सी खाऊंगी और प्लेट खत्म होने के बाद याद आता है कि थोड़ी तो बचनी चाहिए थी।
0: लेकिन मेरा मानिए तो एक प्लेट और ले लीजिए। और साथ ही साथ आपने बताना है मुरादाबाद में बिरयानी सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की है,
1: हाँ।
0: आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, क्योंकि अगली बार अगर हम खाने के लिए जाए तो उसी शॉप पर जाने वाले हैं।
1: हाँ, हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि बिरयानी मुरादाबाद की कहाँ की पॉपुलर है, क्योंकि हमने अभी तक बिरयानी का टेस्ट किया है लेकिन अपने घर पर बनाकर, किसी स्टॉल का नहीं खाया है। तो हम चाहते हैं अगर किसी शॉप की मुरादाबाद वालों से हम जानना चाहते हैं कि मुरादाबाद की सबसे बेस्ट बिरयानी कहाँ पर मिलती है, आप हमें जल्दी से मैसेज कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तो दोस्तों, हम अभी लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद करेंगे आपसे बहुत सारी बातें, आपकी शाम को बनाएंगे और भी ज्यादा खूबसूरत। कुछ खाने पीने की बातें तो हो ही रही हैं, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग चीजें और हैं। वो क्या है अभी बताते हैं आकर।
2: भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: आज पेट भरा है फिर भी दिल कर रहा है कि कुछ तो स्पाइसी हो जाए, कुछ तो चटपटा हो जाए, तो खाइए, रोका किसने है। बट हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा मत खाइएगा, ठीक है। और दोस्तों, पता है आपको भीड़ और खाने का कनेक्शन? दोस्तों, मुरादाबाद में शाम को भीड़ देखी है आपने? हे भगवान, इतनी भीड़ होती है ना रीना, हम खुद दोनों मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हम सोचते हैं कि आधे घंटे में रिटर्न वापस आ जाएंगे, लेकिन कब 2 घंटे गुजर जाते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। जबकि हम पैदल होते हैं, अगर स्कूटी से जाएंगे तो पता नहीं रात को 10-11 बजे घर आएंगे शायद।
1: भीड़ भी ज्यादा होती है ना शाम के टाइम,
0: इवनिंग में बहुत ट्रैफिक होता है मुरादाबाद में। और कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जूता देख रहा है, कोई बच्चों का हाथ पकड़ के घूम रहा है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस खाने निकले हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या रीना? जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ लगी हो वहाँ जाकर देखो, 90% संभावना है कि कुछ वहाँ कुछ स्वादिष्ट जरूर मिल रहा होगा। मुरादाबाद की शाम में बाजार की रौनक और खाने की खुशबू मिलकर ऐसा माहौल बना देती है कि घर जाने का मन ही नहीं करता, और एक प्लेट चाट खाए बिना तो बिल्कुल भी घर हम जाते नहीं है।
1: मतलब ये है कि जो भी घर से निकल जाए वो कुछ ना कुछ खा कर ही आएगा।
0: खाली पेट तो भैया कोई नहीं आएगा।
1: अब तुम हम दोनों को ही देख लो, हम जाते हैं बाहर सामान खरीदने के लिए और कहते हैं कि नहीं यार, जंक फूड नहीं खाएंगे।
0: और वहाँ जाते क्या होता है हमें पता नहीं,
1: मुंह में पानी आने लग जाता है।
0: हाँ, हम खुद पर इतना कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हम घर से कहते हैं कि कुछ नहीं खाएंगे, जाकर शॉपिंग करेंगे, जो काम है वो खरीद कर लेकर आएंगे सामान।
1: कॉन्ट्री करके हम खा लेते हैं, कहते हैं एक प्लेट तो एक प्लेट में।
0: हाँ, पर हम लोग ऐसा करके खाते हैं, लेकिन बहुत मजा आता है।
1: और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दूसरा प्लेट भी ऑर्डर कर देते हैं।
0: लेकिन ये पता है टाइम आपको रीना, बहुत मेमोरेबल है हमारे लिए, क्योंकि जब हम और बड़े हो जाएंगे ना तो हम इन चीजों को बहुत मिस करेंगे।
1: भी देखो ये तो है, बड़े होने के बाद चीजें जो है हम टाइम स्पेंड करते हैं वो हमें याद तो आता है,
0: याद आता है। इसीलिए मैं अपने श्रोताओं से बोलती हूँ कि दोस्तों, अपने टाइम को ना यूटिलाइज किया करो, जो वक्त आपके पास है उसे एंजॉय करो, हर पल खुल के जियो, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट पल क्या होगा,
1: क्योंकि जो पल गुजर जाता है वो दोबारा नहीं आता।
0: या आई एग्री विद यू यार। और हम खुद ऐसा करते हैं, हम बहुत एंजॉय करते हैं, फन करते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम है ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने से थोड़ी ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा।
1: प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ता है और आपके दिमाग पे भी प्रेशर पड़ता है, सर दर्द होने लग जाता है। इसीलिए भैया जलेबी का जादू जरूर खाइए।
0: ओह माय गॉड, जलेबी गर्मा गर्म और है, है।
1: मलाई वाली जलेबी मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। हाँ, सच बताऊं यार, मैंने मथुरा में खाई थी फर्स्ट टाइम मलाई वाली जलेबी।
0: अच्छा, तो कैसा था उसकी बताइए?
1: आज तक मुझे ऐसा टेस्ट कहीं नहीं मिला।
0: एक बार मुझे याद आया, जलेबी से रीना ने मुझे एक बार जलेबी खिलाई थी, जबकि इसको मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन इसने इसका मन किया उस दिन, तो उसने कहा कि जलेबी खाते हैं। मैं इसका चेहरा देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी मेरे घर आती है मैं इसको कुछ स्वीट खिलाती हूँ, तो ये मना करते कि नहीं, मैं मुझे मीठा पसंद नहीं है। और वहां जाकर ये लड़की इतना जलेबी टुकड़ टुकड़ देखी जा रही है और उसको खाई जा रही है।
1: पता है, जब मुझे ना मलाई वाली जलेबी मिल जाए और साथ ही साथ उसमें इलायची वगैरह जो डाल,
0: इलायची का टेस्ट तो अलग ही होता है,
1: मजा आ जाता है मुझे। साथ रबड़ी वाली भी जलेबी मिल जाए ना यार, तो बस छोड़ो मत, आने दो।
0: पनीर वाली जलेबी खाई है आपने?
1: नहीं यार, पनीर वाली नहीं खाई है, तुम्हें खिला देना।
0: अच्छा ठीक है, तो मैं पनीर वाली जलेबी आपको जरूर खिलाऊंगा। हाँ, ठीक है,
1: तो चलिए हम बात करते हैं जलेबी की। बात करें भैया, आज मुझे भूल जाओ, सच बता रही हूँ, गर्मा गर्म जलेबी जरूर खाओ।
0: पेमेंट तुम कर देना, खा मैं लूंगी रीना, ठीक है, इतना काम करना।
1: हाँ, स्कैनर दिखा के आ जाएंगे। अच्छा, कढ़ाई में गोल गोल घूमती हुई जलेबी, बाहर से कुरकुरी, अंदर से चाशनी से भरी हुई और ऊपर से गर्मा गर्म खुशबू। अरे यार, आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं?
0: बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक।
1: बहुत से श्रोता कह रहे होंगे, अरे बस रुक जाओ मैडम, अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, बस हमें खा कर आने दो।
0: हाँ, लेकिन हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगी दोस्तों, केयरफुली ड्राइविंग कीजिए, और अगर कुछ खाने का मन है तो खा लीजिएगा,
1: लेकिन गाड़ी साइड में पार्क करिएगा।
0: हाँ, वो जरूरी है,
1: क्योंकि इसके वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग जाती है। और एक जलेबी लेने गए थे, दुकानदार ने पूछा कितनी, तू मुंह से निकला, भैया पहले आधा किलो कर दो, उसके बाद 2-3 किलो हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते हैं। जलेबी दूध के साथ अच्छी लगती है या अकेली?
0: ये हम अपने लिसनर से पूछेंगे, ये क्वेश्चन आप उनसे उनको ट्रांसफर कीजिएगा।
1: हाँ, तो आप बताइए कि आपको रबड़ी के साथ, मलाई के साथ, या दूध वाली, या आइसक्रीम वाली जलेबी, है ना, कौन सी जलेबी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? फिलहाल मुझे तो कुरकुरी जलेबी हो और मलाई हो उसके ऊपर, रबड़ी वाली आय हाय, मजा आ जाता है यार।
0: सिंपल जलेबी भी अच्छी लगती है चाशनी में डूबी हुई ना,
1: कुरकुरी होनी चाहिए।
0: हाँ हाँ वो अच्छी
1: और तभी अच्छी लगती है गर्मा गर्म, उसके बाद
0: ठंडी होने के बाद नहीं टेस्ट आता है।
1: लेकिन वो बचपन में पता क्या करती थी, जब भी मेरे पापा जलेबी लाते थे ना मैं उसको अगले दिन खाती थी, क्योंकि मुझे उस टाइम जब मैं छोटी थी तो मुझे जो जलेबी है वो करारी अच्छी नहीं लगती थी।
0: अच्छा वो सॉफ्ट होने के बाद, सॉफ्ट
1: मतलब एक अगले दिन खाती थी,
0: नेक्स्ट डे आप खाते थे। ओके
1: लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं है, अब मेरा मन चेंज हो गया है।
0: बदलाव बहुत जरूरी है। अगर आप भी मुरादाबाद के किसी बाजार में खड़े हो तो आपको सिर्फ खुशबू ही नहीं आवाज भी सुनाई देगी। भैया एक प्लेट गोलगप्पे ले आना, थोड़ा तीखा, थोड़ा पानी तीखा बनाना, चटनी ज्यादा डालना और दूसरी तरफ कढ़ाई से आती छन छन, हाँ हाँ यही छोटी छोटी आवाजें बाजार को बाजार बनाती हैं। और सच बताऊं इन आवाजों को सुनकर आपके पेट ने भी अभी तक एक आवाज तो जरूर निकाल दी होगी
1: कि भैया बस कुछ खा ही लेते हैं, यारे मेरी बात मानिए खा लीजिए, मन को इतना नहीं तरसाना चाहिए, बस जो मन करे खा लो।
0: लेकिन अच्छी शॉप से खाएं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर साफ सफाई अच्छी है, अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ पर खाना चाहिए, क्यों नहीं ना।
1: बिल्कुल ये तो तुमने सही कहा। फिलहाल घर का खाना या बाहर का खाना ये आप बता सकते हैं मुझसे मैसेज करके, लेकिन कभी कभी मन भी करता है यार बाहर का खा लेते हैं।
0: हाँ, देखो बाहर का खाना खाना मुझे लगता है कि रीना इतना यू नो गलत भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई चीज को आप जब लिमिटेड खाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, अनलिमिटेड कोई भी चीज ठीक नहीं होती। हाँ, है
1: शाम को घर पहुँचते ही माँ या पत्नी पूछती है खाना लगा दूं, और तभी दिमाग घूमता है गोलगप्पे, चाट, समोसा, टिक्की, कबाब, बिरयानी। अब दिल कहता है बाहर चल रहे हैं यार, पेट कहता है घर का खाना खाओ, और मन मन तो बोलता है दोनों कर ले भाई दोनों जरूरी है। और साथ ही साथ आप जरूर बताइएगा आज शाम आपकी पहली पसंद क्या है, घर का गर्मा गर्म खाना या बाजार का चटपटा स्वाद। देखिए हम दोनों तो कभी कभी बाहर का खाना इतना ज्यादा खा लेते हैं कि बस घर आके खाने की हिम्मत नहीं होती,
0: नहीं होती, नहीं खाते हैं। हाँ। मैं भी अगर हम हल्का बाहर यू नो लाइट फूड लेते हैं पर उसके बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, सीरियसली बता रही हूँ।
1: हाँ, लेकिन एक बार तुमने सोचा होगा कि हम जितना बाहर का जंक फूड खाते हैं ना, घर आने के 12-1 बजे के बाद फिर चूहे कूदने लग जाते पेट में।
0: मैं जब एक बार सो जाती हूँ तो फिर उठती नहीं हूँ, मेरी ही तो ये रहता है
1: अगर मेरे को नींद नहीं आती ना, सच बताओ मेरे को दोबारा भूख लगी आती है।
0: हाँ नहीं, अगर आप लेट नाइट सोकर जैसे एक बार अचानक से उठते हैं तो फिर भूख लगती है। अब बारिश और चटपटा खाना, मान लीजिए शाम का मौसम थोड़ा ठंडा हो, हवाएं चल रही हो और कहीं से पकौड़े तलने की खुशबू आ जाए, बस फिर क्या, आंखें दुकान खोजती हैं, पैर अपने आप उसी तरफ चलने चल पड़ते हैं और मुंह बोलता है भैया एक प्लेट पकौड़े लगाना गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े हो या फिर आलू के, ऊपर से चाट मसाला और साथ में चाय। कभी कभी खुशी बहुत महंगी नहीं होती, बस एक गर्मा गर्म पकौड़े की प्लेट जितनी होती है, क्यों दोस्तों। आपका भी अगर मन कर रहा है ना, समय देखिए मौसम मानसून का वेदर है एंड आपका मन है कुछ खाने का थोड़ा सा, तो खा सकते हैं आप, ठीक है। तो दोस्तों आप गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, चाय पीजिए, लेकिन पेमेंट हम नहीं करेंगे, इस बात को गांठ आप बांध लीजिए, पेमेंट तो आपको ही करना होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा मत खाइएगा,
1: लेकिन खाना पेट भर के।
0: हाँ पेट भर के खाओ लेकिन ज्यादा मत खाओ।
1: लेकिन इसी के साथ हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि देखिए ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। और आप सभी से यही कहेंगे कि देखिए घर जाते जाते ना मार्केट से सब्जियां भी जरूर लेकर चले जाइएगा। अच्छा लेकिन सिर्फ खाने खाने में आप बिजी हो गए और सब्जियां नहीं लेकर गए, तो घर जाते जाते फिर से आपको ताने सुनने को मिल जाएंगे कि अच्छा अभी तो तुम पेट भर के आ गए हो, सुबह देखते हो तुम्हें क्या खाते हो।
0: अरे रीना ऐसा होता है कई बारी, यू नो मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ है, मामा ने कुछ सब्जी के लिए पापा जी को बोला और पापा जी रिटर्न में शाम को घर आए वापस, तो उस मतलब बहुत सारी चीजें लेकर आए लेकिन जो मम्मी ने कहा था सब्जियां वो नहीं लेकर आए। फिर मम्मी ने पापा जी को थोड़े ताने सुनाए, पापा ने बोला अच्छा मैडम मैं वापस आता हूँ, अभी सब्जी लेकर फिर वापस आता हूँ।
1: हाँ देखिए लेकर जाइएगा, पता चले कि उतनी दूर आपको फिर से आना पड़े और फिर से आपको ट्रैफिक में फंस सकते हैं, क्योंकि प्रकाश नगर चौराहे की तरफ से आएंगे आप भैया तो यहाँ पर आपको जमकर भीड़ मिलने वाली है। शाम के टाइम में तो बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि हर कोई बाहर की जो रौनक है वो देखने के लिए निकलते हैं, शेयर करने के लिए निकलते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं,
0: ऑफिस से भी घर आते हैं।
1: हाँ बहुत से देखिए लेट आते हैं वो घूम के आते हैं दोस्तों के साथ. देखो यार, दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत
0: जरूरी है,
1: साथ ही साथ फैमिली वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है. और तुमने कभी ये, मतलब मेरे साथ क्या होता है एक्चुअली, जब मैं घर रहती हूँ तो जब मैं घर जाती हूँ, मैं चाहे मैं यहाँ रहूँ तो मैं बाहर से कुछ खाऊं ना खाऊं, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ ना तो पापा से एक उम्मीद रहती है मेरी कि जब मेरे पापा आएंगे बाहर से
0: तो मेरे लिए ये लेकर आएंगे. हाँ. वो हम ना कहें तो भी लेकर आते हैं.
1: हाँ.
0: पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं बच्चों से, अगर हम कुछ भी ना कहें ना तो भी वो बिना कहे कुछ ना कुछ लेकर जरूर आते हैं.
1: मेरे पापा सबसे ज्यादा मोमोज लेके आएंगे, क्योंकि जो मेरी भतीजी है ना.
0: हाँ.
1: वो ताने बहुत देती है.
0: अच्छा दादाजी आप मेरे लिए मोमोज नहीं लेकर आए?
1: भाई वो जो भी घर में आना शाम के टाइम, चाहे मेरा भाई आए, चाहे मेरे पापा आए, चाहे कोई रिश्तेदार भी आएगा ना, उसको भी कह देती है मेरे लिए मोमोज लेकर आए हो या नहीं लेकर आए हो, मतलब वो नहीं शर्माती. उसको गोलगप्पे चाहिए
0: भाई, वो गोलगप्पे घर में, वो घर में छोटी है लेकिन वो बनती सबसे बड़ी है. सबको सब उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी बात कोई नहीं टाल सकता है. एक बार को तुम्हारी बात टाल देंगे रीना, लेकिन उसकी बात नहीं टालेंगे.
1: नहीं नहीं नहीं, चलिए हम बातें बहुत करते हैं, पहले गाना सुन लेते हैं. गाना भी सुनना बहुत जरूरी है.
0: हाँ यार, अभी तो हमने बोला म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं लेकिन हमारी बातें फिर शुरू हो गई.

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे तो यही कहना चाहूंगी कि रेडियो का जो वॉल्यूम है ना भैया, वो बढ़ाकर अगर आप गाने सुनेंगे तभी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि आपकी लॉन्ग सफर भी कब आपको थोड़ी पड़ने लग जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। बस आप भी यही सोचेंगे, यार अभी तो निकला था, इतनी जल्दी पहुंच भी गया, तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए वॉल्यूम जरूर बढ़ाइए, तभी आपको मजा आएगा। और अब हम बात करने वाले हैं मुरादाबाद का स्वाद। मुरादाबाद सिर्फ पीतल की चमक के लिए नहीं, बल्कि अपने जायके के लिए भी याद किया जाता है और याद रखा भी जाता है, क्योंकि यहाँ पीतल के सामानों के साथ साथ बिरयानी और मुगलाई स्वाद, कबाब चाट, समोसे, जलेबी और चाय शाम में जैसे हर तरफ खाने की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। और देखिए, आप जरूर मैसेज करके हमें बताइएगा कि शाम होते होते आपको किस चीज की ज्यादा क्रेविंग होने लगती है, भैया क्या खाना है। बहुत से ऐसे होते हैं कि वो डेली खाते हैं, भाई कुछ भी हो जाए थोड़ा खाओ, लेकिन खाएंगे जरूर, मानेंगे नहीं। और साथ ही साथ ऊपर से मूंग दाल मिल जाए, आय हाय, वो तो सुबह से लेकर शाम तक उसके ठेले खत्म ही नहीं होते हैं। और साथ ही साथ मूंग दाल का चीला,
1: वो बहुत यमी होता
0: है ना, मूंग दाल। और पिज्जा भी आजकल मूंग दाल का मिलने लगे है भैया, पिज्जा।
1: अच्छा, पिज्जा तो मैंने नहीं खाया मूंग दाल का,
0: लेकिन खाया तो मैंने भी नहीं है, पर बहुतों से सुनती हूं।
1: मूंग दाल हमने खाई है यहाँ मुरादाबाद की,
0: बहुत टेस्टी लगती है।
1: हाँ, मुरादाबादी दाल बहुत यमी।
0: और देखिए आप हमें
1: उसमें नींबू और मक्खन एंड
0: होती है ना कश्मीरी मिर्च डाल के जो देते हैं,
1: हाँ रोस्ट की भी जो मिर्च होती है वो उसका टेस्ट अलग ही होता है।
0: बिल्कुल, देखिए अगर आप कहीं से भी हमें सुन रहे हैं,
1: अरे पगली क्या करेगी, मैं क्यों स्टूडियो से बाहर भेजने के लिए क्यों मजबूर कर रही है।
0: मैं कहती हूँ जाओ और एक प्लेट मेरे लिए भी लेके,
1: आप पहले खुद खा रहे फिर हमारे लिए लेकर आना।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: ये तो होता है। देखिए अगर खा भी रहे तो साथ में लेकर आना भी बहुत जरूरी होता
1: हाँ,
0: है।
1: और फैमिली के लिए भी लेकर जाना, कभी आप सोचें कि अरे मैं अपना पेट भर लेता हूँ, घर वालों को थोड़ी ना पता चल रहा है, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप भी अपनी फैमिली के लेकर जाओ, वो भी खुश हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, ये तो है। देखिए सबके साथ मिलकर खाते तो अलग ही मजा आता है,
1: अलग ही टेस्ट।
0: लेकिन दोस्तों के साथ जब मिलकर खाते ना भैया, पैसों का नहीं पता है कहाँ चले गए पैसे।
1: अरे मत पूछो भैया, जब पेमेंट करने की बारी आती है ना तब पता चलता है कि अच्छा इतना बिल आया है, और खाते वक्त नहीं भैया ये भी ऑर्डर कर दो, अच्छा
0: भी ऑर्डर कर दो,
1: ये भी मंगवा लीजिएगा। और जब पेमेंट करने की बारी आती है तब ओहो यार मेरे तो पास इतने पैसे है ही नहीं।
0: और सबसे खूबसूरत बात, यहाँ खाने का मजा सिर्फ प्लेट में नहीं होता, साथ बैठे दोस्तों की हंसी में, परिवार की बातचीत में और बाजार की चहल पहल में भी होती है। क्योंकि देखिए खाना खाते समय हम ना बाहर की रौनकें भी देखते हैं, अच्छा भैया इसने तो बहुत अच्छी ड्रेस पहन रखी, अच्छा कल को मैं भी ऑर्डर कर लेती।
1: अक्सर हम लड़कियों में तो ये चीजें होती हैं।
0: नहीं यार, लड़कों में भी होती है,
1: लड़कों में भी होती है।
0: हाँ, लेकिन लड़के दिल के बड़े होते, वो नहीं देखते यार, जो पहन लिया पहन लिया। हम लड़कियां 70 बार सोचते हैं।
1: मैं भी बहुत ज्यादा यू नो डिसाइड करती हूँ बाहर जाने के लिए कि क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं।
0: नहीं, लड़कों को मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बाहर जाना चल यार देखी जाएगी,
1: वो जैसे भी है वैसे ही, अरे चल यार चल, मैं
0: स्मार्ट लगते हैं
1: वो ऐसे ही फेस वॉश कर लेते हैं ना सिंपल सा, और बस हाथों बालों में हाथ घुमाते हैं तो वो उसी में हैंडसम लगने लगते हैं। और
0: एक बात है, जब वो बाहर जाएंगे ना तो बालों में पता नहीं हाथ क्यों मारते हैं। ये आज तक लॉजिक मेरे को समझ नहीं आया,
1: नहीं समझ में आया। और नेक्स्ट एक मुझे समझ नहीं आता रीना अभी भी कि जो बाइक चलाते हैं लड़के, पता नहीं क्यों वो पीछे मुड़कर देखते हैं।
0: अरे वो पीछे मुड़कर इसीलिए देखते हैं,
1: नहीं
0: कौन सी सुंदर लग रही
1: है। मुझे नहीं समझ आता।
0: चलिए फिलहाल हमारा यहाँ से जाने के टाइम है, लेकिन जाते जाते खुशी कुछ कहना चाहती है।
1: तो जनाब आज की शाम हमने घूम ली मुरादाबाद की गलियों में, कहीं गोलगप्पे का पानी चखा, कहीं समोसे की खुशबू महसूस की, कहीं चाट का चटकारा लिया, और कहीं बिरयानी की खुशबू ने दिल जीत लिया। लेकिन अब आखिरी सवाल, इतना सब सुनने के बाद भी भूख लगी है या नहीं, ये आप जरूर हमें बताइएगा। अगली अगर लगी है तो जाइए कुछ अच्छा सा खाइए, परिवार के साथ बैठिए, दोस्तों के साथ हंसिए और इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए। मैं आपकी आरजे खुशी अब हम आपसे लेते हैं जाने की अनुमति, एंड जाते जाते बस यही कहेंगे कि अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और केयरफुली ड्राइविंग कीजिए। अगर घर पर हैं तो इस मौसम का अपनों के साथ लुत्फ उठाइए। सुनते रहिए फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, फिर मिलेंगे आपको बहुत जल्द।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन, आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: सेवा से संकल्प जगे, संकल्प से हर जन जुड़े।
1: यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 25 वर्षों के जनसेवा के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश।
0: स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और सुशासन, प्रदेश सरकार आज हर क्षेत्र में रच रही है नया इतिहास।
1: तो आइए आप भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा बनिए, प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनिए।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.

0: ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा।
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

क्या आप एक ही जगह पर दुनिया की सैर और जबरदस्त रोमांच का मजा लेना चाहते हैं? तो चले आइए सात अजूबे पार्क। यहाँ शानदार अजूबों के दीदार के साथ आपको मिलेगा तीरंदाजी और मैकेनिकल बुल राइड जैसी एक्टिविटीज का फुल ऑन थ्रिल। तो पूरे परिवार के साथ आ जाइए सात अजूबे पार्क, न्यू मुरादाबाद।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।